मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्स, डीटीएच डीआरएम 1233 किलोहर्ट्स, न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप और वेव्स ओटीटी पर आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 22वीं तिथि, तदनुसार 12 जून सन 2026। सुबह के 5:56 और 45 सेकंड हो रहे हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

0: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में सुनेंगे दिल्ली से हिंदी में समाचार। समाचार के लिए कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत का विकास विश्व को लगातार प्रेरित कर रहा है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और उन्हें लागू करने के महत्व पर भी बल दिया। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ मिला है।
2: The topic for the Governing Council meeting.
3: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
2: To youth, to working life, to old age.
1: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। ये समझौता नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफियो रियो की उपस्थिति में हुआ। गृह मंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया भर में चल रहे संघर्ष क्षेत्रीय सीमाओं से परे व्यापक स्तर पर प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने फिनलैंड में कुल तारंता वार्ता में फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टोनेन और संयुक्त अरब अमीरात की सहायक विदेश मंत्री लाना नुसीबेह के साथ उभरती शक्तियों और नई भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए ये चिंता व्यक्त की। डॉक्टर जयशंकर ने संघर्षों के परिणामों को कम करने और कूटनीति की अनुकूल परिस्थितियां बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने तेजी से अस्थिर होती दुनिया में जोखिम कम करने और आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने, अधिक मजबूती और अतिरिक्त क्षमता विकसित करने के महत्व का भी उल्लेख किया। भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सत्तेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज किया। सरकार ने कहा है कि वह खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति को देखते हुए भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पोत परिवहन महानिदेशालय ने संघर्ष प्रभावित जल क्षेत्र से गुजरने वाले भारतीय और विदेशी ध्वज वाले जहाजों पर कार्यरत सभी नाविकों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की सलाह दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में 158वें नियमित पाठ्यक्रम और 141वें तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 2 दिन के लिए स्विट्जरलैंड की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पारमेलिन और आर्थिक मामलों की राज्य सचिव हेलेन बुडलीगर आर्टेडा से मुलाकात करेंगे। वे स्विस दवा उद्योग के प्रमुख प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि ये यात्रा दोनों देशों के आर्थिक साझेदारी को मजबूत करेगी। देश में किसान मित्र नाम से एक व्हाट्सएप आधारित एआई सलाहकार सेवा की शुरुआत की गई है। इस सेवा में खरीफ की बुआई का मौसम शुरू होते ही

0: मीडियावेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। सुबह के 6:05 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं खेती की बातें कार्यक्रम। इसके अंतर्गत आइए सुनेंगे उस रीली भूमि में वृक्षारोपण विषय पर दिनेश कुमार सिंह की ये जानकारी।
1: किसान भाइयों, आज हम उस रेली ज़मीन में वृक्षारोपण के बारे में चर्चा करेंगे। उस रेली भूमि में फल वृक्ष लगाने के लिए कुछ बातों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। पहली बात तो ये कि जिस ऊसर ज़मीन में हम वृक्ष लगाने जा रहे हैं उसकी दशा को थोड़ा सुधारा जाए। इसके लिए मिट्टी की जाँच कराते हैं। इससे यह मालूम हो जाता है कि उस रेली ज़मीन का पीएच क्या है, यानी उसमें ऊसरपन कितना है और उसमें ऊसर सुधारक कितना प्रयोग करना है। फिर जिस वृक्ष को लगाना है उसके लिए निर्धारित दूरी पर रेखांकन करके गड्ढा खोद लेते हैं। औसत रूप में गड्ढे की लंबाई, चौड़ाई एवं गहराई 1-1 मीटर रखते हैं। गड्ढे की ऊपर की मिट्टी एक तरफ और बाकी मिट्टी दूसरी तरफ रखते हैं। फिर गड्ढे में कम से कम 10-15 दिन धूप लगने देना चाहिए। यह कार्य थोड़ा पहले ही कर लिया जाता है, किंतु अगर यह कार्य न किए हों तो अभी भी यह कार्य कर सकते हैं और फिर गड्ढे की भराई करते हैं। मिट्टी को सुधारने के लिए आजकल मुख्यतः दो प्रकार के सुधारक प्रयोग होते हैं, एक जैविक और दूसरे अजैविक। जैविक सुधारकों में गोबर की खाद और कंपोस्ट की खाद तथा अजैविक सुधारकों में जिप्सम एवं पायराइट का प्रयोग होता है। यदि मिट्टी का पीएच 8.5 है तो एक गड्ढे में 40 से 50 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद, 10 से 15 किलोग्राम बालू। बालू का प्रयोग इसलिए करते हैं ताकि जल निकास अच्छा बना रहे। क्योंकि ऊसर ज़मीन में जल निकास की समस्या होती है, अतः बालू का प्रयोग आवश्यक है। बालू के अलावा 2 किलोग्राम जिप्सम या 1.5 किलोग्राम पायराइट गड्ढे में भरते हैं। यदि पीएच 9 है तो 40 से 50 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद, 10 से 15 किलोग्राम बालू, 3 किलोग्राम जिप्सम एवं 2 किलोग्राम पायराइट। यदि मिट्टी का पीएच 9.5 है तो 50 से 60 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद, 15 से 20 किलोग्राम बालू, 5 किलोग्राम जिप्सम या 4 किलोग्राम पायराइट। यदि मिट्टी का पीएच 9.5 से ऊपर है तो 50 से 60 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद, 15 से 20 किलोग्राम बालू, 10 किलोग्राम जिप्सम या 8 किलोग्राम पायराइट डालते हैं। इसके अलावा प्रत्येक गड्ढे में 250 ग्राम नीम की खली, 500 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 250 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश तथा 150 ग्राम लिंडेन चूर्ण, ये सब मिलाकर गड्ढे की भराई करते हैं। वास्तव में यह कार्य बहुत पहले ही कर लेना चाहिए, लेकिन अगर भराई का कार्य नहीं किए हैं तो यह कार्य भी इसी समय करें। गड्ढे की भराई ज़मीन से 10 सेंटीमीटर ऊंची ही रखनी चाहिए। फिर गड्ढे में पानी भर देते हैं ताकि मिट्टी अच्छी तरह बैठ जाए। अगर कोई गड्ढा ज़्यादा बैठ जाता है तो उस पर थोड़ा मिट्टी डालकर ज़मीन के लेवल में कर देना चाहिए। अब बात आती है कि उस रीली ज़मीन में किन फल वृक्षों की रोपाई की जाए। उस रीली ज़मीन में वैसे तो कई फल वृक्षों को लगाया जा सकता है, लेकिन इनके गुण एवं ऊसर के प्रति सहनशीलता इनमें अलग अलग होती है। कुछ फल वृक्ष ऐसे होते हैं जिनमें ऊसर के प्रति सहनशीलता बहुत अधिक होती है। ये हैं आंवला, करौंदा, लसोढ़ा, महुआ और बेर। दूसरे औसत सहनता वाले फल वृक्ष होते हैं, जिसमें हम अनार, बेल, फालसा, जामुन, शरीफा को लेते हैं। तीसरे कम सहनशील वृक्ष हैं, जिसके अंतर्गत अमरूद और जैतून जैसे वृक्ष आते हैं। इनमें से ज़मीन के अनुसार वृक्षों का चयन करके रोपाई करते हैं। अगर आंवला लगाना चाहते हैं तो बनारसी, हाथी झूल, चकैया,

0: कृष्णा, कंचन और नरेंद्र आंवला साथ ये बेड़ लगाते हैं तो बनारसी कड़ाका, उमरान और अलीगंज मुड़िया यदि बेल लगा रहे हैं तो बेल कागजी, नरेंद्र बेल 5 और मिर्जापुरी। यदि अमरूद लगाते हैं तो इलाहाबादी सफ़ेदा, लखनऊ 49 और एप्पल गुआवा प्रजातियां प्रमुख हैं। इस प्रकार से गड्ढों के बीचों बीच स्वस्थ कलमी या बीजू पौधों को गड्ढा खोदकर लगाना चाहिए। पौधों को शाम के समय लगाना चाहिए और लगाने के बाद उसमें पानी दे देना चाहिए। प्रायः देखा जाता है कि ऊसर जमीन में वाष्पीकरण के द्वारा हानिकारक लवण ऊपर आने लगते हैं, अतः इस प्रकार की मिट्टी में अपेक्षाकृत कम अंतराल पर हल्की सिंचाई करते रहना चाहिए ताकि मिट्टी की दशा खराब ना होने पाए। तो इस तरह से इन सब बातों को ध्यान में रखकर उसरीली जमीन में वृक्षारोपण करना चाहिए।
1: खेती की बातें कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे उसरीली भूमि में वृक्षारोपण विषय पर दिनेश कुमार सिंह की जानकारी। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है दैनिक भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। हे माँ जगदम्बा, सुन लो मेरी पुकार, विकृतियां पराजित हो, हम आज भरे हुंकार।

शिव से आरंभ है, शिव से सब संपन्न है, सदैव बनी रही उनकी कृपा, क्योंकि शिव के नाम से ही मेरा हर दिन है।

अभी आप सुन रहे थे दैनिक भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। कार्यक्रम में आज शामिल कलाकार थे नरेंद्र चंचल, अनूप जलोटा और सुरेश वाडिकर। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम गांधी चर्चा। इस कार्यक्रम में सुनिए बापू की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का धारावाहिक पाठ की 133वीं कड़ी। वाचन में प्रस्तुति अरुण पांडे की।

गांधी चर्चा कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं बापू की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का धारावाहिक पाठ। आज सुनिए इसकी 133वीं कड़ी।

मौलाना मजहरुल हक और मैं एक समय लंदन में एक साथ पढ़ते थे। उसके बाद हम बंबई में सन 1915 की कांग्रेस में मिले थे। उस साल वे मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे। उन्होंने पुरानी पहचान बताकर कहा कि आप कभी पटना आए तो मेरे घर अवश्य पधारिए। इस निमंत्रण के आधार पर मैंने उन्हें पत्र लिखा और अपना काम बतलाया। वे तुरंत अपनी मोटर लाए और मुझे अपने घर ले चलने का आग्रह किया। मैंने उनका आभार माना और उनसे कहा कि जिस जगह मुझे जाना है वहां के लिए वे मुझको पहली ट्रेन से रवाना कर दे। रेलवे गाइड से मुझे कुछ पता नहीं चल सकता था। उन्होंने राजकुमार शुक्ल से बातें की और सुझाया कि पहले मुझे मुजफ्फरपुर जाना चाहिए। उसी दिन शाम को मुजफ्फरपुर की ट्रेन जाती थी, उन्होंने मुझे उसमें रवाना कर दिया। उन दिनों आचार्य कृपलानी मुजफ्फरपुर में रहते थे, मैं उन्हें जानता था। जब मैं हैदराबाद गया था तब उनके महान त्याग की, उनके जीवन और उनके पैसे से चलने वाले आश्रम की बात डॉक्टर चोइतराम के मुंह से मैंने सुनी थी। मैं मुजफ्फरपुर कॉलेज में वे प्रोफेसर थे ये जानता था। इस समय प्रोफेसरी छोड़ चुके थे, मैंने उन्हें तार दिया। ट्रेन आधी रात को मुजफ्फरपुर पहुंची थी। वे अपने शिष्य मंडल के साथ स्टेशन पर आए, पर उनके घर बार नहीं था। वे अध्यापक मलकानी के यहाँ रहते थे, मुझे उनके घर ले गए। मलकानी वहाँ के कॉलेज में प्रोफेसर थे। उस समय के वातावरण में सरकारी कॉलेज के प्रोफेसर का मुझे अपने यहाँ टिकाना एक असाधारण बात मानी जाएगी। कृपलानी जी बिहार की ओर से और उसमें भी तिरहुत विभाग की दीन दशा की बात की और काम की कठिनाइयों की कल्पना दी। कृपलानी जी ने बिहार वालों के साथ घनिष्ठ संबंध जोड़ लिया था। उन्होंने उन लोगों से मेरे काम का जिक्र कर रखा था। सवेरे वकीलों का एक छोटा सा दल मेरे पास आया। उनमें से रामनवमी प्रसाद मुझे याद रह गए हैं। उन्होंने अपने आग्रह से मेरा ध्यान आकर्षित किया था। उन्होंने कहा, आप जो काम करने आए हैं वो इस जगह से नहीं होगा, आपको तो हम जैसों के यहाँ ठहरना चाहिए। गया बाबू यहाँ के प्रसिद्ध वकील हैं,

की ओर से मैं आग्रह करता हूं कि आप उनके घर ठहरिए। हम सब सरकार से डरते जरूर हैं, लेकिन हमसे जितनी बनेगी उतनी मदद करेंगे। राजकुमार शुक्ल की बहुत सी बातें सच हैं। दुख इस बात का है कि आज हमारे नेता यहाँ नहीं हैं। बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद और राजेंद्र प्रसाद को मैंने तार किए हैं। दोनों तुरंत यहाँ आ जाएंगे और आपको पूरी जानकारी और मदद दे सकेंगे। मेहरबानी करके आप गया बाबू के यहाँ चलिए। इस भाषण में मैं ललचाया, इस डर से कि कहीं मुझे अपने घर में ठहराने से गया बाबू कठिनाइयों में न पड़ जाएं, मुझे संकोच हो रहा था। पर गया बाबू ने मुझे निश्चित कर दिया। मैं गया बाबू के घर गया। उन्होंने और उनके परिवार वालों ने मुझे अपने प्रेम से सराबोर कर दिया। ब्रजकिशोर बाबू दरभंगा से आए, राजेंद्र बाबू पुरी से आए। यहां जिन्हें देखा वे लखनऊ वाले ब्रजकिशोर प्रसाद नहीं थे। उनमें बिहारवासी की नम्रता, सादगी, भलमन सी असाधारण श्रद्धा देखकर मेरा हृदय हर्ष से छलक उठा। ब्रजकिशोर बाबू के प्रति बिहार के वकील मंडल का आदर भाव देखकर मुझे सानंद आश्चर्य हुआ। इस मंडल के और मेरे बीच जीवन भर की गांठ बंध गई। ब्रजकिशोर बाबू ने मुझे सारी हकीकतों की जानकारी दी। वे गरीब किसानों के लिए मुकदमे लड़ते थे, ऐसे दो मुकदमे चल रहे थे। इस तरह के मुकदमों की पैरवी करके वे थोड़ा व्यक्तिगत आश्वासन प्राप्त कर लिया करते थे, कभी कभी उसमें भी विफल हो जाते थे। इन भोले किसानों से फीस तो वे लेते ही थे। त्यागी होते हुए भी ब्रजकिशोर बाबू अथवा राजेंद्र बाबू मेहनताना लेने में कभी संकोच नहीं करते थे। उनकी दलील ये थी कि पेशे के काम में मेहनताना न लें तो उनका घर खर्च न चले और वे लोगों की मदद भी न कर सकें। उनके मेहनताने और बंगाल तथा बिहार के बैरिस्टरों को दिए जाने वाले मेहनताने के कल्पना में न आ सकने वाले आंकड़े सुनकर मेरा दम घुटने लगा। साहब को हमने ओपिनियन के लिए 10,000 रुपये दिए। हजारों के सिवा तो मैंने बात ही न सुनी। इस मित्रमंडल ने इस विषय में मेरा मीठा उलाहना प्रेमपूर्वक सुन लिया। उसका उन्होंने गलत अर्थ नहीं लगाया। मैंने कहा, इन मुकदमों को पढ़ जाने के बाद मेरी राय तो ये बनी है कि अब हमें ये मुकदमा लड़ना ही बंद कर देना चाहिए। ऐसे मुकदमों से लाभ बहुत कम होता है। जहां रैयत इतनी कुचली गई है, वहां सब इतने भयभीत रहते हैं, वहां कचहरियों की मार्फत थोड़े ही इलाज हो सकता है। लोगों के लिए सच्ची दवा तो उनके डर को भगाना है। जब तक ये तीन कठिया प्रथा बंद न हो, तब तक हम चैन से बैठ ही नहीं सकते। मैं तो दो दिन में जितना देखा जा सके उतना देखने आया हूं, लेकिन अब देख रहा हूं कि ये काम तो 2 वर्ष भी ले सकता है। इतना समय भी लगे तो मैं देने को तैयार हूं। मुझे तो सूझ रहा है कि इस काम के लिए क्या करना चाहिए, लेकिन इसमें आपकी मदद जरूरी है। ब्रजकिशोर बाबू को मैंने बहुत ठंडे दिमाग का पाया। उन्होंने शांति से उत्तर दिया, हमसे जो मदद बनेगी हम देंगे, लेकिन हमें समझाइए कि आप किस प्रकार की मदद चाहते हैं। इस बातचीत में हमने सारी रात बिता दी। मैंने कहा, मुझे आपकी वकालत की शक्ति का कम ही उपयोग होगा। आपके समान लोगों से तो मैं लेखक और दुभाषिये का काम लेना चाहूंगा। मैं देखता हूं कि इसमें जेल भी जाना पड़ सकता है। मैं इसे पसंद करूंगा कि आप ये जोखिम उठाएं, पर आप उसे उठाना न चाहें तो भले न उठाएं। वकालत छोड़कर लेखक बनने और अपने धंधे को अनिश्चित अवधि के लिए बंद करने की मांग करके मैं आप लोगों से कुछ कम नहीं मांग रहा हूं। यहां की हिंदी बोली समझने में मुझे कठिनाई होती है। कागज पत्र सब कैथी में या उर्दू में लिखे होते हैं, जिन्हें मैं नहीं पढ़ सकता। इनके तर्जुमे की मैं आपसे आशा रखता हूं। ये काम पैसे देकर कराना हमारे बस का नहीं है। ये सब सेवा भाव से और बिना पैसे के होना चाहिए। ब्रजकिशोर बाबू समझ गए, किंतु उन्होंने मुझसे और अपने साथियों से जिरह करना शुरू किया। मेरी बातों के फलितार्थ पूछे, मेरा अनुमान के अनुसार वकीलों को किस हद तक त्याग करना चाहिए, कितनों की आवश्यकता होगी, थोड़े थोड़े लोग थोड़ी थोड़ी मुद्दत के लिए आए तो काम चले गया या नहीं, आदि प्रश्न मुझसे पूछे। वकीलों से उन्होंने पूछा कि वे कितना त्याग कर सकते हैं। अंत में उन्होंने अपना यह निश्चय प्रकट किया, हम इतने लोग आप जो काम हमें सौंपेंगे वो कर देने के लिए तैयार रहेंगे। इनमें से जितनों को आप जिस समय चाहेंगे उतने आपके पास रहेंगे। जेल जाने की बात नहीं है, उसके लिए हम शक्ति संचय की कोशिश करेंगे।

अभी आप सुन रहे थे गांधी चर्चा कार्यक्रम में बापू की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का धारावाहिक पाठ। वाचन व प्रस्तुति थी अरुण पांडे की। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ।

दशरथ कुमारों की बारात कई दिनों पहले जनकपुर पहुंच चुकी है। योग लग्न देखकर राजा जनक की मंडली के लोग बारातियों को आमंत्रित करने जनवा से पहुंचे। गुरु वशिष्ठ से आज्ञा ले कुल की रीतियां संपन्न कर स्वयं अवध नरेश मुनियों तथा साधुओं को साथ लेकर चले। राजा दशरथ का भाग्य तथा वैभव देख ब्रह्मा सहित देवगण उनकी सराहना कर रहे हैं। शिव ब्रह्मा आदि देवताओं की टोलियां अपने अपने विमानों पर सवार होकर फूल बरसाती श्री राम का विवाह देखने चल पड़ी हैं। विवाह मंडप की अद्भुत रचना अलौकिक साज श्रृंगार तथा अयोध्या वासियों के सुंदर रूप के सामने देवता तथा देवांगनाएं मानो प्रभाहीन हो गई हैं। ब्रह्मा को विशेष आश्चर्य होता है क्योंकि वहां उस मंडप में उन्हें अपनी कोई रचना दिखाई नहीं देती। चकित देवताओं को भगवान शंकर सांत्वना देते हैं कि विचार कर देखो, ये सीता तथा अखिल ब्रह्मांडों के परमेश्वर साक्षात भगवान का शुभ विवाह है। प्रसन्न मन और पुलकित शरीर वाले राजा दशरथ के साथ ब्राह्मणों तथा साधु संतों की मंडली ऐसी शोभायमान है मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हैं। इसी प्रकार चारों कुमारों की शोभा निराली है, मानो अपने चार अवयवों के साथ संपूर्ण मोक्ष ने शरीर धारण कर लिया है।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। आज के मानस पाठ की इस कड़ी के कलाकार थे महेंद्र कपूर और भूपेंद्र सिंह। मेरे वेव के मीटर पर आपने ट्यून किया है अपने रेडियो सेट पर आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र को। सुबह के 6:50 हो रहे हैं। कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत आइए एक नजर डालते हैं आज केंद्र से प्रसारित प्रमुख कार्यक्रमों पर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात्रि 10:30 पर सुनेगा उस्ताद गुलाम मुस्तफा का गायन। दिन 12:45 पर पंडित चितरंजन ज्योतिष का गायन और सुबह 7:31 पर सुनेगा उस्ताद बिस्मिल्ला खां और साथी का शहनाई वादन। विज्ञान पत्रिका सुनेगा रात्रि 10 बजे से। कार्यक्रम में नीरज कुमार शुक्ला की सुनेगा वार्ता। विषय होगा हमारे आसपास की अदृश्य तरंगे और क्या होते हैं सेमी कंडक्टर्स। इस विषय पर भेंट वार्ता होगी अरविंद कुमार सिंह से। गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम अंजुमन होगा रात्रि 9:30 पर। सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर विशेष श्रृंखला सुनेगा रात्रि 8:10 पर। रोजाना की तरह किसान भाई सुनेंगे कृषि जगत शाम 6:30 पर। कार्यक्रम में चर्चा के अलावा होगी धान की उन्नत प्रजातियां विषय पर डॉक्टर जोखन सिंह की वार्ता और साथ ही साथ सुनेगा डॉक्टर माधवी सिंह का गाया लोकगीत। इनके गाए लोकगीतों को आप दिन 12:45 पर और सुबह 9:50 पर लोक संगीत के कार्यक्रम में सुन सकेंगे। युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी सुनेगा शाम 5:15 पर। कार्यक्रम में होगी आज की बात बाल श्रम निषेध दिवस पर। अलावा इसके सिने दर्पण में सुनेगा अभिनेत्री नूतन के बारे में। साथ ही साथ कार्यक्रम में मुख्य आकर्षण होंगे यूथ डायरी, इतिहास में आज का दिन, रोजगार सूचना और फिल्म संगीत। बहने सुनेंगे अपना कार्यक्रम गृहलक्ष्मी दिन 1:15 पर। कार्यक्रम में चर्चा के अलावा होगी बातचीत, गीत संगीत और गृहलक्ष्मी टिप्स। सुगम संगीत के कार्यक्रम में पूनम शर्मा के गाए गीत और भजन सुनेगा दिन 12:30 पर और रात्रि 8 बजे से। NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम होगा दिन में 12 बजे से। फिल्म संगीत के कार्यक्रमों में रसरंग होगा शाम 7:31 पर। फिल्म संगीत शाम 6:10 पर और शाम 5 बजे। एक ही कलाकार सुनेगा दिन में 2:30 पर। व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फरमाइशी गीत एक्सप्रेस सुनेगा दिन में 11 बजे से और झंकार का समय होगा सुबह 10 बजे और सदाबहार गीतों का कार्यक्रम मधुरिमा सुनेगा सुबह 8:45 पर। और अब से थोड़ी ही देर में यानी सुबह 7 बजे से सुनिएगा आपका अपना फेवरेट प्रोग्राम गुड मॉर्निंग बनारस। आपको एक बार फिर से बता दें शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात्रि 10:30 पर सुनेगा उस्ताद गुलाम मुस्तफा का गायन। दिन 12:45 पर पंडित चितरंजन ज्योतिष का गायन और सुबह 7:31 पर उस्ताद बिस्मिल्ला खां और साथी का शहनाई वादन। कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत

0: तभी आप सुन रहे थे आज केंद्र से प्रसारित दिन भर होने वाले कार्यक्रमों की प्रमुख रूपरेखा। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:55 होने वाले हैं। सुनेंगे संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। समाचार के लिए कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।
1: इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका निधिः झाः। अथ वार्ताः। नवदेहल्यां नीति आयोगस्य शासी परिषद उपवेशनस्य अध्यक्षतां कुर्वन् प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अवोचत् यत् यदा विश्वस्य प्रमुखाः अर्थव्यवस्थाः आर्थिक समाह्वानानां सामुख्यं कुर्वन्तः सन्ति तस्मिन् काले अपि भारतस्य विकासयात्रा विश्वम् अविरतं प्रेरयति। तेन ऊर्जा क्षेत्रे वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतीनां स्वीकरणाय आत्मनिर्भरतां प्रति देशस्य संकल्पं दृढयितुं बलं प्रदत्तम्। प्रधानमन्त्रिणा राज्यानि एकं मण्डलं एकः उत्पादः ODOP तथा रक्षा निर्माण क्षेत्रे निर्यातोन्मुख नीतीनां विकासाय प्रेरितानि। अस्य वर्षस्य मुख्य विषयो विकसित भारत @2047 कृते समावेशी मानव विकासः आसीत्। नीति आयोगस्य उपाध्यक्षेण अशोक लाहरी महोदयेन सबलं प्रोदीरितं यत् सुशिक्षिता कौशलयुक्ता च जनसंख्या एव देशस्य सफलतायाः मार्गो वर्तते। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्य आरभ्य उत्तराखण्डस्य द्विदिवसीय आधिकारिक प्रवासे भविष्यति। अस्मिन् प्रवासे राष्ट्रपतिः देहरादून स्थिते भारतीय सैन्य अकादमी इत्यस्य 58-उत्तरैकशततम नियमित पाठ्यक्रमस्य निरीक्षणं विधास्यति। भारतस्य खरीफ वपनर्तौ प्रविष्टे सति तैल बीज कृषेः अनुसंधान आधारित ज्ञानं कृषकाणां चलदूरभाषे प्रदातुं ऑयल सीड्स किसान मित्र नामनी व्हाट्सएप आधारित AI परामर्श सेवा प्रकटीभूता। अत्रावधेयं यत् कृषि कृषक कल्याण मंत्रालयेन प्रख्यापितं यत् अनया नूतन व्यवस्थया भारतस्य कोऽपि तैल बीज कृषकः केवलं व्हाट्सएप माध्यमेन निःशुल्कं विश्वसनीयं तत्क्षणं च सस्य सम्बद्धं परामर्शं स्वभाषया सारल्येन प्राप्तुं शक्नोति। फिनलैंड देशे आयोजितायां कुन्तरान्ता वार्तायां भागं गृह्णन् विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकरः चिन्तां प्रकटयन् अब्रवीत् यत् प्रचल्यमानाः वैश्विकाः संघर्षाः स्वक्षेत्राद् बहिरपि विश्वस्य उपरि भारं वर्धयन्ति। तेन कूटनीतौ अनुकूल परिस्थितीनां निर्माणाय तथा आपूर्ति श्रृंखलायाः विश्चक निवारणाय विविधीकरणाय च बलं प्रदत्तम्। भारतस्य ऊर्जा नीतिं ब्रुवन् मन्त्रिणा प्रख्यापितं यत् भारतस्य ऊर्जा चयनं राष्ट्रहितेन प्रेरितमस्ति यत्र उपलब्धता मूल्य सुलभता च प्रमुखा वर्तते। वाणिज्योद्योग मंत्री पीयूष गोयलः अद्य आरभ्य स्विट्जरलैंड देशस्य द्विदिवसीय आधिकारिक यात्रायां भविष्यति। यात्रायामस्यां मंत्री स्विट्जरलैंड देशस्य राष्ट्रपतिना गाय पार्मेलिन इत्यनेन सह मिल्यात्। श्रीगोयलः तत्रत्य भैषजोद्योगस्य प्रमुख प्रतिनिधिभिः साकमपि विचार विनिमयं करिष्यति। वाणिज्योद्योग मंत्रालयेन उक्तं यत् एषः प्रवासः भारत स्विट्जरलैंड आर्थिक सहयोगं सुदृढं करिष्यति, सहैव भारत EFTA व्यापार आर्थिक संधेः कार्यान्वयनस्य चर्चां सुगमां करिष्यति। एतदतिरिच्य मंत्री ज्यूरिख नगरे स्विस विपणिभिः निवेशकैः च सह मिलित्वा द्विपक्षीय व्यापारस्य निवेशस्य संस्थागत सहयोगस्य विस्ताराय अवसराणां गवेषणं च विधास्यति। सिडनी नगरे प्रचल्यमानायाः ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन स्पर्धायाः महिला एकल वर्गे PV सिंधु तन्वी शर्मा च सफलताम् अवाप्य प्रागुपान्त्य चक्रं प्रविष्टवत्यौ। आगामी क्रीडायां सिंधुः चेन् युयु इत्य

0: अनया सहस्पर्धी शिष्ट। इतर पश्चात पुरुष एकल वर्गे किरण जॉर्ज, सनी दयानंद, तरुण मेन्नेपल्ली च स्वस्व क्रीडासु पराभूता इति वार्ता।
1: मीडियम वेव के मीटर पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है।

0: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, are you ready?
1: सवेरा सिर्फ धूप का निकलना नहीं होता, ये ईश्वर का एक इशारा है कि आपके पास जिंदगी को और बेहतर बनाने का एक और मौका है। नमस्कार, आदाब बनारस, अ वेरी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। लीजिए, एक बार फिर हाजिर हो गई हूँ एक बेहद खूबसूरत और सुहानी सुबह लेकर के, आपकी रेडियो दोस्त, वो जिसके नाम से होती है आपके दिन की शुरुआत।
2: हेलो, मैं पूजा, पहचाना?
3: इस नाम से उसे कोई नहीं जानता, वो बुलाओ जो सब बुलाते हैं।
1: हां जी, पूजा लेकर हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस। दोस्तों, इस भागती दौड़ती दुनिया में सुबह का ये जो वक्त होता है ना, जब परिंदे चहचहा रहे होते हैं, मंदिरों से घंटियों की हल्की आवाज आ रही होती है और घाटों पर सुबह बनारस का वो अलौकिक नजारा सज रहा होता है, ये वक्त सिर्फ जागने का नहीं बल्कि खुद से मिलने का होता है। आज का ये दिन आपके जीवन में ढेर सारा सुकून और खुशियां लेकर आए, यही बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना है। तो बनारस, अगर अभी तक बिस्तर पर लेटे हैं तो आलस को छोड़िए जना, अब खिड़की के पर्दे हटाइए और इस खूबसूरत सुबह को मुस्कुराकर हेलो बोलिए। आज गुड मॉर्निंग बनारस पर आपकी हमारी बदकही का सिलसिला शुरू हो गया है, तो चलिए आपकी रूह को सुकून पहुंचाने के लिए प्ले करती हूँ अरिजीत सिंह की आवाज में ये बेहद सुरीला और ताजा नगमा। सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए।

लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि उस छोटू का असली नाम क्या है, उसके सपने क्या हैं? जिस उम्र में उसके हाथों में रंग बिरंगी पेंसिलें होनी चाहिए थी, उस उम्र में उसके हाथों में गर्म चाय के कुल्हड़ और जूठे बर्तन थमा दिए गए। किसी ने क्या खूब लिखा है बनारस, खिलौनों से खेलने की उम्र में जो काम करते हैं, खिलौनों से खेलने की उम्र में जो काम करते हैं वो बच्चे उम्र से पहले ही बड़े हो जाते हैं। बाल श्रम यानी चाइल्ड लेबर सिर्फ एक कानूनी जुर्म नहीं है, बल्कि ये एक मासूम बच्चे के सुनहरे भविष्य से खिलवाड़ है। गरीबी और मजबूरी बच्चों से उनका बचपन छीन लेती है और हम अनजाने में इस व्यवस्था का हिस्सा बन जाते हैं। दोस्तों, सरकारें कानून बनाती हैं, संस्थाएं काम करती हैं, लेकिन बदलाव तब तक नहीं आएगा जब तक हम और आप अपनी सोच नहीं बदलेंगे। आज इस रेडियो से मैं आपसे कोई बड़ा आंदोलन करने को नहीं कह रही हूँ, बस एक छोटा सा संकल्प लीजिए। अगर अगली बार आप किसी बच्चे को काम करते हुए देखें तो उसे अनदेखा मत कीजिए। उस दुकान या ढाबे वाले से बात कीजिए, अगर संभव हो तो किसी नजदीकी एनजीओ या चाइल्ड लाइन नंबर 1098 पर इसकी जानकारी दीजिए। एक बच्चे को शिक्षा देना, उसे स्कूल तक पहुंचाना सिर्फ उसके माता पिता का फर्ज नहीं है, ये पूरे समाज की जिम्मेदारी है। क्योंकि जब देश का बचपन पढ़ेगा तभी तो हमारा कल बढ़ेगा। तो आइए आज इस विशेष दिवस पर हम सब मिलकर आवाज उठाएं और इस दुनिया को बच्चों के लिए थोड़ा और सुरक्षित, थोड़ा और खूबसूरत बनाएं। हर बच्चे को उसका बचपन वापस मिलना चाहिए, है ना? आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग बनारस। आज दिन है शुक्रवार का और तारीख है 12 जून, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और जानते हैं क्या खास हो रहा है शहर बनारस में आज। बनारस सभी अस्पताल ये सुनिश्चित करें कि उनका बायोमेडिकल वेस्ट 48 घंटे के अंदर निस्तारित हो जाए। जी हां, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने सीएमओ को आदेश दिया कि बायोमेडिकल के निस्तारण, आकलन और निगरानी के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएं। एनजीटी के प्रधान न्यायपीठ के सदस्य न्यायाधीश डॉक्टर अफरोज अहमद ने गुरुवार को सर्किट हाउस में पर्यावरण संरक्षण के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा के दौरान ये आदेश दिए। उन्होंने क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी को निर्देशित किया कि ई वेस्ट के संबंध में लोगों को जागरूक करें, ई वेस्ट निस्तारण के लिए किसी रिसाइकलर या खरीदार को उपलब्ध कराया जाए। अगली खबर ये है बनारस के उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज प्रारंभिक परीक्षा 2025 14 जून को जनपद के 42 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा को नकल विहीन, निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए गुरुवार को सनबीम वरुणा के सभागार में शिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज के समन्वय पर्यवेक्षक वीरेंद्र मणि त्रिपाठी की अध्यक्षता में आयोजित इस सत्र में परीक्षा ड्यूटी में तैनात होने वाले कुल 1756 अंतरिक्षकों को उनके दायित्वों का पाठ पढ़ाया गया। बनारस केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने संबद्ध सभी स्कूलों के प्राचार्यों को पत्र जारी कर देशव्यापी राष्ट्रीय काव्य उत्सव में छात्रों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। शिक्षा मंत्रालय के तत्वावधान में नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा इस प्रतियोगिता का आयोजन राष्ट्रीय ई पुस्तकालय प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जा रहा है। प्रतियोगिता 1 जून से शुरू हो चुकी है और 31 जुलाई तक चलेगी। इसमें कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राएं हिस्सा ले सकते हैं। इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य छात्रों में पढ़ने की आदत, साहित्य व कविता के प्रति अभिरुचि और प्रभावी संचार कौशल का विकास करना है। बनारस IIT BHU के इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विभाग के छात्रों ने संस्थान के इतिहास में पहली बार सफलतापूर्वक सिलिकॉन चिप विकसित कर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। BTech द्वितीय वर्ष के छात्रों की टीम ने मात्र 5 माह में 64 पॉइंट फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म हार्डवेयर एक्सेलरेटर चिप तैयार की है, जो आधुनिक सिग्नल प्रोसेसिंग प्रणालियों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। बनारस जनपद में चल रहे विकास कार्यों और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा हेतु गुरुवार को नोडल अधिकारी द्वारा राजशेखर ने सर्किट हाउस सभागार में CM डैशबोर्ड के माध्यम से बैठक आयोजित की। उन्होंने वर्तमान महीने की 20वीं रैंक और पिछले 2 महीने में रैंक में सुधार पर संतोष व्यक्त करते हुए अधिकारियों को और मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। बनारस में आप

वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग बनारस सुन रहे हैं आप मेरे यानी पूजा के साथ। दोस्तों, सुबह जब हमारी आंखें खुलती हैं तो हम अपने बच्चों को स्कूल भेजने की तैयारी करते हैं, है ना, उनके नखरे झेलते हैं, उन्हें दुलारते हैं। लेकिन इसी शहर के किसी मोड़ पर, किसी चाय की दुकान पर या किसी कारखाने के अंधेरे कोने में एक जोड़ी आंखें ऐसी भी होती हैं जो सुबह उठकर बसता नहीं बल्कि काम का भारी बोझ उठाती हैं। आज 12 जून है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस यानी वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। आज का दिन कोई जश्न मनाने का दिन नहीं है बल्कि आज का दिन रुक कर अपने जहन से एक कड़वा सवाल पूछने का दिन है। अक्सर बनारस हम किसी ढाबे पर बैठते हैं तो जोर से आवाज लगाते हैं, ए छोटू, एक कप चाय लाना। हम चाय पीते हैं, पैसे देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं।

0: बता दूं कि सीएम डैशबोर्ड में हमारे बनारस को 20वीं रैंक मिली है। और अब बनारस, अगली खबर ये है कि कैंट रेलवे स्टेशन से बीएचयू परिसर तक ई बस सेवा की शुरुआत गुरुवार को हो गई है। पर्यावरण अनुकूलन परिवहन को बढ़ावा देने तथा विद्यार्थियों, शिक्षकों, कर्मचारियों और आम जन को परिवहन की सुविधा देने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। योजना के तहत 8 ई बसें इस मार्ग पर संचालित की जाएंगी। वाराणसी सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के सहयोग से शुरू की गई सेवा के तहत पहली बस गुरुवार को विश्वविद्यालय परिसर स्थित विश्वनाथ मंदिर क्षेत्र में पहुंची। कैंट स्टेशन से बीएचयू परिसर तक दो मार्ग से बसें चलेंगी। इसके लिए एक मार्ग बीएलडब्ल्यू से और दूसरा सिग्रा मार्ग निर्धारित है। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय परिसर के भीतर यात्रा का किराया 10 रूपए निर्धारित किया गया है। वहीं बीएचयू व वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन के बीच यात्रा करने वालों के लिए मार्ग एवं दूरी के अनुसार 20 से 25 रूपए तक का किराया निर्धारित किया गया है। दोस्तों, काशी की आभा दिन प्रतिदिन निखर रही है। चौराहों और तिराहों पर नंदी प्रतिमाओं की स्थापना के बाद अब शहर के प्रमुख वीआईपी मार्गों का भी विशेष रूप से सौंदर्यीकरण किया जाएगा। बाबतपुर एयरपोर्ट से शहर की ओर आने वाले मार्गों पर भव्य महाकाल स्तंभ स्थापित किए जाएंगे, जो पर्यटकों और श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनेंगे। साथ ही इन मार्गों को स्पिरिचुअल गेटवे के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए नगर निगम ने व्यापक कार्य योजना तैयार कर ली है। नगर निगम ने शहर की प्राचीन और ऐतिहासिक पहचान को सुरक्षित रखते हुए उसे आधुनिक स्वरूप देने के लिए 48.88 लाख करोड़ रुपए की विकास योजना बनाई है। इसके तहत प्रमुख धार्मिक स्थलों और सार्वजनिक स्थलों के बुनियादी ढांचों को मजबूत किया जाएगा। साथ ही शहर के सार्वजनिक ढांचे को बनारस की पारंपरिक स्थापत्य शैली के अनुरूप विकसित कर उसकी वैश्विक पहचान को और सशक्त बनाया जाएगा। सारनाथ में आधुनिक स्वचालित पार्किंग का निर्माण कराया जाएगा, जिससे पार्किंग क्षमता बढ़ेगी और यातायात व्यवस्था बेहतर होगी। इसके अलावा महाशमशान मणिकर्णिका घाट के समीप भीड़भाड़ कम करने के लिए स्थानीय सब्जी मंडी को व्यवस्थित किया जाएगा तथा दो पहिया वाहनों के लिए समर्पित पार्किंग विकसित की जाएगी। वाराणसी के राजघाट पर लगे 71 ड्रेनेज स्पाउट एक्सपेंशन ज्वाइंट बदलने का काम एक बार फिर शुरू होगा। रेलवे से कई चरण की बातचीत के बाद रेलवे ने रात में काम करने की अनुमति दी है। ऐसे में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक 14 जून से 60 दिन का ब्लॉक किया जाएगा। इसी दौरान किसी भी प्रकार का वाहन पुल से नहीं गुजर सकेगा। बता दें कि दिसंबर 2025 में लिए गए मेगा ब्लॉक को रेलवे की आपत्ति के बाद दूसरे दिन ही बंद करा दिया गया था। सिर्फ 4 ड्रेनेज स्पाउट एक्सपेंशन ज्वाइंट बदले जा सके थे। अब यह ब्लॉक 13 अगस्त तक चलेगा, रोजाना रात में काम होगा। सो बनारस, ये तो बात हो गई क्या खास हो रहा है शहर बनारस में आज, और अब बात करते हैं इतिहास की। तो चलिए चलते हैं इतिहास की गलियों में। आज ही के दिन 2008 में प्रख्यात फिल्म निर्देशक मृणाल सेन को 10वें ओसियाना सिनेफैन फिल्म समारोह में पुरस्कृत किया गया। आज ही के दिन 1957 में हिंदी की जानी मानी कथाकार और उपन्यासकार गीतांजलि श्री का जन्म हुआ। 1932 में आज ही के दिन ई श्रीधरन का जन्म हुआ था। ये भारत के प्रसिद्ध सिविल इंजीनियर हैं। कोंकण रेलवे और दिल्ली में मेट्रो रेल का श्रेय इन्हीं को जाता है। 1976 में संस्कृत के विद्वान और महान दार्शनिक गोपीनाथ कविराज का निधन आज ही के दिन हुआ था। और 1986 में बंगाली भाषा के विख्यात साहित्यकार अमीय चक्रवर्ती का निधन आज ही के दिन हुआ था। सो बनारस, ये तो बात हो गई इतिहास की, और अब बात करते हैं आज के स्पेशल डे के बारे में। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि आज है 12 जून और आज के दिन मनाया जाता है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर यानी बाल श्रम निषेध दिवस। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 खतरनाक उद्योगों में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है। भारत की केंद्र सरकार ने 1986 में बाल श्रम निषेध और नियमन अधिनियम पारित कर दिया। इस अधिनियम के अनुसार बाल श्रम तकनीकी सलाहकार समिति नियुक्त की गई। इस समिति की सिफारिश के अनुसार खतरनाक उद्योगों में बच्चों की नियुक्ति निषिद्ध है। 1987 में राष्ट्रीय बाल श्रम नीति बनाई गई थी। सो बनारस, आज की बात हो गई, बीते कल की बात हो गई और आज के स्पेशल डे की भी बात हो गई, और अब चलते हैं उस सेगमेंट की ओर जिसका रहता है आप सबको इंतजार।
1: काशी रत्न, द जेम्स ऑफ वाराणसी।
0: बनारस, जब भी हम कबीर दास जी की बात करते हैं तो हमारे मन में उनके अखड़पन और सामाजिक सुधार की एक छवि उभर

0: सकती है, लेकिन कबीर की उस अनगढ़ और गुड़वाड़ी को आम पाठकों तक उसकी पूरी प्रामाणिकता के साथ पहुंचाने के पीछे कुछ महान विद्वानों की सालों की तपस्या रही है। आज काशी रत्न में हम नमन कर रहे हैं काशी की मिट्टी में जन्मे ऐसे ही एक महान विद्वान, आलोचक और कबीर साहित्य के मर्मज्ञ डॉक्टर शुकदेव सिंह जी को। बनारस डॉक्टर शुकदेव सिंह जी का मानना था कि कबीर को समझने के लिए सिर्फ किताबों की नहीं बल्कि बनारस की रूह और यहाँ के लोक जीवन को समझने की जरूरत है। उन्होंने नाथ पंथ, सिद्धों की परंपरा और मध्यकाल के संतों पर जो शोध किए उसने हिंदी आलोचना को एक नई दिशा दी। जब वे कबीर या रैदास की साखियों की व्याख्या करते थे तो ऐसा लगता था मानो वो सीधे उस दौर के सामाजिक सच का आईना दिखा रहे हों। वे सिर्फ एक प्रोफेसर या लेखक नहीं थे बल्कि वे शब्दों के और इतिहास के एक कुशल जौहरी थे। आज का हमारा काशी रत्न काशी के इस महान शब्द शिल्पी और कबीर साहित्य के अनमोल प्रहरी डॉक्टर शुकदेव सिंह जी के नाम। ऐसे मनीषियों के विचार ही हमारी काशी को हमेशा जीवंत और ज्ञान की नगरी बनाए रखते हैं।
1: काशी रत्न, द जेम्स ऑफ वाराणसी।
0: सो बनारस, आज बहुत सारी बातें हो गई है ना, लेकिन घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि समय हो गया है मेरे जाने का। चलते चलते बस इतना ही कहूंगी कि सुबह की शुरुआत तो शानदार हो चुकी है। जी हाँ, सुबह की शुरुआत तो शानदार हो चुकी है, अब पूरा दिन भी एकदम टशन में बिताना है। काम चाहे दफ्तर का हो, दुकान का हो या कॉलेज का, चेहरे पर ये बनारसी मुस्कान कब नहीं होनी चाहिए। मुसीबतें चाहे जितनी भी आए, घाट की सीढ़ियों जैसा हौसला रखिए और हवाओं में बस प्यार घोलते रहिए। सो एक बात और जो मैं आपसे कहना चाहूंगी, खुद से प्यार करना और खुद की देखभाल करना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब हम खुश होंगे तभी हम औरों में खुशियां बांट पाएंगे, उन्हें खुश कर पाएंगे। सो डू वेरी वेरी वेरी टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैव अ नाइस डे। हैप्पी फ्राइडे बनारस, गुड मॉर्निंग।

0: Good morning, Banaras.
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस, ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है।
2: अब मैं संकल्प ये लें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
3: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविंद्रनाथ ठाकुर।
2: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम।
3: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
2: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। एपीजे अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
3: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
2: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
4: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक

0: समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग के 11वें शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। कहा, विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर करना होगा काम। नई दिल्ली में हुई नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर रखी अपनी बात। कहा, प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभा रहा है प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए जारी की अंतिम मतदाता सूची। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की तुलना में बढ़े करीब 29 लाख मतदाता। और केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों और वित्तीय बुनियादी ढांचे पर बढ़ते खतरे को लेकर जारी की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल तथा प्रशासक शामिल हुए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि जैसे जैसे भारत विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहा है, ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों की सामूहिक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। श्री मोदी ने कहा कि राज्यों के बीच सहयोग, संवाद और विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नीति आयोग इसमें सहयोग के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
0: नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ।
2: The topic for the Governing Council meeting.
3: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं, बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप प्रदेश भी प्रत्येक नागरिक के सशक्तिकरण को विकास का आधार बनाकर विकसित भारत के निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहा है।
4: नई दिल्ली में नीति आयोग की बैठक के दौरान कल मुख्यमंत्री ने कहा कि वज्रपात प्रदेश में मौसम जनित मृत्यु का प्रमुख कारण रहा है। सैटेलाइट एवं रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी के माध्यम से समय रहते सटीक चेतावनी उपलब्ध होने से नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा आपदा प्रबंधन तंत्र को और अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने वज्रपात से होने वाली जनधन हानि की रोकथाम के लिए प्रदेश में एक डेडिकेटेड सैटेलाइट उपलब्ध कराने, पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं बुंदेलखंड में एक एक एम्स स्थापित किए जाने के साथ ग्रेटर नोएडा में एक समर्पित रोबोटिक्स क्लस्टर विकसित करने, आंगनबाड़ी भवन निर्माण की निर्धारित लागत का पुनरीक्षण किए जाने और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की प्रीमियम राशि को बढ़ाने समेत अन्य मांगों को नीति आयोग के समक्ष रखा और इन्हें पूरा किए जाने की मांग की। समाचार कक्ष से विवेक सिंह।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की एनडीए सरकार के 12 साल पूरे होने पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजनों का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में कल केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने पीलीभीत में आयोजित चौपाल में जनता की समस्याएं सुनी। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है।
5: भारत के इतिहास में इतना लंबा समय किसी भी प्रधानमंत्री का नहीं, ऐसा नेतृत्व बहुत कम समय में देखने को मिलता। ये हम लोगों का सौभाग्य है। कहीं सड़कें, कहीं जल, कहीं डिजिटल इंडिया, कहीं हाईवे बन रहे हैं, कहीं सेतु बन रहे हैं। आस्था का सवाल हो तो अयोध्या का राम मंदिर का निर्माण, तमाम ऐसे कार्य, ये नींव रखी गई है विकसित भारत की।
0: प्रधानमंत्री

0: नरेंद्र मोदी के देश सेवा में 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज लखनऊ के लोकभवन सभागार में मीडिया संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मीडिया के साथ संवाद करेंगे। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों को लेकर प्रस्तुत है एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 4 करोड़ से अधिक घर आवंटित किए गए। वहीं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश भर के 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। पारंपरिक ईंधन जैसे कोयले और लकड़ी के धुएं से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की, जिसके तहत अब तक 10 करोड़ 55 लाख से अधिक महिलाओं को मुफ्त LPG कनेक्शन दिए गए। वहीं सड़क किनारे कारोबार करने वाले रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को ऋण देने के लिए शुरू की गई PM स्वनिधि योजना के तहत अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक लोगों को ऋण दिए जा चुके हैं। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया, जो जन कल्याण और समावेशी विकास के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त राज प्रताप सिंह ने बताया कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की तुलना में अंतिम सूची में करीब 29 लाख मतदाता बढ़ गए हैं, यानी अब कुल मतदाताओं की संख्या बढ़कर 12,58,00,000 हो गई है। अयोध्या में कल हुए होमगार्ड सम्मेलन में अयोध्या मंडल के 5 जिलों के होमगार्ड अधिकारी और जवान शामिल हुए। इस मौके पर DG होमगार्ड DK ठाकुर ने बताया कि होमगार्ड से जुड़ी जो भी समस्याएं शासन स्तर पर लंबित हैं, उनके समाधान के लिए प्रयास किए जाएंगे।
2: जो हमारे अधिकारी थे जिनके हमने सम्मेलन किया, उन्होंने 2 बातें मांग रखी थी। एक था कि उनको रिटायरमेंट के बाद कोई EPF टाइप का सुझाव दिया जाए, EPF टाइप की व्यवस्था हो, उसका प्रस्ताव शासन स्तर पर लंबित है। और उनकी दूसरी बात थी कि उनके आयुष्मान योजना में उनको शामिल किया जाए, उनका प्रस्ताव भी शासन स्तर पर लंबित है।
0: केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों और वित्तीय बुनियादी ढांचे पर बढ़ते खतरे को लेकर चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
3: गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा जारी चेतावनी के अनुसार साइबर अपराधी वित्तीय और व्यक्तिगत धोखाधड़ी के लिए AI द्वारा डीप फेक वीडियो का तेजी से दुरुपयोग कर रहे हैं। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे अपने बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रखें, संदिग्ध लॉगिन प्रयासों के प्रति सतर्क रहें और वित्तीय गतिविधियों से संबंधित ईमेल या SMS सूचनाओं की नियमित रूप से निगरानी करें। यह भी आग्रह किया गया है कि वे किसी भी संदिग्ध वित्तीय लेनदेन की सूचना राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के माध्यम से तुरंत दे। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: प्रदेश के अमरोहा, पीलीभीत और गाजियाबाद सहित कुछ अन्य जिलों में बीती रात बारिश होने से लोग उमस भरी गर्मी से राहत में हैं। पीलीभीत में आज सुबह भी रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी रहा। गोरखपुर सहित प्रदेश के कई पूर्वी जिलों में कल दिन भर बादल छाए रहे। वहीं बस्ती जिले में कल रात आकाशीय बिजली गिरने से एक छप्पर के जलने की सूचना है। मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में बारिश का अनुमान जताया है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग के 11वें शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। कहा, विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर करना होगा काम। नई दिल्ली में हुई नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर रखी अपनी बात। कहा, प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभा रहा है प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए जारी की

0: अंतिम मतदाता सूची ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की तुलना में बढ़े करीब 29 लाख मतदाता। और केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों और वित्तीय बुनियादी ढांचे पर बढ़ते खतरे को लेकर चेतावनी जारी की। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम। असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
2: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, सांस लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाए।
3: मीडिया वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं उस्ताद बिस्मिल्ला खां और साथी का शहनाई वादन। राग है अलैया बिलावल।

अभी आप सुन रहे थे उस्ताद बिस्मिल्ला खां और साथी का शहनाई वादन, राग था अलैया बिलावल। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं, सुबह के 8 बजने वाले हैं, सुनेंगे समाचार प्रभात हमारे दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा करें।

कल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए AI का उपयोग करने के बढ़ते खतरे की चेतावनी जारी की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने वर्तमान संघर्षों के बीच आपूर्ति श्रृंखलाओं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति वार्ता का हवाला देते हुए ईरान पर नए सैन्य हमले रोके। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच में आज इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से और फीफा फुटबॉल विश्व कप के आरंभिक मैच में मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। गृह मंत्री अमित शाह, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में कल सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। श्री शाह ने कहा कि एक ऐतिहासिक क्षण है, इससे देश में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज की संभावनाएं और बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि समझौते से हमारी विदेशों पर निर्भरता कम हो जाएगी।
1: अब सिर्फ एक MOU से ही 1,000 से 1,500 बैरल प्रतिदिन जो दोहन की हमारी क्षमता है उसको 10 गुना से ज्यादा हम बढ़ा पाएंगे और एक ही फील्ड में 15,000 करोड़ से ज्यादा रिकवरी के संभावनाएं हैं। परंतु पूरे नागालैंड के अंदर ऑयल और गैस जितना भी पड़ा है इसका उत्खनन होगा, तो मुझे लगता है कि हमारी जो कमी है इस क्षेत्र में हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है, वो निर्भरता काफी हद तक हम पूरी कर पाएंगे।
0: गृह मंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना दर्शाता है।
1: हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इससे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
0: नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने इस समझौते को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए श्री रियो ने कहा कि पूर्वोत्तर में शांति, स्थिरता और विकास के प्रति केंद्र की प्रतिबद्धता ने इस समझौते को संभव बनाया है। उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और असम सरकार को उनके सहयोग और सद्भावना के लिए धन्यवाद दिया। केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरों के बारे में चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
2: केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरे के बारे में चेतावनी जारी की है। गृह मंत्रालय के अधीन भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की ओर से जारी चेतावनी के अनुसार साइबर अपराधी डीप फेक वीडियो और कृत्रिम पहचान बनाने के लिए AI का तेजी से उपयोग कर रहे हैं। इन तकनीकों का दुरुपयोग चेहरे की पहचान, जीवंतता, सत्यापन, वीडियो KYC प्रक्रियाओं, खातों को दोबारा सक्रिय करने की प्रणालियों और वित्तीय तथा डिजिटल सेवाओं तक पहुंच बनाने के लिए किया जा रहा है। सरकार ने फिनटेक कंपनियों सहित वित्तीय संस्थाओं को डीप फेक का पता लगाने, प्रणाली मजबूत करने और ग्राहक ऑनबोर्डिंग तरीकों को बेहतर बनाने की सलाह दी है। लोगों से यह भी आग्रह किया गया है कि वे अपने बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रखें। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों के दुष्परिणामों से निपटने के लिए सुगम और विविध आपूर्ति श्रृंखलाओं, निरंतर राजनयिक प्रयासों और अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। फिनलैंड में कुलतारंता वार्ता में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि संघर्षों का प्रभाव उन क्षेत्रों से भी आगे बढ़ता है जहां वे घटित होते हैं। ऊर्जा सुरक्षा के विषय में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत के ऊर्जा संबंधी निर्णय राष्ट्रीय हित से प्रेरित हैं और खरीद सामर्थ्य और उपलब्धता को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं।
3: We signed this year a free trade agreement with Europe.
4: हमने यूरोप के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हमने यूरोप के साथ सुरक्षा और रक्षा साझेदारी भी की है। साथ ही हमारे पास यूरोप के साथ टैलेंट मोबिलिटी एग्रीमेंट की एक रूपरेखा भी है। इसीलिए मुझे लगता है कि रक्षा उद्योग खासकर स्मार्ट सेक्टर में आपसी सहयोग के रास्ते तलाशेंगे और देखेंगे क्या ऐसी कोई साझेदारी बन सकती है जो कारगर साबित हो।
3: We'll try to find common ground.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश में

0: आज एक भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सवेरे लखनऊ में और शाम को वाराणसी में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि होंगे। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम विदेश नीति के माध्यम से भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में सरकार के उठाए गए कदमों पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
1: पिछले 12 वर्षों में भारत अपनी साहसिक पहलों के दम पर एक मजबूत ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। इन पहलों में बड़े लक्ष्यों को हासिल करने का जज्बा और काम करने की लगन दोनों शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन कोशिशों को जिम्मेदारी और सबको साथ लेकर चलने की भावना से जोड़ा गया है, जिससे भारत की आवाज पूरी दुनिया में गूंज रही है। भारत ने इंडिया फर्स्ट के सिद्धांत को सबसे ऊपर रखते हुए अपनी विदेश नीति में नई ऊर्जा भरी है, पुराने रिश्तों को मजबूत किया है और नए दोस्त भी बनाए हैं। दुनिया भर में भारत के जुड़ाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्य है। 2025 में श्रीलंका के पूर्वी तट पर चक्रवात दित्वा टकराया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े होकर भारत ने उन्हें तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। इस बचाव और राहत कार्य में भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना और आपदा प्रतिक्रिया के दलों ने मिलकर काम किया। भारत ने श्रीलंका को हर तरह की मदद दी, पानी साफ करने वाली किट, दवाएं व सर्जिकल उपकरण और 60 टन विशेष मशीनें शामिल थी। भारतीय नौसेना के जहाजों ने तमिलनाडु से 1000 टन से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने 264 लोगों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित निकाला और 50 टन सामग्री एयरलिफ्ट की। इसके अलावा वहां फंसे 2500 से ज्यादा भारतीयों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। चक्रवात दित्वा के बाद प्रभावित इलाकों में रास्तों को फिर से जोड़ने और मजबूत करने के लिए भारत ने 14 लोहे के अस्थायी पुल भेजे। भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए श्रीलंका के बंदरगाह और नागर विमानन उप मंत्री जनित रवान कोदितवक्कू ने कहा कि भारत ने श्रीलंका के लोगों के प्रति प्यार और अपनापन दिखाया है। भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता कोविड महामारी के दौरान देखने को मिली। भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल शुरू की, जो इंसानों को ध्यान में रखकर की गई भारत की कूटनीति का एक बड़ा उदाहरण है। जनवरी 2021 से भारत ने 99 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज सप्लाई की है। इसमें 50 से ज्यादा देशों को तोहफे में दी गई और कोवैक्स पहल के जरिए दी गई डोज शामिल है। वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने अपनी पड़ोसी प्रथम नीति के अंतर्गत अपने पड़ोसी देशों को सबसे आगे रखा। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बांग्लादेश के रहने वाले फिजियोथेरेपिस्ट और योग शिक्षक डॉक्टर ज्योतिष को विश्वास ने कहा,
2: इंडिया जो किया हमारे लिए वैक्सीन, वो टाइम पे फास्ट रिस्पॉन्स किया और भेज दिया, हम भी वो वैक्सीन लिया तो हमारे भी बहुत अच्छा हुआ। हमारा रिलेटिव्स और देशवासी को लिए वो एक बहुत अच्छा तोहफा था इंडिया से, तो इसलिए हम बहुत कृतज्ञ हूँ।
1: पिछले 12 वर्षों में वैक्सीन मैत्री, ऑपरेशन सागर बंधु जैसी पहलों के जरिए भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में आगे आया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन के दौरे पर उत्तराखंड जाएंगे। वे आज देहरादून में राष्ट्रपति निकेतन पहुंचेंगे। उत्तराखंड प्रवास के दौरान वे 132 एकड़ क्षेत्र में बन रहे राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 2 दिन की स्विट्जरलैंड यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्मोलिन और आर्थिक राज्य सचिव हेलेन बुडलिगर आर्टिडा से मुलाकात करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी मजबूत करेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर नए सैन्य हमले रोक दिए हैं। इससे पहले ट्रंप ने धमकी दी थी कि ईरान के तेल उद्योग पर कब्जा करके युद्ध और बढ़ाया जाएगा। श्री ट्रंप ने ईरान के उच्च स्तरीय नेतृत्व के साथ हुई बातचीत में प्रगति को इस बदलाव का कारण बताया है। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि युद्ध विराम को बढ़ाने के लिए चल रही वार्ता में भी प्रगति हुई है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के

0: पहले मैच में मेजबान मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया है। मैक्सिको ने 9वें और 67वें मिनट में गोल कर मैच जीत लिया। ये टूर्नामेंट 20 जुलाई तक अमरीका, कनाडा और मैक्सिको में संयुक्त रूप से खेला जाएगा। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप आज शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित इस टूर्नामेंट का फाइनल 5 जुलाई को लॉर्ड्स में होगा। भारतीय टीम 14 जून को पाकिस्तान के साथ अपना अभियान शुरू करेगी। टूर्नामेंट में पहली बार 12 टीम हिस्सा ले रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा हो सकती है। देश के पूर्वोत्तर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने दिल्ली और एनसीआर के कई स्थानों पर आज गरज चमक के साथ वर्षा का भी अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक की खबर सभी अखबारों में है। दैनिक जागरण के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राज्यों के विकास के बिना विकसित भारत का निर्माण संभव नहीं। नवभारत टाइम्स के अनुसार पीएम ने कहा, भारत तेजी से तरक्की की राह पर। बैठक में पीएम ने दिया विकसित भारत का रोड मैप। हिंदुस्तान की सुर्खी है, 4 दिन में भारतीय क्रू वाला तीसरा पोत तबाह। हॉर्मुज में हुए हमले में सभी सुरक्षित, बुधवार को लापता नाविकों के शव मिले। पत्र ने भारतीयों की चिंता शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, पश्चिम एशिया में फिर तनाव फैलने और युद्ध भड़कने पर भारत पर सीधी आंच आई है। ये पश्चिम एशिया में टकराव का नया और खतरनाक मोड़ है। युद्ध रोकने के लिए वार्ता जारी थी, पर शीघ्र वार्ता के लिए अमेरिका का युद्ध छेड़ना अतार्किक है। जनसत्ता की सुर्खी है, तृणमूल से एक और इस्तीफा, कल्याण के बगावती तेवर। पत्र ने राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के मामले में सुर्खी दी है, मीनाक्षी नटराजन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। पंजाब केसरी ने सर्वोच्च न्यायालय के हवाले से लिखा है, गृहिणियां हैं राष्ट्र की निर्माता, परिवार की नींव मजबूत करती हैं, उनके काम की कीमत हर महीने 30,000 रुपए होनी चाहिए। नवभारत टाइम्स ने इसी मामले पर खबर संपादकीय में लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने सड़क दुर्घटना मामले में कहा, इसका जितना व्यापक कानूनी असर है उतना ही सामाजिक। अदालत ने राष्ट्र निर्माण में घरेलू काम और जिम्मेदारियों के महत्व को स्वीकारा है। ये फैसला उस सोच पर प्रहार है जिसके अनुसार घर का काम कोई मायने नहीं रखता। दैनिक भास्कर ने विशेष रिपोर्ट में दिया है, आंखों से देख नहीं सकती थी मासूम, आवाज से पहचान लिए 3 दरिंदे, दुष्कर्म केस में आरोपियों की जमानत याचिका रद्द। पंजाब और हरियाणा कोर्ट में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और अपीली अदालत का फैसला बरकरार। लोकसत्य का शीर्षक है, दिल्ली एनसीआर में ऑरेंज अलर्ट, आंधी और बारिश की संभावना। हवा के कारण तापमान में 6 से 7 डिग्री तक की गिरावट हो सकती है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए एआई का उपयोग करने के बढ़ते खतरे की चेतावनी जारी की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने वर्तमान संघर्षों के बीच आपूर्ति श्रृंखलाओं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति वार्ता का हवाला देते हुए ईरान पर सैन्य हमले रोके। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच में आज इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से और फीफा फुटबॉल विश्व कप के आरंभिक मैच में मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Verma. The headlines. Centre signs historic tripartite MOU with Assam and Nagaland governments for exploration and production of crude oil and natural gas in the two states. Government issues advisory about growing threat of cyber criminals using artificial intelligence to bypass security systems and target financial infrastructure. External Affairs Minister S. Jayashankar calls for diversified supply chains and greater international cooperation amid ongoing conflicts. U.S. President Donald

0: सप्लाई निजाम और बैन अल-अक़वामी इश्तराक में इजाफे पर जोर दिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जंग के खात्मे के लिए बातचीत में पेशरफ्त का हवाला देते हुए ईरान पर नए फौजी हमले मंसूख कर दिए हैं। बर्मिंघम में आज ख्वातीन के आईसीसी टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के पहले मैच में मेजबान इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से होगा। और फुटबॉल में फीफा वर्ल्ड कप 2026 के पहले मैच में मेक्सिको ने जनूबी अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। एक अहम वाकये में मरकज ने आसाम और नागालैंड में खाम तेल और कुदरती गैस की तलाश और पैदावार के लिए दोनों रियासतों की सरकारों के साथ तारीखी सहफरीकी मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, पेट्रोलियम के वजीर हरदीप सिंह पुरी, आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा और नागालैंड के वजीर आला नेफ्यू रियो की मौजूदगी में इस मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए गए। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब अमित शाह ने कहा कि मस्कूरा मुफाहमत नामे पर दस्तखत एक तारीखी लम्हा है और इससे मुल्क में तेल और कुदरती गैस की तलाश के इम्कानात में इजाफा होगा।
1: अब सिर्फ एक एमओयू से ही 1000 से 1500 बैरल प्रतिदिन जो दोहन की हमारी क्षमता है उसको 10 गुना से ज्यादा हम बढ़ा पाएंगे और एक ही फील्ड में 15,000 करोड़ से ज्यादा रिकवरी के संभावनाएं हैं। परंतु पूरे नागालैंड के अंदर ऑयल और गैस जितना भी पड़ा है इसका उत्खनन होगा, तो मुझे लगता है कि हमारी जो कमी है इस क्षेत्र में हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है, वो निर्भरता काफी हद तक हम पूरी कर पाएंगे।
0: आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि आसाम और नागालैंड के दरमियान सरहद का मामला तवील अरसे से तस्फिया तलब है और इसकी वजह से खित्ते में मौजूद कुदरती वसाइल को मुल्क के लिए बरूए कार नहीं लाया जा सका है। नागालैंड के वजीर आला ने फ्यूरियो ने भी सहफरीकी मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए जाने को एक तारीखी संगे मील से ताबीर किया। मरकज ने साइबर मुजरिमों की तरफ से इस बढ़ते हुए खतरे के बारे में एडवाइजरी जारी की है कि वो सिक्योरिटी निजाम से बचते हुए माली बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए मस्नूई ज़हानत का इस्तेमाल कर रहे हैं। उमूर दाखिला की वजारत के तहत भारतीय साइबर जराइम तालमेल मरकज की तरफ से जारी की गई एडवाइजरी के मुताबिक साइबर मुजरिम डीप फेक वीडियो और मस्नूई शनाख्त तैयार करने के लिए AI का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
2: मस्कूरा एडवाइजरी में इस बात को उजागर किया गया है कि धोखाधड़ी करने वाले अफराद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, मुलाजमत से मुतालिक पोर्टल, डेटिंग प्लेटफॉर्म्स या फोन कॉल्स के जरिए राब्ते कायम करते हैं। ये अनासिर लोगों के चेहरे से मुतालिक डाटा इकट्ठा करते हैं और कभी कभी वो इसके लिए लोगों को पलक झपकाने, घूमकर देखने या कैमरे पर बोलने जैसे काम करने पर राजी कर लेते हैं। सरकार ने फिनटेक कंपनियों समेत माली इदारों को यह सलाह दी है कि वो डीप फेक का पता लगाने के तरीकेकार को मुस्तहकम बनाएं और सार्फीन को शामिल करने के निजाम को वसत दें। लोगों से भी जोर देकर ये कहा गया है कि वो अपना बायोमेट्रिक डाटा महफूज रखें, लॉगिन करने की मशकूक कोशिशों से चौकस रहें और माली सरगर्मियों से मुतालिक ईमेल या SMS नोटिफिकेशन पर बाकायदगी से नजर रखें। शहरियों को ये सलाह भी दी गई है कि वो कौमी साइबर जराइम रिपोर्टिंग पोर्टल के जरिए किसी भी तरह के मुश्तबा माली लेन देन की इत्तला बिला ताखीर दें। दिल्ली से प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
0: वजीर खारजा जयशंकर ने मौजूदा महाजाराई और टकराव के असरात से निमटने के लिए मजबूत और मुतनव्वे सप्लाई निजाम, पायदार सिफारती कोशिशों और बैन अल-अक़वामी इश्तराक में इजाफे की जरूरत पर जोर दिया है। फिनलैंड में उभरती हुई ताकतों और नए जुग्राफियाई और सियासी मुकाबले के मौजू पर एक

0: एक मुबहसे में इजहार ख्याल करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि टकराव और लड़ाई के असरात उन खित्तों से बाहर तक मुरतब होते हैं जहां ये हो रहे हैं। तवानाई की यकीनी फराहमी के बारे में डॉक्टर जयशंकर ने यह बात दोहराई कि तवानाई के ताल्लुक से कोई भी फैसला मुल्क के मफाद को मलहूज खातिर रखते हुए किया जाता है और इस सिलसिले में कोई भी सरकारी खरीद कम वक्त और दस्तियाबी की सूरत हाल पर मबनी होती है। पिछले 12 साल में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की नज़रिया साज़ क़यादत में मुल्क में बड़ी तब्दीली आई है और इसमें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों का अहम रोल रहा है। इस अरसे के दौरान मोदी सरकार ने गरीबों, किसानों, ख़वातीन और नौजवानों की बहबूद और उन्हें बाख्तियार बनाने के लिए कई अहम इकदाम किए हैं। आकाशवाणी न्यूज एक खसूसी फीचर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के पेश कर रहा है। इसके तहत आज हम खारजा पॉलिसी के जरिए भारत को आलमी सतह पर एक सरकर्दा मुल्क बनाने की सरकार की जानिब से किए गए इकदाम की बात कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: पिछले 12 साल के दौरान भारत एक मजबूत आलमी लीडर के तौर पर उभरा है, जिसकी वजह वो जुरतमंदाना इकदाम हैं जो अजाइम को अमल से जोड़ते हैं। वज़ीर आज़म की क़यादत ने उन कोशिशों को जिम्मेदारी और शमूलियत के साथ आगे बढ़ाया है, जिससे ये बात यकीनी हुई है कि भारत की आवाज़ आलमी प्लेटफॉर्म पर गूंजे। भारत ने मुल्क मुकद्दम के उसूल को सबसे ऊपर रखते हुए खारजा पॉलिसी में नई तवानाई फूंकी और अपने पुराने ताल्लुकात को मजबूत करने के साथ साथ नए दोस्त भी बनाए। भारत की खारजा पॉलिसी की सबसे बड़ी खास बात कोविड-19 बहरान के दौरान सामने आई, जब उसने अपनी इंसान दोस्त सिफारतकारी के सबूत के तौर पर वैक्सीन मैत्री इकदाम शुरू किया। जनवरी 2021 से भारत ने 99 ममालिक और अक्वाम मुतहदा के दो इदारों को 30.12 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन फराहम की। बांग्लादेश में मुकीम फिजियोथेरेपिस्ट और योग टीचर डॉक्टर ज्योतिष को बिस्वास ने आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए कहा कि भारत की तरफ से वैक्सीन की तेज रफ्तार तरसील खैरसगाली का एक गहरा मुजाहिरा था। उन्होंने भारत, उसकी हुकूमत और उसके अवाम का शुक्रिया अदा किया और नए ख्वाहिशात का इजहार किया। इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मदद और आफात से निमटने के ऑपरेशंस भारत की आलमी शमूलियत का एक अहम हिस्सा रहा है। नवंबर 2025 में श्रीलंका के मशरकी साहिल पर तूफान दित्वा आया, जिससे सैकड़ों अफराद हलाक, हजारों बेघर और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर तहस नहस होकर रह गया। श्रीलंका के अवाम के साथ यकजहती का इजहार करते हुए भारत ने श्रीलंका को फौरी इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मदद और आफात से निजात फराहम करने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। भारत ने 1000 टन से ज्यादा इमदादी सामान पहुंचाया, जिसमें खुश्क राशन, खेमे, तिरपाल, हाइजीन किट्स, कपड़े, पानी साफ करने वाली किट्स और तकरीबन 4.5 टन अद्वियात और सर्जिकल आलात, इसके अलावा 60 टन खसूसी साजो सामान शामिल था। भारत की हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हुए श्रीलंका के बंदरगाहों और हवाबाजी के नायब वजीर जमित रोवान कदी थुकोव ने कहा कि भारत ने श्रीलंका के लोगों के साथ बेपनाह गर्मजोशी और यकजहती का मुजाहरा किया है। पिछले 12 साल में भारत ने वैक्सीन मैत्री और ऑपरेशन सागर बंधु जैसे मौसर इकदाम के जरिए एक आलमी रहनुमा के तौर पर कदम बढ़ाया है। नई दिल्ली से अमन यादव की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
0: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से उत्तराखंड के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। अपने इस दौरे में वो देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी में 158वें रेगुलर कोर्स और 141वें तकनीकी ग्रेजुएट कोर्स की पासिंग आउट परेड का मुशाहिदा करेंगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जंग के खात्मे के लिए बातचीत में बेशरफ का हवाला देते हुए ईरान पर नए फौजी हमले रोक दिए हैं। इससे चंद घंटे कबल उन्होंने ईरान की तेल सनत का कंट्रोल अपने हाथ में लेने की धमकी दी थी। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर सदर ट्रंप ने कहा कि

0: ईरान के आला सतह के रहनुमाओं के साथ बातचीत में पेशरफ्त हुई है और इसीलिए अचानक ये तब्दीली हुई है। सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ जंग के खात्मे के लिए समझौता करीब करीब मुकम्मल हो गया है और यूरोप में खत्म हफ्ता पर इस समझौते पर दस्तखत किए जाने की उम्मीद है। सदर ट्रंप ने व्हाइट हाउस में ओवल ऑफिस में ये बात कही। खवातीन का 10वां आईसीसी T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप आज बर्मिंघम में एजबस्टन में शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट के पहले मैच में मेजबान इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से होगा। एक माह तवील टूर्नामेंट की मेजबानी इंग्लैंड और वेल्स कर रहे हैं। टूर्नामेंट का फाइनल 5 जुलाई को लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा। भारतीय खवातीन इतवार को रिवायती हरीफ पाकिस्तान के खिलाफ मैच से अपनी मुहिम का आगाज करेंगी। हरमनप्रीत कौर की जेर कमान भारतीय टीम खवातीन का अपना पहला T20 वर्ल्ड कप टाइटल जीतने के इरादे के साथ मैदान में उतरेगी। फीफा वर्ल्ड कप 2026 कल रात शानदार इफ्तिताही तकरीब के साथ मैक्सिको सिटी में शुरू हुआ है। पहले मैच में मैक्सिको ने जनूबी अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया। खेल के 9वें मिनट में जूलियन क्विनोन्स ने मैक्सिको के लिए पहला गोल किया। बाद में राउल जेमेनेज ने 67वें मिनट में गोल करके स्कोर मैक्सिको के हक में 2-0 कर दिया। इससे कबल फीफा वर्ल्ड कप की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब में आलमी मौसीकी और सकाफत की झलक पेश की गई, जिसमें शाकिरा और बर्नाबॉय ने शायकीन को मशहूर कर दिया। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज दिल्ली कौमी राजधानी खत्ते में कई मकामात पर गरज चमक के साथ औसत बारिश होने की पेशगोई की है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान के कुछ हिस्सों, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी इसी तरह का मौसम रहने का इम्कान है। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं शमीम इरफान।
1: शुक्रिया फहीम। आज के बेशतर उर्दू अखबारात की शह सुर्खियां एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अखबार प्रताप ने नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल से वजीर आजम के खिताब को अपनी शह सुर्खी बनाते हुए लिखा है, पीएम मोदी ने रियासतों को विकसित भारत 2047 के लिए दिया मास्टर प्लान। अमरीका के भारतीय जहाज पर हमले में अमले के 3 अहलकारों की हलाकत के बाद भारत ने अमरीकी नाजिमुल उमूर को तलब किया। ये खबर भी अखबारों ने नुमाया तौर पर शाये की है। अखबार इनकलाब की शह सुर्खी है, राज्यसभा इंतखाबात में मध्य प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक से 14 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। अखबार की एक और सुर्खी है, 4 दिन में TMC के 4 राज्यसभा मेंबरों ने पार्लियामेंट ने दिया इस्तीफा। अखबार प्रताप की एक और नुमाया खबर है, फौज के सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने 6 साबिक फौजियों को शानदार खिदमत के लिए एजाज से नवाजा।
0: आखिर में खास खबरें एक बार फिर। मरकज ने आसाम और नागालैंड में खाम तेल और कुदरती गैस की तलाश और पैदावार के लिए दोनों रियासतों की सरकारों के साथ तारीखी सह फरीकी मुफाहमत नामे पर दस्तखत किए हैं। सरकार ने सिक्योरिटी निजाम से बचने और माली बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने की खातिर मस्नूई ज़हनत का इस्तेमाल करने के साइबर मुजरिमों के बढ़ते हुए खतरे के तनाजुर में एडवाइजरी जारी की है। वजीर खारजा एस जयशंकर ने मौजूदा महाजाराई के दौर में मतनवे सप्लाई निजाम और बैन अलावामी इश्तराक में इजाफे पर जोर दिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जंग के खात्मे के लिए बातचीत में पेशरफ्त का हवाला देते हुए ईरान पर नए फौजी हमले मनसूख कर दिए हैं। बर्मिंघम में आज खवातीन के आईसीसी T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के पहले मैच में मेजबान इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से होगा। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: मीडिया वेव के मीटर पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र को। आइए सुनते हैं कार्यक्रम मधुरिमा। उससे पहले सुन लेते हैं ये संदेश।
3: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
4: जी,
3: ये KYC अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
4: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर KYC अपडेट करवाना चाहिए।
3: पर ये होगा कैसे?
4: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या ATM या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी BC के पास जाएं।

0: या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
1: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो
0: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
1: बस समझ गया।
0: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
6: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
5: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
6: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
5: बुकिंग है तो संपर्क करें
7: 0542227658
8: 0542227658। आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम

മധുരമാ ദ സൗണ്ട് ഓഫ് മെലഡി മധുരമാ. मधुरिमा सुनने वाले सभी श्रोताओं को चित्रा का नमस्कार. श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे कि आखिर ये प्यार, प्रेम यानी लव क्या चीज है. प्रेम का सही अर्थ स्वार्थहीन समर्पण और गहरा लगाव है. ये केवल एक भावना ही नहीं बल्कि एक ऐसी स्थिति है जहां आप बिना किसी लाभ की अपेक्षा के किसी व्यक्ति या प्राणी की खुशी और भलाई को सर्वोपरि रखते हैं. जीवन में प्रेम के विभिन्न रूप होते हैं जिन्हें हम कुछ प्रमुख तरीके से समझते हैं. सच्चा प्रेम बदले में कुछ नहीं मांगता, ये पाने से ज्यादा देने में विश्वास करता है. ये प्रेम कहलाता है निस्वार्थ भाव का प्रेम. प्रसिद्ध साइकाट्रिस्ट एरिक फॉर्म के अनुसार प्रेम केवल एक क्षणिक भावना नहीं बल्कि ये देखभाल, सम्मान और जिम्मेदारी का एक निरंतर अभ्यास और चुनाव है. निस्वार्थ प्रेम क्या कहलाएगा? इसमें अहंकार को पीछे छोड़कर सामने वाले के व्यक्तित्व, उसकी कमियों और अच्छाइयों को स्वीकार करना शामिल है. संस्कृत में प्रेम शब्द का मूल अर्थ आनंदित होना और प्रिय लगना होता है. संक्षेप में प्रेम वह सकारात्मक ऊर्जा है जो हमें दूसरों से जोड़ती है और जीवन को सार्थक बनाती है. तो आज की प्लेलिस्ट कुछ बेहद खूबसूरत प्यार भरे गीतों के नाम.

प्रेम एक गहरी मानवीय भावना है जो स्नेह, लगाव और आत्मीयता को दर्शाती है। इसका वास्तविक अर्थ किसी के सुख दुख को अपना समझना, बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की भलाई की कामना करना और आपसी सम्मान बनाए रखना है। ये केवल एक एहसास नहीं, बल्कि समर्पण और समझ का मिला जुला रूप है।

श्रोताओं, प्रेम के बिना जीवन नीरस, अधूरा और उद्देश्यहीन हो जाता है। ये मानवीय संवेदनाओं का आधार है। यदि प्रेम न रहे तो जीवन में सहानुभूति और आत्मीयता की जगह स्वार्थ, अकेलेपन और निराशा ले लेते हैं। प्रेम जीवन को ऊर्जा देता है और इसके अभाव में दुनिया केवल एक यांत्रिक प्रक्रिया बनकर रह जाती है।

श्रोताओं, जीवन में प्रेम के कुछ और भी पहलू हैं, जैसे सेल्फ लव यानी आत्म प्रेम। दूसरों के प्रेम के अभाव में स्वयं से प्रेम करना और अपनी देखभाल करना सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। एम्पथी यानी सहानुभूति। प्रेम हमें एक दूसरे से जोड़ता है, इसके बिना समाज में संवेदनाएं और सहयोग समाप्त हो सकते हैं। सौंदर्य और कला। साहित्य, संगीत और कला का मूल भाव प्रेम ही है, इसके बिना रचनात्मकता और प्रेरणा का हाश होता है। प्रेम ही ईश्वर और सत्य तक पहुंचाने का मार्ग है, इसके बिना जीवन केवल भौतिक आवश्यकताओं तक सीमित रह जाता है।

घड़ी चढ़े घड़ी उतरे, वह तो प्रेम न होए। अघट प्रेम ही हृदय बसे, प्रेम कहिए सोए। जो प्रेम घटता बढ़ता है वह सच्चा प्रेम है, नहीं हो सकता। जो बढ़ता और घटता है वह प्रेम नहीं बल्कि आसक्ति है, जहाँ कोई अपेक्षा नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, कोई दोष या छल नहीं, कोई निर्णय नहीं। जो निरंतर स्थिर से बहता है, प्रशंसा से विचलित नहीं होता, आलोचना घृणा जिसमें नहीं है, ऐसा अटल और निस्वार्थ प्रेम ही सच्चा प्रेम कहलाता है।

संत कबीर कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयानक हुई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। संसार में लोग अनेक ग्रंथ पढ़ते मर गए, परंतु कोई विद्वान नहीं बना। शास्त्रों का पाठ किया, परंतु प्रेम शब्द के ढाई अक्षरों को भी न समझ पाने के कारण भटकते रहे। परंतु जो प्रेम में केवल ढाई अक्षरों को समझ लेता है, वही विद्वान बन जाता है। जब कोई प्रेम का साक्षात स्वरूप बन जाता है, तब समस्त शास्त्र का अर्थ समाप्त हो जाता है। तो श्रोताओं, आज की मधुरिमा बस इतनी ही। आपको प्यार भरा नमस्कार।

0: मधुरिमा द साउंड ऑफ मेलोडी।
1: अभी आप सुन रहे थे मधुरिमा, यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। सुबह के 9:15 होने वाले हैं, सुनेंगे जिले की हलचल हमारे लखनऊ केंद्र से।

0: जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए फरुखाबाद और शाहजहांपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं फरुखाबाद जिले की हलचल। आलेख और स्वर है गौरव यादव का।
1: फरुखाबाद जिलाधिकारी डॉक्टर अंकुल लाठर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में IGR शिकायतों के निस्तारण एवं उनकी गुणवत्ता की समीक्षा हेतु महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा शिकायतों के निस्तारण की स्थिति, शिकायतकर्ताओं से संवाद, साक्ष्यों के अपलोड तथा फीडबैक की गुणवत्ता की गहन समीक्षा की गई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सक्षम अधिकारी स्वयं निस्तारण की आख्या परीक्षण कर उसे पोर्टल पर अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि यह केवल औपचारिक निस्तारण पर्याप्त नहीं है, बल्कि प्रत्येक शिकायत का गुणवत्तापूर्ण तथा तत्परक समाधान किया जाना आवश्यक है। उन्होंने निर्देशित किया कि प्रत्येक निस्तारण आख्या के साथ आवश्यक साक्ष्य अनिवार्य रूप से संलग्न किए जाएं, जिसमें शिकायतकर्ता से वास्ता, स्थलीय निरीक्षण की रिपोर्ट तथा शिकायतकर्ता की अनुपस्थिति में दो पड़ोसियों के बयान सम्मिलित हों। जिलाधिकारी ने समीक्षा बैठक में शिकायतों की गुणवत्तापूर्ण निस्तारण न करने वाले कर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उनके वेतन रोकने के आदेश दिए।
2: जिसने

0: अधिकारियों के लेवल पे जो असंतोषजनक फीडबैक है वो भी चेक किया गया और समीक्षा करने पे पाया गया कि असंतोषजनक फीडबैक के मुख्य कारण ये थे कि शिकायतकर्ता से फोन पे बात की नहीं गई है, इसलिए बार बार निर्देशित भी किया गया था मीटिंग के तहत कि इसको फीडबैक लिया जाए।
1: फरुखाबाद जिलाधिकारी द्वारा जनपद के हरदोई कमालगंज मार्ग पर गंगा नदी पर 191.13 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन पुल के कार्य का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने निर्माण कार्यों की प्रगति, गुणवत्ता तथा सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं का गहनता से अवलोकन किया। जिलाधिकारी ने पहुंच मार्ग पर संभव कटान वाले स्थलों के निरीक्षण करते हुए संबंधित अधिकारियों से अब तक किए गए सुरक्षात्मक कार्यों की प्रगति की आख्या प्राप्त की। उन्होंने गंगा नदी किनारे कराए जा रहे पिचिंग कार्यों के भौतिक सत्यापन भी किया तथा कार्यों की गुणवत्ता तथा निर्धारित मानकों के अनुरूप बनाए जाने पूरे निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने सेतु निगम एवं लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि निर्माण कार्यों में पूरी गुणवत्ता तथा मानक के साथ निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें, जिसमें आम जन को आवागमन से बेहतर सुविधा उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि परियोजना जनहित से जुड़ी महत्वपूर्ण परियोजना है, इसलिए कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। जिलाधिकारी ने नियमित रूप से कार्यों की निगरानी तथा कटान प्रभावित क्षेत्रों के अतिरिक्त सतर्कता बरतने के भी निर्देश दिए ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई क्षति संभावित न रहे। फरुखाबाद जनपद में परिवहन विभाग द्वारा किसानों की सुविधा एवं उनके वाहनों से संबंधित आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक विशेष किसान ड्राइविंग लाइसेंस शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के माध्यम से किसानों को ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित आवश्यक सेवाएं सरल एवं सुगम रूप से उपलब्ध कराई गई। शिविर में पात्र अभ्यर्थियों के आवेदन, आवश्यक अभिलेखों की जाँच, अन्य संबंधित प्रक्रियाएं पूर्ण की गई, जिससे किसानों को विभागीय कार्यालय के बार बार चक्कर न लगाने पड़े। प्रशासन द्वारा ये प्रयास किसानों को सुगम, पारदर्शी एवं जनहित सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। फरुखाबाद जिलाधिकारी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में 18 करोड़ की लागत से बन रहे क्रिटिकल केयर यूनिट का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य में देरी के चलते उस पर पेनल्टी लगाई गई है तथा कार्यदायी संस्था को जल्द से जल्द क्रिटिकल केयर यूनिट को हैंडओवर कराने के निर्देश दिए गए। साथ ही ट्रामा सेंटर का भी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी समेत अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। फरुखाबाद जनपद में मुख्यमंत्री राज्य औद्योगिक विकास योजना अंतर्गत शाकभाजी कार्यक्रम एवं बागवानी मशीनरीकरण योजनाओं के हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए। उद्यान विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु नवीन गाइडलाइन के अनुसार मुख्यमंत्री राज्य औद्योगिक विकास योजना के अंतर्गत जनपद फरुखाबाद के कृषकों के लिए विभिन्न योजनाओं में लक्ष्य प्राप्त हुए। योजनाओं के उद्देश्य कृषकों को आधुनिक कृषि तकनीकों, उन्नत बीजों तथा कृषि यंत्रीकरण से जोड़ते हुए उनकी आय में वृद्धि कराना है। आलू एवं शाकभाजी विकास अधिकारी राघवेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि शंकर शाकभाजी कार्यक्रम के अंतर्गत सामान्य वर्ग हेतु 30 हेक्टेयर तथा अनुसूचित जाति वर्ग हेतु 10 हेक्टेयर कुल 40 हेक्टेयर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त परियोजना आधारित बागवानी मशीनीकरण योजना अंतर्गत कृषकों को कृषि यंत्र पर अनुदान का लाभ दिलाना सुनिश्चित किया जाएगा। फरुखाबाद जनपद में जिला जज नीरज कुमार ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का फीता काटकर समाधान समारोह का उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य अदालतों में लंबित मामलों के निस्तारण में रफ्तार मिलेगी, सुलह समझौते से समाधान होगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में समाधान समारोह 2026 के सफल आयोजन को लेकर जागरूकता शिविर का शुभारंभ किया गया। आगामी 21, 22 और 23 अगस्त 2026 को आयोजित होने वाली विशेष लोक अदालत से पहले चिन्हित वादों के निस्तारण हेतु प्री सिटिंग वार्ताओं और सुलह समझौते की प्रक्रिया को तेज किया जाएगा। इस अवसर पर जिला जज समेत अन्य न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट उपस्थित रहे।
2: फरुखाबाद जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं शाहजहांपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है कौशलेंद्र मिश्रा का।
3: बीता माह जनपद शाहजहांपुर के लिए विकास, जन कल्याण, पर्यावरण संरक्षण, सांस्कृतिक उपलब्धियों, धार्मिक आयोजनों और प्रशासनिक गतिविधियों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण रहा। जिले में जहां एक ओर विकास कार्यों को गति देने के लिए प्रशासन सक्रिय दिखाई दिया, वहीं सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने भी जन जागरण के लिए विविध कार्यक्रमों के माध्यमों से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। माह के पहले सप्ताह में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में मिर्जापुर विकास खंड के ग्राम पहरुआ स्थित ऐतिहासिक तालाब के संरक्षण, सफाई और सौंदर्यीकरण अभियान का शुभारंभ किया गया। अभियान का उद्देश्य तालाब में रहने वाले कछुओं का संरक्षण, जल स्रोतों का पुनर्जीवन तथा जैव विविधता को बढ़ावा देना है। जन प्रतिनिधियों, अधिकारियों और ग्रामीणों ने श्रमदान कर तालाब को संरक्षित करने का संकल्प लिया। इसके साथ ही भैंसी और गोमती नदी तटों पर हरिशंकरी वृक्षारोपण अभियान भी चलाया गया, जिसमें पर्यावरण संरक्षण और जल संवर्धन का संदेश दिया गया। विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने नगर क्षेत्र में चल रही सड़क निर्माण परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए। नगर निगम की समीक्षा बैठक में 108 सड़क निर्माण कार्यों की प्रगति पर चर्चा हुई तथा 15 जून तक 5 प्रमुख सड़कों का निर्माण पूरा कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। अधिकारियों को गुणवत्ता और समय सीमा का विशेष ध्यान रखने के निर्देश भी दिए गए। माह के दूसरे सप्ताह में कानून व्यवस्था और पारदर्शिता को लेकर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह सक्रिय रहा। उत्तर

0: प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस अधीक्षक और अन्य अधिकारियों ने परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। अभ्यर्थियों की सुरक्षा, यातायात व्यवस्था और परीक्षा केंद्रों की निगरानी के लिए विशेष प्रबंध किए गए। इसके अलावा सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से चलाए गए विशेष यातायात अभियान में 1013 वाहनों के चालान किए गए तथा 3 नए वाहनों को सीज किया गया। सांस्कृतिक क्षेत्र में भी शाहजहांपुर में अपनी पहचान मजबूत की। जिले के युवा रंगकर्मी यश देव शर्मा और शैलेंद्र पटेल का चयन भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ की अंतिम चयन कार्यशाला के लिए हुआ। इस उपलब्धि को जिले के रंगमंच जगत के लिए गौरवपूर्ण माना जा रहा है। धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में गायत्री परिवार की ज्योति कलश रथ यात्रा पूरे माह चर्चा का केंद्र रही। शांति कुंज हरिद्वार से 2400 तीर्थों की रज लेकर निकली यह यात्रा जिले के नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंची, जहां श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा, आरती और जयघोष के साथ स्वागत किया। रथ यात्रा के माध्यम से विचार क्रांति, युग निर्माण, नशा मुक्ति, पर्यावरण संरक्षण, आत्म सुधार और संस्कार निर्माण का संदेश जन जन तक पहुंचाया गया। यात्रा के दौरान अनेक स्थानों पर दीप यज्ञ, सामूहिक प्रार्थना और साहित्य वितरण कार्यक्रम आयोजित किए गए। बड़ी संख्या में लोगों ने श्रेष्ठ जीवन मूल्यों को अपनाने और समाज निर्माण में योगदान देने का संकल्प लिया। प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने भावलखेड़ा विकास खंड के अंतर्गत तहवरगंज आंगनवाड़ी केंद्र का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया, साथ ही गर्भवती महिलाओं की गोद भराई तथा एक बालिका का अन्नप्राशन संस्कार संपन्न कराया। अपने संबोधन में मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं में आंगनबाड़ी केंद्रों को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित करना शामिल है, ताकि नवजात बच्चों, गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं को बेहतर सेवाएं मिल सकें। उन्होंने कहा कि स्वस्थ और संस्कारित नई पीढ़ी के निर्माण में आंगनबाड़ी केंद्रों की महत्वपूर्ण भूमिका है। कार्यक्रम में जन प्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और बड़ी संख्या में ग्रामीणों की सहभागिता रही। एक जनपद एक उत्पाद ODOP वित्त पोषण योजना स्थानीय उद्यमियों के लिए रोजगार और स्वरोजगार का मजबूत माध्यम बन रही है। योजना का लाभ लेकर शाहजहांपुर के 2 उद्यमियों ने न केवल अपना कारोबार स्थापित किया बल्कि अन्य लोगों को भी रोजगार उपलब्ध कराया है। मोहल्ला बाड़ूजी पेशावरी निवासी मोहम्मद राशिद ने जरी जरदोजी की इकाई स्थापित करने के लिए केनरा बैंक घंटा घर शाखा से 3 लाख रुपए का ऋण प्राप्त किया। इस सहायता से उन्होंने अपना काम शुरू किया, जिससे 5 अतिरिक्त परिवारों को रोजगार मिला। वर्तमान में उनकी इकाई का वार्षिक कारोबार 5 लाख रुपए से भी अधिक पहुंच चुका है। वहीं मोहल्ला लोदीपुर निवासी रुकैया खान ने केनरा बैंक सदर शाखा से 5 लाख रुपए का ऋण लेकर जरी जरदोजी की इकाई स्थापित की। उनके उद्यम से भी 5 परिवारों को रोजगार मिला। वर्तमान में उनकी इकाई का कारोबार 9 लाख रुपए से अधिक का हो गया है। दोनों उद्यमियों ने अपनी सफलता का श्रेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा जिला उद्योग केंद्र के अधिकारियों द्वारा मिले सहयोग और प्रोत्साहन को दिया है। उन्होंने कहा कि ODOP योजना ने उन्हें आत्मनिर्भर बनने और दूसरों को रोजगार देने का अवसर प्रदान किया है।
1: यह था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।

अभी आप सुन रहे थे जिले की हलचल। हम आकाशवाणी के यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। आइए आपको खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना दे दें। क्षेत्राधिकारी चकिया चंदौली से प्राप्त जानकारी के अनुसार चमेली देवी पत्नी महादेव साहनी निवासी शहाबगंज थाना शहाबगंज जनपद चंदौली। चमेली देवी दिनांक 8 अप्रैल 2026 को सुबह 10 बजे अपने घर से बिना बताए कहीं चली गई और वापस लौटकर नहीं आई। इनके बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार है। उम्र है 55 वर्ष, कद 4 फीट 9 इंच, लंबा चेहरा है, आंखें गहरी हैं। लापता होने के समय इन्होंने ब्लू कलर की साड़ी और काले रंग का चप्पल पहन रखा था। इनके बारे में यदि किसी भी प्रकार की जानकारी हो तो निकटतम थाना अध्यक्ष या क्षेत्राधिकारी चकिया चंदौली को 9454401619 पर सूचित करें।

0: थाना नौगढ़ तहसील नौगढ़ से प्राप्त जानकारी के अनुसार विरोधी उर्फ सीताराम पुत्र फकीर निवासी गहिला थाना चकरघट्टा जनपद चंदौली। विरोधी दिनांक 12 मई 2026 शाम 5 बजे करीब गांव से बारात करने हेतु सेमरा कुशही थाना नौगढ़ जनपद चंदौली गए थे, लेकिन वापस लौट कर नहीं आए। इनके बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार है। उम्र है 40 वर्ष, रंग गेहुआ है, चेहरा लंबा है, आंख नाक कान औसत है और इनकी लंबाई है 5 फिट 6 इंच। लापता होने के समय इन्होंने हल्के गुलाबी रंग की शर्ट और जीन्स की पैंट पहन रखी थी और सफेद पट्टीदार गमछा भी ले रखा था। इनके बारे में यदि किसी भी प्रकार की जानकारी हो तो निकटतम थाना अध्यक्ष या थाना नौगढ़ को 9454-03188 पर सूचित करें। पुलिस अधीक्षक बलिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार रोशनी साहनी पुत्री सुगानी साहनी निवासी हैं रेवती वार्ड नंबर 4 थाना रेवती बलिया उत्तर प्रदेश। रेवती रोशनी साहनी दिनांक 2 नवंबर 2024 को शाम 6 बजे घर से अपने लापता हो गई थी। इनके बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार है। उम्र है इनकी 15 वर्ष, कद 5 फिट 2 इंच। लापता होने के समय इन्होंने सलवार और सूट पहन रखा था और पैर में इनके चप्पल थे। इनके बारे में यदि किसी भी प्रकार की जानकारी हो तो निकटतम थाना अध्यक्ष या पुलिस अधीक्षक बलिया को 9454-00255 पर सूचित करें। पुलिस अधीक्षक बलिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार कुमारी सोनाली साह पिता का नाम शमशेर साह निवासी ग्राम उपाध्यायपुर पोस्ट सुरेमनपुर थाना बैरैया जिला बलिया। कुमारी सोनाली दिनांक 3 अगस्त 2025 रविवार को सुबह 10 बजे अपने घर से बिना बताए चली गई और वापस लौट कर नहीं आई। इनके बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार है। उम्र है 17 वर्ष, रंग गोरा, कद 5 फिट 1 इंच। लापता होने के समय इन्होंने बैगनी रंग का सूट और सफेद जूता पहन रखा था। इनके बारे में यदि किसी भी प्रकार की जानकारी हो तो निकटतम थाना अध्यक्ष या पुलिस अधीक्षक बलिया को 9454-00255 पर सूचित करें। कोई वे व्यक्तियों के संबंध में सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की कड़ी में सुबह के
1: कार्यक्रम आकाशवाणी लखनऊ की पेशकश है।
2: सामान्य आदाब, उर्दू प्रोग्राम के साथ हाजिर है आपका मेजबान मोहम्मद उमर। उड़ने दो परिंदों को अभी शोक हवा में, उड़ने दो परिंदों को अभी शोक हवा में, फिर लौट के बचपन के जमाने नहीं आते। सामाइन, बचपन जिंदगी का हसीन दौर होता है। ये खेलने सीखने और ख्वाब देखने की उम्र है, लेकिन अफसोस कि आज भी दुनिया के लाखों बच्चे बचपन में खेलने कूदने सीखने और ख्वाब देखने के बजाय मजदूरी करने पर मजबूर हैं। वालिदैन की मजबूरी बचपन पर भारी पड़ती है और बच्चे कहीं न कहीं काम काज में लग जाते हैं। इस हसास मसले पर बेदारी के लिए हर साल 12 जून को यानी आज दुनिया भर में आलमी योम इंसदाद इतफाल मजदूरी मनाया जा रहा है। इस दिन का मकसद बच्चों को मशक्कत और मजदूरी के बोझ से निजात दिलाने और उनके हकूक के तहफ्फुज़ के लिए शऊर बेदार करना है। सामाइन, ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सब इतफाल मजदूरी की इस बुराई को रोकने के लिए हर सतह पर कोशिश करें। खुद तो बेदार हों ही, दूसरों को भी इसके लिए बेदार करें। आइए हम सब मिलकर आज के दिन ये अहद करें कि हर बच्चे की तालीम, तहफ्फुज़ और बेहतर मुस्तकबिल फराहम करने में अपना किरदार अदा करेंगे, क्योंकि बच्चों के हाथों में औजार नहीं किताबें होनी चाहिए और उनकी आँखों में

0: महरूमी नहीं उम्मीद और कामयाबी के ख्वाब होने चाहिए। आइए मिलकर एक ऐसा मुआशरा तश्कील दें जहां हर बच्चा महफूज, खुशहाल और तालीम याफ्ता हो। सामने कराम, बात जब बचपन की हो रही है तो हम आपको बता दें कि ज़िंदगी की किताब के कुछ सफ़े ऐसे होते हैं जिन्हें वक्त कभी पुराना नहीं कर पाता। उन्हीं में से एक है बचपन की यादें। जोश मलियाबादी ने लिखा है, मेरे रोने का जिसमें किस्सा है उम्र का बेहतरीन वो हिस्सा है। बचपन ज़िंदगी का वो खूबसूरत दौर है जब छोटी छोटी बातों में खुशियाँ मिलती थीं। वक्त के साथ हम बड़े हो जाते हैं, जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं, लेकिन बचपन की यादें हमारे दिल के किसी कोने में महफूज रहती हैं। बचपन की यादों पर अब पेश है खुसूसी गुफ्तगु। शरीक गुफ्तगु हैं सीनियर सहाफ़ी जनाब हुसैन अफसर साहब और मोहतरमा नुजहत फातिमा साहिबा। सबसे पहला सवाल दोनों लोगों से ये है कि अगर आप लोगों से कहा जाए कि बचपन को किस तौर पे आप तशरीह देंगे, सबसे पहले हुसैन अफसर साहब आप बताएं।
1: जी, बचपन एक ऐसा दौर है कि जो हमेशा जितनी उम्र बढ़ती जाती है याद आता है, और वही है कि आता है याद मुझको गुजरा हुआ ज़माना।
0: जी
1: बचपन की यादें बहुत होती हैं और बहुत एक ऐसा मिजाज और एक ऐसा दौर होता है कि जब आदमी को कोई टेंशन नहीं होता, ना ना कमाने का टेंशन होता है, ना घर के किराए का, ना बिजली का, ना बम्बे का। वो एक अजीब दौर होता है और उस दौर को बहुत मुख्तसर होता है, लेकिन हम हमेशा याद रखते हैं। और ज़िंदगी के आखिरी लम्हात, बिलखुसूस जब ज़्यादा उम्र हम लोगों की हो जाती है, तो हम बचपन को बहुत याद करते हैं और सोचते हैं कि मिस कर लिया, काश हमारी उम्र पीछे चली जाए और हम उसको फिर रिवाइंड करके देखें कि क्या है। इसी तरह से बचपन में हमने बहुत बहुत दिलचस्पियाँ थीं, बहुत खेल कूद, बहुत लोगों की मदद की।
0: आप बताएं मोहतरमा, किस तरीके से, क्योंकि आप टीचिंग शोबे से भी जुड़ी हुई हैं, तो बचपन को आप किस तरीके से डिफ़ाइन करेंगी?
2: बहुत शुक्रिया उमर साहब। मैं इस पे पहले तो कुछ लाइनें मैंने लिखी हैं, मैं वो पेश करना चाहूँगी।
0: इरशाद,
2: काश वो फिर मासूम सा बचपन का ज़माना आए।
0: वाह।
2: काश वो फिर मासूम सा बचपन का ज़माना आए, फिर यूं ही हर बात पे हंसने का बहाना आए।
0: वाह वाह, बहुत उम्दा।
2: बाबा लौटे मेरे भी खिलौना लेकर। बाबा लौटे भी मेरे खिलौना लेकर, फिर मेरे हाथ में वो बचपन का खजाना आए।
0: वाह वाह, बहुत उम्दा।
2: काश मेरी माँ जैसी दुनिया की भी फितरत हो जाए। काश मेरी माँ जैसी दुनिया की भी फितरत हो जाए, जब मैं रूठूं तो बिन बात के उनको भी मनाना आ जाए। बचपन ऐसा ही होता है, हम सब अपने बचपन में ऐसे ही जिए हैं।
0: अगला सवाल हमारा ये है कि बचपन तो सीखने का दौर होता है, सीखते हैं, खेलते हैं, लेकिन क्या हम आपकी ज़िंदगी में, दोनों हमारे जो मेहमान हैं, दोनों की ज़िंदगी में क्या बचपन से क्या सीख मिली आप दोनों लोगों को? पहले हुसैन अफसर साहब आप बताएं।
1: हमें सीख ये मिली कि जो बुज़ुर्गों ने सिखाने की कोशिश की, वो कुछ को हमने माना, कुछ को नहीं माना।
0: अच्छा।
1: क्योंकि बचपन में आदमी, बच्चा जो होता है वो पूरी तरह से सरेंडर नहीं करता, यानी उसकी ज़िद और उसकी अना जो है वो अपने साथ रहेगी। तो हमने तो ये सीखा कि जो बुज़ुर्ग कहते थे उसको हम कोशिश करते थे कि पूरा करें, और हमने कम अज़ कम वो उस कोशिश में हम किसी हद तक कामयाब हुए। हमें अपने करियर में भी ये कोशिश की कि हमें जो शौक़ हैगा वही रहे, ये बचपन से हमारे दिमाग में था। यानी आज भी हम सहाफ़त के मैदान में हैं, तो ये बचपने से, हम जब 10-12 साल के थे जब से, ये हमको शौक़ था और वही शौक़ हमारा जो है वो मशगला जो है वही हमारा पेशा बना। तो ये सीख हमें बचपन से मिली।
0: मैम, आपने क्या कोई तजुर्बा ऐसा रहा हो जो बचपन में हुआ हो, फिर उसको आप अभी तक फॉलो कर रही हो, बड़ी सीख उससे मिली हो?
2: हमारे अब्बा का एक बचपन में उन्होंने हमको दो चीज़ें बताई। कहा था कि अगर तुम्हें बेटा ज़िंदगी में कामयाब होना है तो इन दो चीज़ों को हमेशा ताउम्र अपने साथ रखना। तो वो ये थी कि पहले उन्होंने हमसे ये कहा था कि कभी झूठ मत बोलो
0: जी,
2: और दूसरा एक उन्होंने हमसे कहा था कि कभी किसी का अपने से बुरा मत चाहो, ना होने दो। तो ज़िंदगी के हर कदम पर तुम्हें कभी भी पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमेशा आगे बढ़ते जाओगे और अल्लाह किस तरह से तुमको मदद पहुंचाएगा ये तुम सोच भी नहीं सकोगे। और आज हम जिस मुकाम पर हैं, और हमें लगता है मेरे अब्बा की वो सीख मैंने हमेशा उसको संभाल कर रखा और आज भी हम उस पर चलने का या अमल करने की कोशिश करते हैं। और ज़िंदगी के बहुत सारे ऐसे मरहले आते हैं जहाँ लगता है कि अब ये काम हमारे लिए शायद नामुमकिन है, लेकिन उस दुआओं, उस बरकत की वजह से हमारे काम बहुत आसान हो जाते हैं।
0: काफ़ी मशगूल और मसरूफ़ ज़िंदगी है आप लोगों की। हुसैन अफसर साहब काफ़ी मशरूफ़ सहाफ़ी हैं, आप टीचिंग के शोबे में हैं, तो बहुत सी यादें होंगी बचपन की, लेकिन कोई एक ऐसी याद जो आप लोगों को आज भी वो याद आती हो? मैम आप बताएं, कोई आपके बचपन की याद जो अभी तक आपको याद हो?
2: बचपन की याद कि मेरी जब शुरुआत हुई तो एक मदरसे से हुई, तो मैंने मदरसे में पढ़ा, उसके बाद मुझे मौका मिला कि मेरा एक स्कूल में नाम लिखा, और वो स्कूल था करामत हुसैन। उस वक्त उस करामत का ऐसा वो था कि हर एक को मतलब बड़ा जज्बा था, बड़ा मुझे शौक था कि मुझे करामत देखना है।
0: रुतबा था उसका,
2: और रुतबा एक दर्जा उसका वहाँ, एक वो था कि मतलब वहाँ पर एडमिशन्स नहीं होते हैं। लेकिन खैर अल्हम्दुलिल्लाह एक हमारी मम्मी की दोस्त थी, वो वहाँ पढ़ाती थी, उन्होंने ऐसी एडमिशन करा दिया। जब हम वहाँ पहली बार पहुँचे तो मुझे बस ये था कि मुझे करामत को देखना है कि कैसा है वो। जब मैं वहाँ पहुँची तो वहाँ पर क्लास चल रही थी, मैं जब वहाँ पर ऐसे ही झांक रही थी तो वहाँ एक मैम बैठी हुई थी। तो मैम ने कहा कौन हो तुम और ऐसे क्यों झांक रही हो? तो मैम ने कहा मैम मेरा एडमिशन यहाँ पर हुआ है और हम सिर्फ देखने आए हैं। तो उन्होंने कहा कहाँ से पढ़ कर आई हो? तो बताया मैंने कि मैम मदरसे से पढ़ के आई हूँ। तो कहने की बैठो यहाँ पर, उर्दू तो आती होगी। मैंने कहा बिल्कुल मैम आती है उर्दू, मदरसे से पढ़ के आए तो उर्दू तो आती ही होगी। तो कहने की ठीक है। एक बच्चे से उन्होंने कहा कि दो पेज निकालो और एक पेंसिल दो और कहा कि टेस्ट दो। अब मुझे बहुत डर एकदम खौफ लगा कि मतलब मैं पहली बार आई हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है कि क्या स्कूल में हो रहा, मदरसे का तो अलग तरीका है यहाँ। तो मैम ने कहा नहीं उर्दू पढ़ के आई हो, टेस्ट दो। मैंने कहा ठीक है मैम मैं दे रही हूँ। तो वहाँ पर 52 बच्चे उस वक्त उस क्लास में थे, 5th क्लास में, और 20 नंबर का वो मैम ने टेस्ट लिया था, मुझे 19 नंबर मिले थे, बाकी कोई बच्चा 12 नंबर के आगे नहीं पढ़ा था। मैम ने मुझे वहाँ बुलाया सबके सामने और खड़ा कहा, कहा ये आज से इस क्लास की मॉनिटर है। वो मेरा पहला दिन था स्कूल का, वो मेरे लिए इतनी खूबसूरत याद है। और फिर मेरी पूरी स्कूलिंग वहीं से हुई, उसके बाद मैंने एमए पीएचडी एलयू से करके वापस आज मैं वहीं पढ़ा रही हूँ। तो ये मेरे लिए एक ऐसा अचीवमेंट है कि जिसको मैं बयान नहीं कर सकती।
0: बचपना हर कोई जीता है, हम लोग भी जिए, आज की नस्ल के भी लोग जी रहे हैं, और जो भी दुनिया में आएगा वो बचपन गुजारेगा, ये वक्फा जो है। क्या फ़र्क आप देख रहे हैं आप अपने बचपन में और जो आज का बचपन है, उसमें आप दोनों लोग क्या फ़र्क दे रहे हैं? क्योंकि आप लोग बहुत समाज के बहुत अहम गोशे से आप लोगों की राकबत है, तो बताएं किस तरीके से बदलाव आप लोग देख रहे हैं अपने बचपन में, वो पुराने ज़माने के बचपन में और आज के बचपन में?
1: ज़मीन आसमान का फ़र्क आएगा। पहले का बचपना जो था वो एक बंधा हुआ था, एक डिसिप्लिन वाला था। अब भी डिसिप्लिन तो है, लेकिन बच्चों की जो अपना वो उसका उनका सोचने समझने का अंदाज़ है वो बहुत जुदागाना है, वो चुकाएगा। और उसकी वजह एक ये है कि हमने बचपने में कुछ नहीं देखा, हमने बड़े होके देखा टीवी, बड़े होके हमने देखा फ़ोन, और उसके बाद देखा मोबाइल, उसके बाद देखा इंटरनेट। लेकिन अब जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो मोबाइल लेकर ही पैदा हो रहे हैं, और वो इंटरनेट को फ़ौरन ही वो फॉलो करने लगते हैं, और वो चीज़ें इस तरह की टेलीविज़न पर देखते हैं कि जो पॉजिटिव भी होती हैं, लेकिन वो चीज़ें हमने कभी नहीं देखी, यानी एक उम्र आने पर देखी। तो ज़मीन आसमान का फ़र्क आएगा। वो चीज़ें इतनी आउटिंग नहीं होती थी, बाहर बहुत जाने के लिए नहीं कहा जाता था कि ना जाओ। तो इस तरह से अब बच्चे जो हैं वो बहुत इंडिपेंडेंट हैं, और अब बच्चों का जो मुस्तकबिल है वो हम लोगों से ज़्यादा ताबनाक है।
0: मैम आप टीचर हैं, सर ने जो बताया उन बातों से आप पूरी तरीके से मुत्तफिक होंगी, क्या इनसे बचने की क्या आप हिदायत देंगी या तजावीज़ पेश करेंगी?
2: बिल्कुल हुसैन साहब ने जो कहा बिल्कुल सही है कि आजकल जो बच्चे हैं वो मोबाइल के ज़रिए सारी चीज़ें जान रहे हैं। हमारे दौर में, हम लोगों के बचपने में ये था कि हम लोग भाई लोगों के बीच रहते थे, उनसे वो चीज़ें, अपने बड़ों से चीज़ें, वो सारी चीज़ें हासिल करते थे। लेकिन आज सोशल मीडिया या नेटवर्किंग का जो दौर है, बच्चे उनसे, और उसमें पॉजिटिव भी चीज़ें हैं, सही भी हैं और गलत भी हैं। लेकिन क्या कहा गया है कि गलत बच्चे जल्दी अपना लेते हैं और सही चीज़ों को थोड़ा सा चीज़ें उनकी देर में समझ में आती। लेकिन ये है कि ये माँ बाप का भी फ़र्ज है कि थोड़ा सा अपने बच्चों पर तवज्जो दें, उनको वक्त दें। आजकल जैसे पेरेंट्स कहते हैं कि वक्त नहीं है, तो वक्त अगर हम बच्चों को नहीं देंगे, उनसे बात नहीं करेंगे, उनको नहीं जानेंगे, उनको नहीं समझेंगे, तो हम उनमें, हमारे उनमें इतना गैप आ जाएगा कि फिर ना वो मेरी बात सुनेंगे ना हम उनकी ही समझ पाएंगे। उनको कहीं तो अपने आप को बिजी रखना है, तो वो उसके लिए मोबाइल उनके पास है। तो पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है, माँ बाप की भी, कि अपने बच्चों को वक्त दें, अपने बच्चों से बातचीत करें, उनकी अच्छी बुरी बातें सुने, उनको सही और गलत में फ़र्क बताएं।
0: एक बात ये रह गई कि जो बचपन है वो हम लोग का जो बचपन था, जो गुजरा हुआ बचपन है, उस पर पर्व त्यौहार ननिहाल ददिहाल का बड़ा सारी चीज़ों का वो होता था, तो वो किस तरीके का बदलाव हुआ है और क्या किस तरीके से आप लोग आज

0: भी उनसे जुड़े हुए हैं।
1: बिल्कुल सही उमेर साहब की, जब हमारा बचपन था तो जब ईद होती थी
0: जी
1: तो सुबह से बस एक शोरगुल होता था कि बस हमको आप नहला दीजिए, हमको तैयार कर दीजिए, हमें जाना है। हमारे मोहल्ले में हमारे ही साथ की बहुत सारी लड़कियां थीं, सब इकट्ठा हो के, और घर के थोड़े से ही आगे हिस्से पर एक मैदान था, जलीलिया मदरसा था, वहां पर एक बहुत बड़ा मेला लगता था। उस मेले में जाना, वहां झूला झूलना, वहां की चीजें लेना, और लोगों के घर सब इकट्ठा होकर जाना, और ये सोच कर जाना कि बस यहाँ से ईदी मिलनी है, ईदी लेकर फिर
0: हाँ,
1: उसको
0: उसका
1: मेले में।
0: बड़ा
1: लेकिन
0: क्रेज
1: अब
0: है।
1: क्रेज मतलब
0: हाँ
1: ऐसा रहता था कि बस, और जहां नहीं मिलती थी थोड़ा सा
0: हाँ
1: नाराजगी भी होती थी
0: जी
1: आपस में कि
0: जी
1: लो इन्होंने तो ईदी हमको दी ही नहीं। और आज जो बच्चे हमारे हैं वो ये है कि हम उनको मेले में या किसी ऐसी जगह नहीं भेज सकते हैं क्योंकि माहौल उस तरह का रहा ही नहीं
0: नहीं,
1: है। जिस
0: मेले भी
1: तरह
0: नहीं रहे हैं।
1: मेले भी नहीं रहे, और मेले अगर हैं तो इतनी दूर दूर हैं कि हम अपने बच्चे को वहां पर अकेले
0: नहीं रहे।
1: नहीं भेज सकते हैं। तो बहुत बदलाव है कि बच्चे वो चीजों से महरूम हैं। हम लोगों ने जो देख लिया, हम लोगों ने जो खेल खेल लिए हैं कि बाहर खेल ले हैं, ना कोई डर ना कोई खौफ, लेकिन अब हम अपने बच्चे को इस तरह से बाहर भेज नहीं सकते, नीचे नहीं। हम लोग अब जहां रहते हैं भाई अपार्टमेंट है, अपार्टमेंट में आप नीचे इस तरह से छोड़ नहीं सकते, खुला घर नहीं छोड़ सकते। हम लोग जब रहते थे तो मोहल्ले थे, मोहल्ले में एक दूसरे का दरवाजा खुला हुआ है, कोई हमारे घर आ रहा, हम किसी के घर जा रहे हैं, किसी के यहाँ कुछ पक रहा है तो वो यहाँ आ रहा है। लेकिन अब वो धीरे धीरे चीजें सब खत्म होती
0: कितना
1: चली जा रही हैं। लोग इतना अपनी लाइफ
0: मिस करती हैं उसे।
1: में बहुत मिस करते हैं। बस हम अपने बच्चों को ये चीजें जरूर शेयर करते हैं, बताते हैं कि हम लोगों का बचपन बेटा ऐसे गुजरा है।
0: हुसैन अफसर साहब, आप बताएं।
2: देखिए, असल में पहले ईदगाहें होती थीं, और मुंशी प्रेमचंद की कहानी आपने पढ़ी होगी ईदगाह, तो तकरीबन हर जिले में और हर तहसील में वो उसी तरह की ईदगाहें होती थी। जब नमाज पढ़ के
0: हैं ईदगाहें तो आज भी हैं।
2: नहीं
0: बिल्कुल
2: है, लेकिन वो मेले नहीं है, वो मेले
0: जी
2: ठेले कम हो चुके हैं क्योंकि बहुत मेटेरियलिस्टिक हो चुकी है कि दुनिया। तो अब वो वहाँ जाते थे हम लोग और वहाँ से चीज़ें खरीदते थे, और उसके बाद में सेवैयाँ खाते थे, पास पड़ोस में जाते थे। ईदी का, जैसा आपने फरमाया, ईदी का बहुत क्रेज़ था, और ईदी के लिए जो बच्चे कभी नहीं दिखाई दिए महल्ले के पड़ोस के, वो भी आ जाते थे और उनको भी
0: बिल्कुल,
2: खुश किया जाता, तो एक माहौल अच्छा था।
0: बचपन में ननिहाल ददिहाल का भी बड़ा एक क्रेज
2: बहुत
0: होता
2: रोल
0: था,
2: रहा है,
0: तो किस तरीके से आप लोग उस चीज को अभी भी याद कर रहे हैं।
2: खास करके बच्चे जो हैं वो ननिहाल को बहुत पसंद
0: जी
2: करते थे, क्योंकि माँ का इन्फ्लुएंस बच्चों पर ज़्यादा होता है,
0: हाँ जी
2: तो वो अपने भाइयों और अपनी
0: हाँ
2: माँ की तरह वो बच्चों को
0: हाँ
2: राग़िब किया जाता है। तो ननिहाल में खास करके इन्हें, मैं अपने भी ननिहाल ही को पसंद करता था, तो बच्चे ननिहाल में ज़्यादा खुश होते थे, और क्योंकि उसकी उनकी माँ भी खुश होती थी और बच्चे
0: बचपन का
2: खुद भी
0: मजा
2: खुश होते
0: ननिहाल
2: थे।
0: में ज्यादा
2: हाँ, ननिहाल में
0: ज्यादा
2: ज़्यादा है, और
0: आता
2: ददियाल में भी लोग जाते थे, सब
0: जी
2: कुछ था। लेकिन वो जो असली बात थी वो पास पड़ोस की बहुत थी, वो महल्ले की थी। और जैसे मैंने कहा कि ईदगाह जाना और सब चीज़ों को खरीदना और खिलौनों को खरीदना और वहाँ चीज़ों को खाना और
0: जी
2: वहाँ देखना, वो सब चीज़ें उनका हो गई हैं। अब बिल्कुल दुनिया दूसरी तरह की हो गई है।
0: सही फरमाया आपने कि त्योहार और सब चीजों का बचपन में अलग ही मजा होता है। एक सवाल जो रहा जा रहा है वो हुसैन अफसर साहब आपसे है, क्योंकि आप सहाफ़ी भी हैं और उर्दू अदब से भी थोड़ी वाकफियत है। ये बताइए कि जो बचपन है उसको उर्दू अदब में किस तरीके से कितना जगह मिली हुई है और किन
2: बहुत किया
0: किन।
2: गया है, इस्माइल मेरिटी ने तो पूरा लिटरेचर इस उर्दू पर
0: जी
2: उनका था, उनका सारा काम ज़्यादातर तो उर्दू पर था, और उर्दू की जो नज़में थीं वो बच्चों को पढ़ाई जाती थीं और सिखाई जाती थीं और रटाई जाती थीं, और जिसकी वजह से वो उनमें एक एक अदब के लिए एक मोहब्बत पैदा होती थी और उनका स्टैंडर्ड बुलंद होता था। आप चूँकि उस लाइन से हैं तो आप बताइए कि आप बच्चे अब किस तरह से अब इंजॉय करते हैं उर्दू।
1: बच्चे हम बड़े बच्चों को पढ़ाते, छोटे बच्चों से साफ ही नहीं पड़ता है। तो बड़े बच्चे तो क्या भाई, हम अपने बच्चों को ये है कि छोटी छोटी जब सुबह उठाते हैं तो कुछ गुनगुना के ही उठाते हैं, तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। और जब हमारा वक्त था तो हमारी अम्मी हमको जब सुलाने से पहले कुछ दुआएं थी जो कहती थी पढ़ के सोना है, तो वो मतलब थोड़ा सा तरन्नुम में सुनाए रहती थी, हम लोग पढ़ते थे वही, हम थोड़ा सा अपने बच्चों के साथ भी करते। लेकिन धीरे धीरे वो सारी चीज़ें अब खत्म होती चली जा रही हैं। वक्त ही नहीं है लोगों के पास कि बच्चों से कुछ बैठ के बात करें या बच्चों को कुछ अपने कल्चर के बारे में, अपनी तहजीब के बारे में कुछ बात हो। वही है कि बच्चे अब पैदा होते हैं, थोड़े दिन
2: नहीं,
1: बाद ये होता है कि
2: वक्त तो है भी बहुत। देखिए, वक्त ज़्यादातर जो वालिदैन, जिसमें हम भी शामिल हो सकते हैं, वो खा जाता है सोशल मीडिया का,
1: सोशल मीडिया बिल्कुल।
2: तो अब बचपने में ये होता था कि लोरियां दी जाती, लोरियों से सुलाया जाता था बच्चों को, और लोरियों की वजह से

0: उनको अल्फाज और लिटरेचर का एक एक रागिब होते थे
1: बिल्कुल
0: वो,
1: उनके जहनों में वो चीज अल्फाज
0: अब
1: जैसे
0: वो नहीं है।
1: गूंजते थे।
0: अब या खाना खिलाना होता है बच्चों को, अब के बच्चों को, तो अंग्रेजी गाना या वो जो कार्टून्स वाले आते हैं वो किए जाते
1: बिल्कुल
0: हैं और
1: सही।
0: उनको भुलावे में डाल दिया जाता है कि तुम ये, और चमचों से माएँ खिला रही हैंगी, तो मुश्किल हो जाएगा। और उसकी वजह जो सबसे ज़्यादा है वो है सोशल मीडिया,
1: बिल्कुल
0: और सोशल मीडिया की वजह से बहुत बुराइयाँ आई हैं, जहाँ अच्छाइयाँ हैं वहाँ बुराइयाँ भी बहुत हैं, ख़ास करके बचपने में जो आदत पड़ रही है सोशल मीडिया की, ये बहुत नुकसानदेह है।
1: बिल्कुल।
2: तो बहुत अच्छी मालूमात आप लोगों से हासिल हुई और बड़ा मज़ा भी आया, और जो हमारी भी कई बचपन की यादें थीं वो ताज़ा हुई, तो बहुत
0: तो
2: अच्छा
0: कुछ
2: लगा।
0: आप
2: आप
0: भी अपनी
2: लोगों
0: भी यादें भी सुना दीजिए हम लोगों को।
2: यादें ये हैं कि उस ज़माने में तो हम लोगों का, जैसे अभी बात चली कि ननिहाल और ददियाल की, तो हम लोगों का ज़्यादा क्रेज़ ननिहाल जाने का ही होता था। तो जो गर्मी की छुट्टियां हैं, आजकल बचपन ज़्यादा याद आता है, क्योंकि जब जून आता है तो जून में हमें सबसे ज़्यादा बचपन
0: गर्मी की
2: याद
0: छुट्टियों
2: आता है।
0: में
2: गर्मियों की छुट्टी होती थी और ये इंतज़ार रहता था कि कब स्कूल की छुट्टी हो और हम लोग अपने ननिहाल जाएं। तो वो यादें जो हैं वो ननिहाल की, वो गाँव, वहाँ के जो आम के बाग हैं और टीन हुआ करता था उस पर भड़ भड़ आम गिरते थे, तो वो आवाज़ें आज भी जब जून का मौसम होता है तो कहीं ना कहीं वो सब चीज़ें आज भी याद आती हैं। वो बाग में जाना, आम तोड़ना, वो एक बांस में लंबी एक वो बंधी होती थी, उस पर हम लोग आम को हिलाते थे, जो पक्का आम होता था वो उसमें,
0: वो तो अब भी आप
2: ये
0: कर सकते
2: अभी
0: हैं।
2: भी कर सकते हैं, लेकिन अब मौका कहाँ है, अब बचपन जो चला गया वो आ नहीं सकता, और अगर जाते भी तो हैं लेकिन अब वो मज़ा नहीं आता है। तो सामिन, ये कुछ हमारी बचपन की यादें थीं, और बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बातचीत करके। आप लोगों का प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी बातें भी आप लोगों ने बताई, जिनसे मालूमात भी हुई और बचपन की यादें भी हम लोगों की ताज़ा हुई। तो सामाइन, बचपन की दिलचस्प यादों पर आपने ये खसूसी गुफ्तगू समाप्त फरमाई। शरीके गुफ्तगू थे सीनियर सहाफ़ी जनाब हुसैन अफसर साहब और डॉक्टर नुजहत साहिबा। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा हमें अपनी राय से मुत्तला ज़रूर करें। आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी है kklsurdu@gmail.com। आप व्हाट्सएप के ज़रिए भी हमें अपने तासुरात भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7991778157। तो सामाइन, इसी के साथ आज का ये उर्दू प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम पज़ीर होता है। अपने मेज़बान मोहम्मद उमेर को दे इजाज़त, आदाब।

0: अभी आपने सुना उर्दू कार्यक्रम, ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। सुनेंगे लोक संगीत का कार्यक्रम, पहले सुन लेते हैं ये संदेश।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए
3: 0542227658।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें
4: 0542227658।
5: स्वच्छ भारत का इरादा, इरादा कर लिया हमने देश से अपने वादा।
4: हम सभी का एक ही नारा, साफ सुथरा हो देश हमारा, सफाई अपनाएं, बीमारी भगाएं।
0: लोक संगीत के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं डॉक्टर माधवी सिंह का गाया सबसे पहले ये देवी गीत।

0: गंगा गीत के साथ ही समाप्त होता है लोक संगीत का कार्यक्रम। हमारी आज की कलाकार थी डॉक्टर माधवी सिंह। मीडियम वेव के मीटर पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र को। सुनेंगे झंकार कार्यक्रम पहले इन कुछ संदेशों के बाद।
1: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें नया जोश है। देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

जाए अगर तुम्हारा सर, तो मान लेना तुम्हारे भीतर ही है मेरा होना। कभी मेरी राह पर चलते हुए चोट खाओ, रुक जाओ, फिर भी चलो, तो मान लेना मैं हूं, मैं था, मैं रहूंगा। आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक शुक्रवार गांधी चर्चा कार्यक्रम में सुबह 6:25 पर सुनिए बापू की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का धारावाहिक पाठ।

0: फिर एक बार विविध भारती वाराणसी अब नए अंदाज में FM 100.6 पर सुबह 10 से 11 और शाम 5 से 7 बजे तक स्थानीय कार्यक्रमों के साथ यानी काशी कनेक्ट, बनारस बीट्स, बनारस डायरी और वाराणसी वाइब्स, साथ ही और भी बहुत कुछ जिसमें शामिल होती हैं आपकी बातें। और साथ ही सुनते रहिए आकाशवाणी वाराणसी मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़, डीटीएच, डीआरएम, न्यूज ऑन एआईआर ऐप और वेव्स ओटीटी पर, कहीं भी कभी भी आकाशवाणी वाराणसी, जहां हैं आप वहीं हमारा साथ।
1: जानकार कार्यक्रम में आइए सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं आशिक हूँ बहारों का इस फिल्म से ये गीत। किशोर कुमार की आवाज है आनंद बख्शी के बोल और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

छूटे या माथा।

अभी आप सुन रहे थे दाग फिल्म से ये गीत, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। साहिर के बोल थे और संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। आइए सुनते अगला गीत इस कार्यक्रम में दर्पण फिल्म से। लता मंगेशकर की आवाज है आनंद बख्शी के बोल और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

दस्तक फिल्म से अभी आपने सुना इस गीत को लता मंगेशकर की आवाज में। मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे और संगीत था मदन मोहन का। कार्यक्रम में अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म धूल का फूल से। आशा भोसले की आवाज है, साथ में है महेंद्र कपूर, साहिर लुधियानवी के बोल और संगीत एन दत्ता का।

0: एक बार मुस्कुरा दो, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना मुकेश और आशा भोसले की आवाज़ में। एस एच बिहारी के बोल थे और संगीत था ओपी नैयर का। आप सुन रहे हैं जानकार कार्यक्रम। और भी गीत हम सुनेंगे इस छोटे से संदेश के बाद।
1: प्रत्येक रविवार को दिन में 1:30 पर प्रसारित होने वाला कार्यक्रम लोक रंग अब व्हाट्सएप पर आधारित होगा, यानी आप कार्यक्रम के आरंभ में बताए हुए कलाकारों के पसंदीदा लोक गीत व्हाट्सएप के जरिए सुन सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर वही है जो फरमाइशी गीत एक्सप्रेस का है। करना सिर्फ ये है कि मैसेज आपको लोक रंग कार्यक्रम में रविवार को दिन में 1:30 से 2 बजे के बीच ही करना है, यानी कार्यक्रम के प्रसारण के दौरान, और बताए हुए कलाकारों से ही अपनी फरमाइशें हमें भेजें। व्हाट्सएप नंबर हमारा है 7905519981, यानी 7905519981। तो अब प्रत्येक रविवार को दिन में 1:30 पर सुनिए फरमाइशी लोक रंग कार्यक्रम व्हाट्सएप पर आधारित, और बने रहिए आकाशवाणी वाराणसी के साथ, हर पल हर घड़ी आपके साथ।

हम सभी का एक ही नारा, साफ सुथरा हो देश हमारा, सफाई अपनाएं, बीमारी भगाएं, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। हम सब ने ये ठाना है, भारत को स्वच्छ बनाना है। स्वच्छता का दीप जलाएंगे, चारों ओर उजियारा फैलाएंगे। सभी रोगों की एक दवाई, घर में रखो साफ सफाई।

झनकार कार्यक्रम में आइए सुनते हैं अगला गीत फिल्म फर्ज से, मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में आनंद बख्शी के बोल और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म कन्हैया से आवाज है लता मंगेशकर की। इस गीत को लिखा है शैलेंद्र ने और संगीत से सजाया है शंकर जयकिशन ने।

अभी आपने सुना दिल ही तो है फिल्म से ये गीत आशा भोसले की आवाज में। साहिर के बोल थे और संगीत था रोशन का। कार्यक्रम में आखिरी गीत हम आपको सुनवाते हैं फिल्म प्रेम पुजारी से, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। बोल है नीरज के और संगीत है एस डी बर्मन का।

मीडियम वेव 241.56 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़। मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR DTH DRM 1233 किलोहर्ट्ज़। वेव्स OTT पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र को। प्रस्तुत है आपके व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस।

और आज एक कार्यक्रम लेकर हाजिर है आपका रेडियो दोस्त अनुपम। आप सभी को हमारा नमस्कार। तो दोस्तों, इस कार्यक्रम का फॉर्मेट तो आपको पता है। जी हाँ, आप हमें व्हाट्सएप संदेश भेजते हैं, वो पूरी तरह से लाइव होता है और उसको हम शामिल करते हैं इस प्रोग्राम में। और व्हाट्सएप संदेश भेजने के लिए हमारा नंबर नोट कीजिए। हमारा नंबर है 7905519981, यानी कि 7905519981। इस नंबर पर आपको संदेश भेजना है। और संदेश भेजने से पहले एक आपसे विनम्र निवेदन, और हम यदि कह रहे हैं विनम्र निवेदन, तो उस निवेदन को मुझे लगता है कि आप जरूर विनम्रता से स्वीकार करेंगे। जो श्रोता एक बार संदेश भेज दे, अगला संदेश अगले कार्यक्रम में भेजेंगे, हमें लगता है कि आप हमारी ये ख्वाहिश जरूर पूरी करेंगे। तो कार्यक्रम का आगाज हम करने जा रहे हैं फिल्म सफर के इस गीत के साथ, और सफर का ये गीत होगा मुकेश की आवाज में। तो आप संदेश भेजना शुरू कीजिए। हम शुरू कर रहे हैं प्रोग्राम जिसका नाम है फरमाइश गीत एक्सप्रेस। तो फिर एक साथ लगातार संदेशों की झड़ी लगनी शुरू हो गई है, और हम भी कोशिश करते हैं।

जाएंगी, सबके नाम शामिल हो, तो जरा सा सब्र कीजिएगा और लगातार संदेश तो भेजिएगा लेकिन थोड़ा रुक रुक के संदेश भेजिए ताकि नए श्रोता भी इसमें जुड़ सके। तो ये संदेश पहला हम शामिल कर रहे हैं जमाने जिला गाजीपुर का भेजने वाले श्रोता सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल, स्वाति जायसवाल, गमरिया जमशेदपुर से विपिन जायसवाल, स्वाति जायसवाल, देव कुमार जायसवाल, आर्य कुमार जायसवाल, यहीं से एसपी जायसवाल, डिंपल जायसवाल, आशुतोष जायसवाल, अभिनव जायसवाल। संदेशों की

संदेशों की झड़ी सी लग जाती है तो थोड़ा सा कभी-कभी होता है, हैट्टिक हो जाता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि सभी को शामिल किया जाए। मोनी बाबा धाम चोचकपुर बाजार जिला गाजीपुर से राम सकल चौधरी, ये संदेश भेजा है। मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माही मलिक। कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंगेल, मोरस जंगेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंगेल और नंदिनी जंगेल। अजय सिन्हा, कैलाश सिन्हा, भोले सिन्हा, सचिन, उनके मम्मी पापा, गांव नारी, पचीदेवरा, गाजीपुर से। बरेडी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री डोमने, वैश्वी धोमने। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप। कालका से सुभचंद बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज। बुराला खुर्द महाराष्ट्र से आदिनाथ पाटिल बाघ, अमोल बाघ, गुड़िया कृष्णाली और अशोक देशमुख। तो संदेश लगातार ऊपर भी बढ़ इतना तेजी से संदेश आ रहा है कि कंप्यूटर स्क्रीन भी थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि हैंग हो रहा है, लेकिन चलिए। ये संदेश भेजा है दिनाना रोहता से प्रभात कुमार, पुरुषोत्तम कुमार, सौरभ कुमार, अर्पित कुमार, हर्षित कुमार और वैभव कुमार। गभरिया जमशेदपुर से रोहन जायसवाल, आर्य जायसवाल, बबरी बाजार, चंदौली से विजय जायसवाल, सरोज जायसवाल, रामनगर कदमा, जमशेदपुर से मुराहो जायसवाल, देवंती जायसवाल, चकिया बाजार, चंदौली से सुंदर जायसवाल, सुमन जायसवाल। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्टो, रोजी डिकेस्टो, पल डिकेस्टो, विलिस डिकेस्टो। सोनवर्षा खानपुर चुनार मिर्जापुर से अनीस राजभर, मनीष राजभर, आशीष राजभर, आकर्ष राजभर। दतरंगी छत्तीसगढ़ से हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा। राजधानी रायपुर से नीलू मेघ, नीलम, डॉक्टर वंदना कुमार, बिट्टू कुमार। मोहसिन अंसारी, सरताज अंसारी, शाहिद अंसारी, सद्दाम अंसारी, मुश्ताक अंसारी, कोटवा बनारस से। ईदगाह रामनगर से सोनू अंसारी, लंबे बाबू। सावतपुर छत्तीसगढ़ से ऋषि सेन, रितेश सेन, हर्ष कुमार सेन। सहसपुर लोहारा दानिया खुर्द जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़ से गुनीराम राजपूत, संतोषी, हेमप्रभा, पुष्पराज, सूरज राजपूत। बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन, मेघा मस्किन। चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना। लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू। जिला किशनगंज बिहार से रविन्द्र मोहनदास, आशा देवी, राघव कुमार, भानुप्रिया, अनुराग मोहन। बजरडिया बनारस मोहल्ला धरहरा से अनुल हक अंसारी, मल्लू अंसारी, इकबाल अंसारी, सलीम आजाद अंसारी, बद्रुद्दीन अंसारी। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर, आरती गौरी और ओम प्रकाश, ओम कुमार सुरलकर। रेशमी नगरी मुबारकपुर आजमगढ़ से जावेद अख्तर राय, शमशुल कुमार राय, बेगम रुखसार, अकीबा राहन, तुबा आफरीन। अपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के बाकी सदस्य। अस्तुपुरा जिला मऊ से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी, बहादुरगंज गाजीपुर से आजाद अली अनवर, रिजवाना परवीन, अब्दुल आजाद, अब्दुल्ला आजाद। जौनपुर से ऋषु मौर्य का संदेश हमें अच्छा इसलिए लग रहा है कि इन्होंने सिर्फ एक नाम लिखा है, थोड़े नाम की संख्या आप लोगों की जो लिस्ट होती है उसको कम करें तो और बेहतर होगा। ग्राम पंचायत बठेना जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा। नाज मंजिल महसूल सीतामढ़ी से अक्रम हुसैन प्रिंस, डाक बाबू, बेगम इशरत अक्रम, वसीम अक्रम, रूबीना वसीम, आरिज वसीम, नदीम अक्रम, शमीम अक्रम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा। कलेर बिहार से मोहम्मद आसिफ खान, निकहत परवीन। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहुजा। जवाहरनगर दुर्ग से आरसी कामड़े, करुणा मीना असनी और विपुल कामड़े। आलिया खान, नाजिया खान, सादिया खान, कस्बा कलान, शाहजहांपुर से। रजानगर वाराणसी से नफीस अहमद अंसारी, शमीम अहमद अंसारी, अनीश अहमद अंसारी, अजीज अहमद अंसारी, मोहम्मद रजा, सुनील रस्तोगी, रेहान अहमद अंसारी, शमा अंसारी, रेशमा अंसारी, प्यारी बेटी आरजू। कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरगीत गुरु, शब्द सिंह राहुल। पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किशु तासु, अर्णव आनंद, सत्यमानंद। बोहरगाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत, गुड्डी भगत। डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्ल्यू

अंसारी, डॉक्टर सोनम अदिबा और रसीम अंसारी, सारिमपुर बक्सर से राजेश जी अंसारी, आत्मा खातून अंसारी, आफ्ताब अंसारी, महताब अंसारी, मेराज अंसारी, कल्लू और मल्लू अंसारी, बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, असलम अंसारी, अक्रम अंसारी और अल्ताफ अंसारी, गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभियानंद आर्य, परमानंद आर्य, राजा बाजार भी आरा से सुरेश केसरी, पूनम केसरी, प्रतीक केसरी, गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता, अजीत कसाना माया देवी, रितिका और आदित्य कसाना ग्रामो पोस्ट, लदावली जिला मुरादाबाद से, कोरासी भैया भैसा रायपुर छत्तीसगढ़ से पवन कुमार साहू, क्रांति देवी साहू, पंकज साहू, सुष्मिता साहू, दीपक साहू, तेलंगाना भोंगिर से मोहम्मद बुरहानुद्दीन, फजान लल्ला, फरहान लल्ला, समीरा आजमीन गुड़िया, पदमपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, भूमिका अरोड़ा, लेवे छत्तीसगढ़ से गुलाब दास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी, रानी मानिकपुरी, उज्जवल दास मानिकपुरी, संदेशों की झड़ी से लगी है और हम भी पढ़ने के लिए उतावले हैं। जिला वारंगल से मोहम्मद खास रिजवानुद्दीन, मोहम्मद खजा फिसियोद्दीन, आयसा तबस्सुम जुबेरिया, राजेंद्र यादव भारती, उषा देवी भारती, दीपांजलि अनुराग, दीप भागल यादव, वलिदपुर मढ़ा मऊ से, इसरोल जिला बाड़मेर राजस्थान से शफी मोहम्मद सोलंकी, शाहरुख खान, मांगे खान, आतिक खान, रियाज खान, राज पैलेस मऊ से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा, शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार, रैस खान, साविया खान, अनस खान, शाहिल खान, शकील खान, धानिया खान, पुले नगर अम्बी वाली मुंबई महाराष्ट्र से, आप कैपिटल लेटर में लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और देखिए अब्बासी साहब, आपने फिर संदेश रिपीट करना शुरू किया, हमने आपसे विनम्र अनुरोध किया था ऐसा ना करें। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा, गांव गांव पर पकड़ीतर हनुमान मंदिर चांदनी चौक से त्रिलोकी जायसवाल, गिरधारी जायसवाल, शांति देवी, शिवनाथ जायसवाल, शिवांश शिवांगी और अन्नू जायसवाल, गिर्रा पलारी छत्तीसगढ़ से वीरेंद्र कुमार साहू, सोनू आशीष, कपिल साहू, मगनपुर झारखंड से अब्बास आलम, अमजद अली, लाडली बेबी निशार, घर के सभी सदस्य, मंसूरी बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरुन्निसा, शाबिस्ता, मोहम्मद नसीब, पलक लुबना, यस मंसूरी, फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद शाहिद, गोविंदपुरा अहमदनगर से जुनेद मुजावर, सभिया मुजावर, मिखाइल जुनेब मुजावर, शाहदरा दिल्ली कॉलोनी दिल्ली से वीना मस्किन, तुलसी मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन, मेघा मस्किन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, हमें भी लगा आपका भी शायद संदेश रिपीट हुआ है क्या, ऐसा ना करें। आप सभी पुराने हमारे सुधी श्रोता हैं। नगर पंचायत दिनारा से जयराम सिंह, सुषमा सिंह, श्वेता रानी पाठक, कंचन मिश्रा, सीता मुनि देवी और जयराम बिन, उदिता विश्वकर्मा, सुचिता विश्वकर्मा देवरिया उत्तर प्रदेश से, पद्मा टाकिच नेपानगर मध्य प्रदेश से, सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, आश्विन शाह, मंगला बेन शाह, राजेंद्र जी शाह, वड़िंगा खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा, गुरसंडी मिर्जापुर से अनिल पांडे, त्रिलोकी पंडित, मुकुल पांडे, प्रियांशु पांडे, हार्दिक पांडे, विराट पांडे, अतुल पांडे, तकिया मढ़ियाओं से मोहम्मद अल्तमा शाह, जमील अहमद शाह, मोहम्मद दानिश शाह, मोहम्मद हसरत शाह, मोहम्मद साजिद शाह, मोहम्मद रोमिस शाह, मोहम्मद आबान शाह, रोहिदास चौक पंढरपुर सिटी से प्रशांत शिंदे, सुनीता शिंदे, यशराज शिंदे, ऋषि शिंदे, कृष्णा घोटके, गांगीवाड़ा छिंदवाड़ा से रमनदीप परिहार, राजदीप परिहार, अपर्णा परिहार, सुधा परिहार, डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राजपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़, कमल साहनी, पिंगावाला चौक, गोरैया, जालंधर पंजाब से संदीप मक्कड़ भी हैं यहीं से, आदर्श नगर मलोड पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, सायना शर्मा, निवान शर्मा, चंडीगढ़ से सतीश शर्मा, नेत्रपाल सिंह और इनके परिवार के सभी सदस्य, जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार, नारगिस खातून, ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद मराठवाड़ा से श्री सुधाकर राजे जादव, डॉक्टर प्रशांत राजे जादव, कुमार संचित वायरल, कुमार प्रथमेश देशमुख, कुमारी प्रणाली देशमुख, कुमार सरबत देशमुख, कुमारी सानवी देशमुख, कुमारी कल्पना देशमुख,

मुंबई से अनु बड़जात्या, शमशुल खान, अनुराज बेनारा, जमालपुर गोगरी खगड़िया बिहार से सिकंदर कुमार तांती, गुडलक कुमार, अविनाश कुमार, सोनू कुमार, उद्धव कुमार, आप कैपिटल लेटर में लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। अमितेश कुमार तिवारी करनई बलिया से, नेहरू चौक पैठण से डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता जाधव, आरती, पूजा प्रसाद जाधव, सोनल जाधव, बेबी सिया जाधव, गांव हीरा वाली फजिल का पंजाब से सुभाष गोदारा, बिमला गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा, नूरमहल महसूल सीतामढ़ी बिहार से मुसरत जहानाज, तलत जहानाज, फरत जहानाज, रिफत जहानाज, नुजत जहानाज, शाजिया शाहिनाज और नाजिया नूरी नाज, महरो जौनपुर से आशीष कुमार, शाहजीनगर देगलूर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से संतोष भाकरे, सुनैना सुकन्या और सविता भाकरे। कुछ नाम अगले गाने के लिए भी छोड़ दें, आप वो लगातार संदेश भेज रहे हैं। अगला संदेश भेजा है भास्कर दुपे, जीप स्टैंड, चोचकपुर गाजीपुर से, मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष्य सोनी मोहिनी, ऋतिक बलवीर सिंह, ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से, धनेश मौर्य, अंचल मौर्य, हिसार हरियाणा से, ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा, आशीष विश्वकर्मा, बन्ने बुजुर्ग, पलेरा, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से, रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से, लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित और खुशी गोस्वामी, राजेश मिश्रा, अमलई पेपर मिल, मध्य प्रदेश से, कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से, ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिया नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय, शेरपुर कला जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती प्रीति राय, नवनीत राय, धनौरी तेलीवाले से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी अलिया, आयान बाबू, ग्राम नागरा कोहरा जिला राजनंदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, बेबी आराध्या साहू, आप सभी को हम सुनवाने जा रहे हैं इंदिवर का लिखा हुआ गीत, संगीत कल्याण जी आनंद जी का, फिल्म का नाम सफर, आवाज मुकेश की। इसके बाद आप सुनेंगे काम चोर फिल्म का गीत, तो अभी सुनिए सफर फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत।

बिल्कुल दोस्तों, आपको जो पसंद होगा हम वही बात तो कहते हैं, है ना। और इसीलिए तो आपके सारे संदेशों को हमने शामिल किया। और 11:19:30 हो गए, अभी तक एक गाना ही प्ले हो पाया, क्योंकि आपकी पसंद का हमें ख्याल रखना था। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपको हम सुनवाने जा रहे हैं काम चोर फिल्म का गीत। सुनने के लिए संदेश भेजा है आलोट जिला रतलाम एमपी से, मध्य प्रदेश से जगदीश धाकड़ नायमा, श्रीमती रंजूबाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़, शिवांगी धाकड़, शाहकुटी मुगलसराय से सोनू जायसवाल, मंजू जायसवाल, हनुमानपुर मुगलसराय से डब्लू जायसवाल, माया जायसवाल, सुनारी जमशेदपुर से कृष्णा जायसवाल, पूनम जायसवाल, रामनगर कदमा जमशेदपुर से विनोद जायसवाल और पिंकी जायसवाल, गांव और डाकघर निमनाबाद जिला जींद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जतेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और करमजीत कौर, जमशेदपुर झारखंड से सिपाही साही गांव से देवेंद्र तांती, राकेश तांती, प्रकाश निशा कुमारी, रेशमा कुमारी, दीपाली कुमारी और देवेंची, बरेडी से अर्जुन गवनेकर, धीरज सभ्य शेरे, चंचल ढोमने, कटरा मुबारकपुर से जावेद अख्तर अंसारी, निकहत परवीन, नुसरत परवीन, सलीम जावेद, शमीम अख्तर अंसारी, छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा, संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव, धमधा ग्राम सुकरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल, बुल्ढाणा वडशिंगी महाराष्ट्र से अमोन मानकर, शोभाताई मानकर, दीपाली और श्लोक कुमार, बुल्ढाणा इस्लामपुर महाराष्ट्र से सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर, सुमेत कुमार, सादुलशहर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़, पटेलनगर मुगलसराय से शशि सिंह, आस्था सिंह और आकाश सिंह का भी संदेश हमें मिला है, कोल सिटी बरका काना से अफजाल ताज, शाहिन सुल्ताना, सोनू तस्नीम, निप्पी सानी और मोहम्मद अफजाल मलिक, ये संदेश भेजा है पुरानी भिलाई 3/14 छत्तीसगढ़ से डॉक्टर नौशाद अहमद सिद्दीकी, बेगम हमीदुन सिद्दीकी, जीशान अहमद सिद्दीकी, शाहनवाज अहमद सिद्दीकी और सिद्दीकी परिवार, वाराणसी से संदेश भेजा है राजेश मिश्रा ने, अमलई शहडोल मध्य प्रदेश से इन्होंने संदेश भेजा है, कुम्भार गली कोलगांव से पांडू चंदन, उषा चंदन, रानी चंदन, प्रतीक्षा चंदन, अभिषेक चंदन, सार्थक चंदन, प्रतिमेश चंदन, संतोष चंदन और पांडुरंग कुम्भार, बटीना रोड मडी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, तानिया नारंग, आर अश्विन, शानू, शोभनाथ अवस्थी और इनके दोस्त शिवराजपुर चुनार मिर्जापुर से संदेश हमें भेज रहे हैं, व्हाइटफील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंदु भूषण, संस्कृति और पौरुष, भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, साथ में इनका बेटा गौरव शर्मा, मोहल्ला फतेहगंज लुधियाना पंजाब से विनोदपुरी वीपी रंजू, अशोकपुरी, सुशीलपुरी, बीकेपुरी, कैलाशपुरी, नीलमपुरी, रमापुरी, पालीपुरी।

सुनील पाठक, वी के पुरी और विनोद पुरी, इन्होंने नाम में कई बार अपना विराम लिखा, ऐसा ना करें। रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा डायक, समस्त डागला परिवार। उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिर भारती बघेल, लघाना पंडरिया, छत्तीसगढ़ से। दीपा यादव, उषा देवी यादव, अनुराग यादव, मास्टर भारती जी, राम समूह यादव, मेन रोड मढ़ा मऊ से। कबीर डांडी लोहारा वालों, छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामोरिया, अजय देव तामोरिया, तुषार देव तामोरिया, डॉली बेबी पूजा तामोरिया, राधिका और प्रभा देवी तामोरिया और मास्टर अल कबीर। श्री काशी विश्वनाथ धाम वाराणसी यूपी से आजन कुमार सिंह, वंदना सिंह, विनती सिंह, विनायक सिंह, मोहिनी सिंह, मोहित सिंह एवं प्यारी प्यारी खोको रानी। जेवरा हिसार से वीरेंद्र भ्याण, सुरेंद्र भ्याण, शमशेर भ्याण, मनोज भ्याण, संतोष पांडे, रेखा पांडे, शिवम पांडे, चौखंडी, हाथी बाजार, वाराणसी से। गुजरात गांधी ग्राम से प्रवीण, सोनी, पूजा, पायल, जूली और जगदीश जोहरी। सब्जीवाला बुल्डाना से शब्बीर हुसैन, शहजाद हुसैन, मज्जू बाबा और एन जन्म। यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खट से और विनोद खट से। बाबा कुटीर रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान, नितेश कुमार, राजेश्वरी चौहान, उत्कर्ष चौहान। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान छिपा, पूजा परिहार। तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया शेख, शेख रहीम मुन्ना। स्टेशन रोड जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया, पप्पी भाटिया। दतरंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा। छत्तीसगढ़ चुरीलान मुंगेली से मोहम्मद इसहा, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ और नीलोफर फातिमा। भोला यादव धानापुर चंदौली से, नांगलखेड़ा फगवाड़ा पंजाब से बाल कृष्ण शर्मा, प्रवीण शर्मा, मुनीश शर्मा, राहुल शर्मा। एमएनजी मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर से डॉक्टर तस्नीम कौसर, डॉक्टर इश्ता सानी, झुमरी तिलैया से डॉक्टर सोनम, बरका काना से नाजमी तबस्सुम, अफजल इब्राहिम, मोहम्मद इफ्तखार इब्राहिम। छत्रपति शिवाजी नगर खंडवा से राजेश सेन, सुरेखा सेन, शुभम सेन, अक्षय सेन। सविता पटेल नारायणपुर यूपी कॉलेज वाराणसी से। विशाल मिश्रा बंधुआ बाजार माधोपुर इमिलिया जौनपुर से आपको हम सुनवाने जा रहे हैं कामचोर फिल्म का गीत, जिसे लिखा है इंदिवर ने, संगीत राजेश रोशन का, आवाज किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। इसके बाद आप सुनेंगे पत्थर के सनम फिल्म का गीत।

आकाशवाणी वाराणसी से मैं आप सुन रहे हैं अपने व्हाट्सएप संदेश उपाधारित कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस अपने रेडियो दोस्त अनुपम के साथ। कार्यक्रम में अब आप सुनेंगे पत्थर के सनम फिल्म का गीत और सुनने के ख्वाहिशमंद आप सभी। लालगंज रायबरेली से के साहू, अमिता साहू, स्वस्तिका ऋषु और रीला विनस, चितबड़ा गांव बलिया से जीसी गुप्ता, आराधना गुप्ता, नेहा, निधि, आयुषी और अनुष्का। ये संदेश भेजा है ओबरा सोनभद्र से शुभम और आयुषी ने। कनॉट प्लेस नई दिल्ली से डॉक्टर अर्चना और पुरुषोत्तम का भी संदेश मिला। गंडोखा लालगंज रोहता से राजकिशोर सिंह, बड़क सिंह चौहान, आरके सिंह चौहान। सुनील पटेल नारायणपुर भोजपुर वाराणसी से। गांव लोहगढ़ा ठाकुर वाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह। गमरिया जमशेदपुर से रोहन जायसवाल, आर्य जायसवाल, मुराहो जायसवाल, देवंती जायसवाल। ग्रामधर से सरगांव छत्तीसगढ़ से चंदूलाल पटवा, श्रीमती सुनीता पटवा, हर्ष कुमार पटवा, विनीत कुमार पटवा, कुमारी कृष्ण पटवा। ग्राम चकफुटही असनाव बाजार जिला भदोई से गिरधारी लाल यादव। दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा और कुणाल मेहरा। मुंदीचक भागलपुर से दिलीप कुमार सोनी का भी संदेश मिला। शीशामऊ चौक कानपुर से धीरज कुमार सिंह, अर्चना सिंह, ऋषि कुमार सिंह, रक्षा सिंह और परिवारजन। रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी ठाकुर साहब, झुमरी तिलैया से महेंद्र चौरसिया। मुबारकपुर पुरानी बस्ती से शाहिद जमाल, दानिश

कार्यक्रम में अगला संदेश भेजा है पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, श्रीमती दीपा रिमझिम गुप्ता। राजू चौधरी ग्राम नगदिलपुर पोस्ट रेवतीपुर गाजीपुर से। छत्तीसगढ़ रायपुर से मोहम्मद इमरान, इशरत परवीन, मोहम्मद हसनैन रजा, गौसिया फातिमा। संदेश कुछ लोग रिपीट करते जा रहे हैं, ऐसा न करें हमारे जो पुराने श्रोता कम से कम वो तो समझ लें। मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माही मलिक। काली माता मंदिर दलदानगर गांव से श्री किशुन सिंह कुशवाहा, हृदय नारायण गुप्ता और छविनाथ शर्मा। ग्राम बहरामपुर टैमा, जिला खरगोन, मध्य प्रदेश से डॉक्टर तिलोक चंद्र वर्मा, श्रीमती भागवत वर्मा, अभिषेक वर्मा, सीमा वर्मा, डॉक्टर अमित वर्मा, सचिन, मास्टर समर, राज आर्यन, बेबी आरोही, ऐशिका, अंजलि, श्वेता वर्मा और इनके परिवार के सदस्य। वलितपुर मढ़ा मऊ यूपी से राजेंद्र यादव भारती, उषा देवी भारती, दीपांजलि अनुरागदीप भगेलू यादव। वाराणसी सुकुलपुरा से परवेज अहमद, मास्टर आई वी भारती। तो आप सभी को हम सुनवा रहे हैं आप सभी की पसंद पर संगम फिल्म का गीत। आवाज एक बार फिर लता मंगेशकर और मुकेश की, शब्द रचना शैलेंद्र की, संगीत शंकर जयकिशन का। इसके बाद आप सुनेंगे पगला कहीं का फिल्म का गीत।

फरमाइशी गीत एक्सप्रेस इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से अपने रेडियो दोस्त अनुपम के साथ। 11:45:20 हुए हैं। अब आप सुनेंगे पगला कहीं का। जी हाँ, ये नाम है फिल्म का जिसका गीत अब आप सुनेंगे मोहम्मद रफी की आवाज में। और इस गीत के लिए हमें संदेश भेजा है पटेल नगर मुगल सराय से सुनील कुमार सिंह। जो श्रोता एक नाम भेजते हैं हमें लगता है कि उनको हमें ग्रेडिंग करें तो शायद वो नंबर वन पर रहेंगे, और जो दो नाम भेजते हैं वो नंबर दो पर, उसके बाद तो फिर सभी का नंबर आएगा। तो कोशिश करें आप लोग कि एक जो मेल आप भेजें या व्हाट्सएप भेजें उसमें कम से कम नाम शामिल करेंगे तो अधिक से अधिक श्रोता का नाम इसमें शामिल हो पाएगा। बहुत लोगों की बहुत लंबी लिस्ट होती है तो थोड़ी सी दिक्कत आती है, हमें लगता है कि और लोगों के नाम छूट ना जाए, तो हम आपसे एक निवेदन ही कर रहे हैं, आप जैसा समझें। और कार्यक्रम में अगला संदेश हमें भेजा है अच्छे लाल बिंद ग्राम बाघी नंदगंज गाजीपुर से। भोपाल का राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान छिपा, पूजा परिहार, इन्होंने लिखा है कि बहुत देर से हम इंतजार कर रहे हैं। तो कहते हैं ना, इंतजार का फल तो मीठा होता है। शुरू में लोग हड़बड़ी में बहुत ढेर सारे लोग एक साथ कई मैसेज कर देते हैं, पूरा एक घंटे का प्रोग्राम होता है, बाद में भी भेजते हैं तो उसको हम शामिल करते हैं। ये संदेश भेजा है मुबारकपुर ऊंची तकिया आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से भाई दिलशाद हुसैन और फातिमा सोगरा ने। मिर्जापुर कुरुक्षेत्र से यशपाल धीमान, श्रीमती कृष्ण धीमान, राहुल धीमान, शुभम धीमान, प्रियंका धीमान, आंचल कुंज पर्व, प्रवीण धीमान, चिराग, रजत धीमान, बहुत लंबी लिस्ट इनकी भी आ गई, राजेश धीमान। और ये संदेश भेजा है शिवपुर बागान हावड़ा से अब्बास अंसारी, शहबाज अंसारी, पीर मोहम्मद अंसारी और प्यारी नवासी हयात मोइन अंसारी, लालगंज रायबरेली से के किसाओ, अमिता साहू, स्वस्तिका और रिशु, चितबड़ा गांव बलिया से जीस गुप्ता और आराधना गुप्ता। ये संदेश भेजा है कनॉट प्लेस नई दिल्ली से पुरुषोत्तम और डॉक्टर अर्चना ने। तो अभी सभी आप सुनिए अपनी पसंद पर पगला कहीं का फिल्म का गीत। आवाज मोहम्मद रफी की, इस गीत को लिखा है हसरत जयपुरी ने, संगीत शंकर जयकिशन का है। और एक संदेश और भी मिला, इन्होंने एक

नाम भेजा है आरिफ जमाल कोटवा गढ़ी वाराणसी से। तो हम आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने एक ही नाम भेजा है। तो अभी सुनिए अपनी पसंद पर पगला कहीं का ये गीत। इसके बाद आप सुनेंगे परिचय फिल्म का गीत, हो सकता है वो आखिरी गीत हो इस कार्यक्रम का।

अपनी प्रतिक्रिया से हमें अवगत जरूर कराइएगा। प्रतिक्रिया भेजने के हमारी ईमेल आईडी नोट कीजिए, pkldaarvaranasi@gmail.com। पता एक बार पुनः सुन ले, pkldaarvaranasi@gmail.com। इस पर अपनी प्रतिक्रिया इस कार्यक्रम के संदर्भ में जरूर लिखिएगा, हम इंतजार करेंगे आपकी प्रतिक्रियाओं का। और कार्यक्रम में चलते चलते हम वहां पहुंचे जहां इंतजार कर रहा है प्रोग्राम का आखिरी नगमा, जिसे हमने लिया है परिचय फिल्म से। इस गीत को लिखा है गुलजार ने, संगीत से सजाया है आरडी बर्मन ने, आवाज किशोर कुमार की, और सुनने के ख्वाहिशमंद आप सभी श्रोता। मुनीफ सिंह ने संदेश भेजा है दरौली जमानिया से। कोटवा कपिलधारा सराय मोहना वाराणसी से रतिनाथ त्रिपाठी, राखी आर्या, एंद्री ओमनाथ सारंग, शिवांग रोली, अदिति और माताजी निर्मला त्रिपाठी। चकदाऊ सिकड़ी गाजीपुर उत्तर प्रदेश से साहब चौहान, रीमा चौहान, वैभव चौहान, वैष्णवी चौहान, आयांश चौहान का भी संदेश मिला। पूनम यादव, कुसुम यादव, मोकलपुर मरियाहू जौनपुर से अपने संदेश में प्रेषित किया है। परिचय फिल्म के इस गीत के लिए संदेश भेजा है पहाड़िया अशोक विहार कॉलोनी फेज टू से अनिल गुप्ता गोंड, रमा गुप्ता गोंड, अंकुश कुमार गुप्ता, अग्रिम गोंड और पूजा गुप्ता गोंड ने। सेक्टर 5 कोड़ी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहनी चौहान, कल्पित चौहान और बेबी गर्वी। एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा और तन्वी बोट। रामसकल चौधरी चोचकपुर बाजार जिला गाजीपुर से इन्होंने संदेश भेजा है। अजय सिन्हा, कैलाश सिन्हा, भोले सिन्हा, सचिन उनके मम्मी पापा, गांव नारी पचदेवरा गाजीपुर से ये संदेश भेजा है। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा ने। राशिद जमाल, शाहिद जमाल, हामिद रजा कोटवा गढ़ी वाराणसी से इन्होंने संदेश भेजा है। ये शायद कार्यक्रम का आखिरी संदेश था, तो आप अपने संदेशों से, अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें जरूर अवगत कराइएगा पीकेएलडी कार्यक्रम में। अभी सुनिए कार्यक्रम के अंत में किशोर कुमार की आवाज में परिचय फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत।

जी दोस्तों, भुलाना तो मुश्किल होगा आपको हमें, ना आप हमें भूल पाएंगे ना हम आपको भूल पाएंगे, और ये कार्यक्रम के द्वारा ये सिलसिला चलता रहेगा ऐसी हमें उम्मीद है। और दोस्तों, ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा

जी हाँ दोस्तों, मुसाफिर आप भी हैं, मुसाफिर हम भी हैं, और चलते जाना, आगे बढ़ते जाना। किसी मोड़ पर फिर होगी आपसे मुलाकात इसी ख्वाहिश के साथ। आज का ये कार्यक्रम फरमाइश गीत एक्सप्रेस कार्यक्रम समाप्त करने की अपने रेडियो दोस्त अनुपम को दीजिए इजाजत। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से प्रसारित हो रहा था। अब आइए सुनते हैं NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश, स्वागत करती हूं आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में।
0: नमस्कार, मैं हूं अजीत। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुविचार, जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम राजकोट से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
2: वो लिखते हैं, भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कर्मों का तूफान पैदा करें, सारे दरवाजे खुल जाएंगे।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको इतने सुंदर संदेश के लिए। जी हाँ श्रोताओ, भाग्य भरोसे बैठे रहने से बेहतर है कर्म करना, जो सफलता का आधार है।
2: जी,
0: पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम सुन लेते हैं।
2: अयोध्या धाम से राजा बाबू शर्मा, राम बाबू शर्मा, राज बाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा।
0: और ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे।
2: ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया और श्रीमती कल्पना चंसौलिया।
0: असिटी गोनियाना मंडी पंजाब से गुरप्रीत सिंह जस्सल जी।
2: ठाणे महाराष्ट्र से शोभा राणे जी।
0: आप सबको संदेश भेजने के लिए उमंग कार्यक्रम की ओर से आभार। स्वागत आप सबका एक बार फिर से श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओ, इस सप्ताह हमारी चर्चा का विषय दुनिया की विभिन्न पेय संस्कृतियों पर रहा है।
2: हमने चर्चा की चाय की, कॉफी की और कोको की। आज हम बात करेंगे एक और पेय की, जो चाय, कॉफी और कोको के बाद सबसे अधिक लोकप्रिय है। ये पेय बहुत स्वास्थ्यवर्धक पेय माना जाता है।
0: जी हाँ श्रोताओ, हम बात कर रहे हैं सोया पेय की।

0: इसकी अपनी पेय संस्कृति है, खासकर पूर्वी एशिया में। सोया केवल पेय ही नहीं लेकिन एक स्वास्थ्यवर्धक भोजन भी है।
1: जी,
0: कई समुदायों में खान पान और संस्कृति का ये हिस्सा रहा है।
1: जैसे चीन, जापान, कोरिया और वियतनाम के समुदायों में, इन देशों में सोया दूध सदियों से सुबह के नाश्ते का अभिन्न अंग रहा है। इन देशों में सोया पेय को स्वास्थ्य, पौष्टिकता और ऊर्जा से जोड़कर देखा जाता है।
0: यदि इसकी उत्पत्ति की बात करें तो

0: सबसे बाद में ये यूरोप और अमेरिका समुद्री मार्गों से पहुंचा।
1: श्रोताओ, इन देशों में सोया पेय उतना ही लोकप्रिय है जैसे भारत में चाय। सामुदायिक खेलकूद प्रतियोगिताओं, जूडो, कराटे और अन्य खेलों में भी इसका बड़ा महत्व है।
0: जी
1: खिलाड़ी प्रतियोगिताओं के समय इसका विशेष रूप से सेवन करते हैं ताकि उनकी शारीरिक क्षमता और स्फूर्ति बनी रहे।
0: ये गर्म या ठंडा दोनों रूपों में पिया जाता है। कई देशों में सोया पेय के विशेष और आकर्षक स्टॉल लगाए जाते हैं जहां लोग जमा होकर इसे पीते और आपस में बातचीत करते हैं।
1: जहाँ तक इसकी पैदावार की बात है, ये एक पौध आधारित समृद्ध प्रोटीन का स्रोत है जिसे कई लोग डेयरी के विकल्प के रूप में भी लेते हैं।
0: तकनीकी रूप से ये दलहन यानी दाल है। इसे वार्षिक फसल भी कहते हैं क्योंकि ये साल में एक बार ही होती है। इसके पौधे में हरी पत्तियां, फूल और फलियां होती हैं। इन फलियों में बीज होते हैं। इसके सबसे बड़े उत्पादक देश ब्राजील, अमेरिका, अर्जेंटीना, चीन और भारत हैं।
1: यदि भारत की बात करें तो जलवायु के आधार पर मुख्य रूप से ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में उगाया जाता है। सोया के कई उपयोग हैं जैसे
0: सोया दूध, टोफू, सोया आटा, सोया तेल, सोया सॉस और पशु आहार।
1: अब आइए बात करते हैं आयुर्वेद की। श्रोताओ, सोयाबीन की चर्चा आयुर्वेद के प्राचीन मुख्य ग्रंथों में तिल, मूंग, उड़द और मसूर की तरह स्पष्ट रूप से तो नहीं मिलती, लेकिन आधुनिक आयुर्वेदिक व्याख्याओं में इसे अत्यंत पौष्टिक और शरीर को बल देने वाला पेय माना जाता है।
0: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी सोयाबीन के बारे में। इसकी पेय संस्कृति बहुत रोचक रही है, खासकर मध्य पूर्व एशिया में, लेकिन अभी एक वैश्विक पेय माना जाता है और इसकी एक अलग पहचान है।
1: तो श्रोताओं, ये थी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, सोयाबीन की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस देश की मानी जाती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए
0: सोयाबीन की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस देश की मानी जाती है?
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440055 पर।
0: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CITNCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो चलिए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है चींटी।
0: हिंदी की पाठ्य पुस्तक पर आधारित इस कार्यक्रम को एक सुंदर गीत द्वारा प्रस्तुत किया गया है जिसमें चींटी के परिश्रम और लगन के बारे में बताया गया है और संदेश दिया गया है कि हमें भी सफलता प्राप्त करने के लिए चींटियों की तरह लगनशील और परिश्रमी होना चाहिए।
1: सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। हर पल चलती जाती चींटी,
2: हर पल चलती जाती चींटी,
1: श्रम का राग सुनाती चींटी,
2: श्रम का राग सुनाती चींटी,
1: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
2: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
1: दाना चुनकर लाती चींटी,
2: दाना चुनकर लाती चींटी,
1: सचमुच कैसी कलाकार है,
2: सचमुच कैसी कलाकार है,
1: घर को खूब सजाती चींटी,
2: घर को खूब सजाती चींटी,
1: छोटा तन पर बड़े इरादे,
2: छोटा तन पर बड़े इरादे,
1: छोटा तन पर बड़े इरादे,
2: छोटा तन पर बड़े इरादे,
1: नहीं कभी घबराती चींटी,
2: नहीं कभी घबराती चींटी,
1: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
2: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
1: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
2: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
1: काम बड़े करके दिखलाती,
2: काम बड़े करके दिखलाती,
1: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
2: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
1: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
2: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
1: हमको यही सिखाती चींटी,
2: हमको यही सिखाती चींटी।
1: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन। आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

तो सुना आपने, कैसा लगा ये गीत? अच्छा लगा ना? तो अब सुनते हैं चींटियों के बारे में कुछ और मजेदार बातें। चींटियां बहुत मेहनती होती हैं। वे समूह में यानी मिलजुल कर काम करती हैं। और तो और, आपको मालूम है, अकेली चींटी अपने वजन से 50 गुना अधिक वजन उठा सकती है। इतना ही नहीं, आपने जरूर देखा होगा कि यदि कोई चींटी वजन नहीं उठा पाती तो दूसरी चींटियां तुरंत उसकी मदद के लिए आ जाती हैं। है ना मजेदार बात? तो क्या सिखाती हैं हमें ये चींटियां? हमें हमेशा मिलजुल कर रहना और मेहनत से काम करना चाहिए। अच्छा, अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा मालूम कीजिए कि चींटियां कितने रंगों की होती हैं। एक बात और, इस कविता में चींटी को कलाकार कहा गया है। जरा सोचिए और बड़ों से भी पूछिए कि उन्हें कलाकार क्यों कहा गया है। चींटी, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंग लिंगडो, संगीतकार विकास शंकर, ध्वन्यांकन विकास सांगवान, कविता वाचन स्वर सोहम, वान्या और मनन, गायन स्वर चार्वी, नव्या और एंजल, निर्माण सहयोग चेतना शर्मा, निर्देशन तथा निर्माण अजीत होरो। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम चींटी। आशा है कि आपको जरूर पसंद आया होगा।

0: तो क्यों ना अपनाएं खुशियां, अपनाकर मनोदर्पण। कॉल करें 844-844-0632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: और आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है गांव की धरती।
2: कार्यक्रम में भारत के ग्राम्य जीवन के बारे में बताते हुए वहां के सरल जीवन और प्राकृतिक सौंदर्य का बखान किया गया है। कार्यक्रम में गांव की हरियाली, खेतों और स्वच्छ पर्यावरण की भी चर्चा की गई है और संदेश दिया गया है कि हम भी अपने पर्यावरण का विशेष ध्यान रखें।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गांव की धरती, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है झरना।
1: ये कार्यक्रम भूगोल की एक पाठ पर उपलब्ध जानकारियों पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि झरनों का निर्माण कैसे होता है। इन जानकारियों को एक रोचक गीत और संवादों के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

0: जादुई पिटारा, है ना मजेदार साथियों? जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का समय यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से प्रसारित हो रहा था।
1: स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने वादा।
5: हम सभी का एक ही नारा, साफ सुथरा हो देश हमारा, सफाई अपनाएं, बीमारी भगाएं, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। हम सब ने ये ठाना है, भारत को स्वच्छ बनाना है। स्वच्छता का दीप जलाएंगे, चारों ओर उजियारा फैलाएंगे। सभी रोगों की एक दवाई, घर में रखो साफ सफाई।

0: सुनो ना,
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है, हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे?
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो,
2: 0542227658।
3: 0542227658।
0: लो अभी फोन लगाता हूँ।
3: 0542227658।

मीडियम वेव 241.56 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR, DTH DRM 1233 किलोहर्ट्स वेव्स OTT पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। आइए सुनते हैं सुगम संगीत और आज की कलाकार हैं पूनम शर्मा। इनके स्वर में पहले सुनिए कबीर दास की ये रचना।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज के कलाकार हैं पूनम शर्मा। कार्यक्रम के अंत में इनके स्वर में पुनः सुनिए कबीरदास की एक और रचना।

0: सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज की कलाकार थी पूनम शर्मा। श्रोता, हम आपको याद दिला दें, इनका गाया गीत आप रात 8 बजे सुगम संगीत के कार्यक्रम में एक बार फिर सुन सकते हैं। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से प्रसारित हो रहा था।
1: स्वच्छता ही सेवा, ध्येय वाक्य को अमल में लाए, कार्य संस्कृति को आगे बढ़ाए, अपना जीवन अमूल्य बनाए। स्वच्छता अपनाए, कार्यालय की गरिमा बढ़ाए, अपना जीवन सफल बनाए। स्वच्छ होगा जब वातावरण, तभी होगा नवजागरण। आइए आज से ही स्वच्छता ही सेवा की

0: मूल भावना को अपनाएं, जीवन में नव ऊर्जा का संचार करें। स्वच्छता ही सेवा है, स्वच्छता ही संस्कृति है। स्वच्छता बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। स्वच्छ रहेगा भारत तो समृद्ध रहेगा भारत। नदियों को रखो साफ, ये है हमारी सभ्यता की पहचान। स्वच्छता को आदत बनाएं, रोज सफाई करना भूल न जाएं। गांधी जी के सपनों का भारत हमें बनाना है। पूरा भारत स्वच्छ रहे, यही हमारा नारा है। स्वस्थ भविष्य के लिए आज से ही स्वच्छता अपनाएं। हर नागरिक का हो ये सपना, स्वच्छ हो संपूर्ण भारत अपना। जब हमारा भारत स्वच्छ होगा तभी तो हर सपना सच होगा। देश तभी साफ होगा जब स्वच्छता में सबका हाथ होगा। मन में रखो एक ही सपना, स्वच्छ बनाना है भारत अपना। जब देश का कोना कोना स्वच्छ रहेगा तब देश का हर एक बच्चा स्वस्थ रहेगा।
1: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए पंडित चित्तरंजन ज्योतिषी का गाया राग भीम पलासी। आपके साथ हारमोनियम पर संगत की है मेहताब खान ने और तबले पर साथ दिया है पंडित नंद किशोर मिश्र ने।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित चितरंजन ज्योतिषी का गाया राग भीम पलासी। आपके साथ हारमोनियम पर संगत की थी मेहताब खान ने और तबले पर साथ दिया था पंडित नंद किशोर मिश्र ने। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से प्रसारित हो रहा था मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR, DTH DRM 1233 किलोहर्ट्स और वेव्स OTT पर। दिन का 1 बजने को है, कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे समाचार जिसे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, चिकित्सा, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और सुशासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व आधारित विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। गृहमंत्री अमित शाह नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के महानिदेशक भी उपस्थित हैं। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को संपन्न होगी। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधिकारियों के साथ प्याज की खरीद को बढ़ाने और किसानों को बेहतर लाभ सुनिश्चित करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने कहा कि खरीद मूल्य को संशोधित करके 1,650 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन, रेडियो और संचार सेवाओं से संबंधित दूरसंचार नियम 2026 का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया है। ये मसौदा पूर्व टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के अंतर्गत टेलीविजन और रेडियो सेवाओं के लिए जारी विभिन्न दिशा निर्देशों को नए दूर संचार अधिनियम 2023 के दायरे में शामिल करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। नए प्रावधान में सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा निजी प्रसारकों के बीच होने वाले ग्रांट ऑफ परमिशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। इससे ये पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो जाएगी। सरकार ने संस्थागत, औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के पेट्रोल पंपों से ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जारी संघर्षों के दुष्परिणामों से निपटने के लिए सुगम और निर्बाध आपूर्ति श्रृंखलाओं, निरंतर राजनयिक प्रयासों तथा अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। फिनलैंड में कुलतारंता वार्ता में डॉ. जयशंकर ने कहा कि संघर्षों का असर प्रभावित क्षेत्रों के साथ साथ अन्य क्षेत्रों पर भी होता है। खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी

सतर्कता बरत रही है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रखे है और प्रत्येक भारतीय नागरिक की सुरक्षा और कुशलता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने ओमान के तट पर पलाऊ के

0: ओमान के तट पर पलाऊ के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले की निंदा की है। इसमें 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि अंतोनियो गुतरश लगातार बढ़ते तनाव को लेकर बहुत चिंतित हैं। वहीं आईएमओ के महासचिव ने कहा है कि वो स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। मिस्र के विदेश मंत्रालय ने ईरान और अमरीका के बीच संभावित शांति समझौते को लेकर दोनों देशों से जल्द ही एक निर्णायक सहमति बनाने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने कहा कि मिस्र अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के खिलाफ नियोजित सैन्य हमलों को रद्द करने की घोषणा की स्वागत करता है। भारतीय निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का निधन हो गया है। वे 49 वर्ष के थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। भारत की पीवी सिंधु ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में सिंधु ने चीन की ताइपेई की चेन सू यू को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। मीडियम वेव 241.5 आर्बिटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर। कार्यक्रम विवरण में सुनिए, कार्यक्रम विवरण आप सुनेंगे खोए व्यक्ति की सूचना के बाद। पुलिस अधीक्षक जनपद चंदौली से प्राप्त सूचना के अनुसार कुमारी प्रियंका पुत्री कमलेश विश्वकर्मा ये ग्राम नादी थाना बलुआ जनपद चंदौली की निवासी हैं, कहीं लापता हो गई हैं। कुमारी प्रियंका के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार है। उम्र 20 वर्ष, लंबाई 4 फुट 2 इंच, रंग गोरा, शरीर पतला दुबला है, चेहरा गोल है। ये जब लापता हुई थी उसमें सफ़ेद कुर्ती और कार्गो और काला पैंट पहने हुए थी। कुमारी प्रियंका के बारे में कोई भी जानकारी मिलने पर अपने निकट के थाने या पुलिस अधीक्षक जनपद चंदौली को सूचित करें। यहीं से एक और भी सूचना प्राप्त हुई है। कुमारी रिमझिम, पिता का नाम सुरेंद्र सोनकर, ये ग्राम बिछड़ी थाना अलीनगर जनपद चंदौली की रहने वाली हैं, कहीं लापता हो गई हैं। कुमारी रिमझिम की उम्र है लगभग 17 वर्ष, रंग सांवला, लंबाई लगभग 5 फीट, चेहरा गोल है। कुमारी रिमझिम के बारे में कोई भी जानकारी मिले तो अपने समीप के थाने या पुलिस अधीक्षक जनपद चंदौली को सूचित करें। एक सूचना वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद जौनपुर से प्राप्त हुई है। इसके अनुसार शगुन भारती पुत्री प्रमोद कुमार निवासी ग्राम बारी गांव नेवादा थाना मड़ियाऊ जनपद जौनपुर कहीं लापता हैं। शगुन भारती के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार है। उम्र 15 वर्ष, लंबाई 5 फीट, इकहरा बदन, रंग गेहुआ, चेहरा गोल है। ये जब लापता हुई थी उसमें गुलाबी चेकदार सूट पहने हुए थी। शगुन भारती के बारे में कोई भी जानकारी मिलने पर अपने समीप के थाने या पुलिस अधीक्षक जनपद जौनपुर को सूचित करें। आप सुन रहे थे खोए व्यक्ति के संबंध में सूचना। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर विशेष श्रृंखला आप सुनेंगे रात 8:10 पर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात्रि 10:30 पर उस्ताद गुलाम मुस्तफा खां का गायन प्रसारित होगा। गैर फिल्मी गीतों और गजलों का प्रोग्राम अंजुमन आप सुनेंगे रात 9:30 पर। रात्रि 10:00 विज्ञान पत्रिका कार्यक्रम में नीरज कुमार शुक्ला की वार्ता होगी हमारे आसपास की अदृश्य तरंगे। इसी कार्यक्रम में क्या होते हैं सेमीकंडक्टर्स, इस विषय पर अरविंद कुमार सिंह से भेंट वार्ता होगी, भेंट करता होंगे चंदन कुमार सिंह। रात 8:00 सुगम संगीत कार्यक्रम में कलाकार होंगी पूनम शर्मा। कृषि जगत कार्यक्रम में शाम 6:30 पर किसान भाई सुनेंगे वार्ता धान की उन्नत प्रजातियां, वार्ताकार होंगे डॉक्टर जोखन सिंह। साथ में डॉक्टर माधवी सिंह का लोकगीत भी होगा, इनका गाया लोकगीत आप दिन में 1:45 पर भी सुन सकते हैं। शाम 5:15 पर।

वाणी कार्यक्रम में युवा साथी सुनेंगे आज की बात। सिने दर्पण कार्यक्रम में आज के कलाकार होंगी नूतन, साथ में यूथ डायरी, इतिहास में आज का दिन, रोजगार सूचना और फिल्म संगीत। दिन में 2:30 पर आप सुनेंगे एक ही कलाकार से। आज के कलाकार होंगे पार्श्व गायक SB बाल सुब्रमण्यम। फिल्म संगीत इसके अलावा आप सुनेंगे शाम 5 बजे, शाम 6:10 पर, शाम 7 बजे और शाम 7:31 पर रस रंग कार्यक्रम में। कार्यक्रम विवरण में अभी आप सुन रहे थे शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। अब से कुछ ही पलों बाद यानी ठीक 1:10 पर आप सुनेंगे इलाकाई खबरें, जिसे लखनऊ केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी समाचार।
1: मरकजी हुकूमत ने साइबर मुजरिमों की तरफ से सिक्योरिटी सिस्टम और मालियाती ढांचे को लाहक बढ़ते हुए खतरे के बारे में एक अलर्ट जारी किया है। वजारत दाखिला के तहत इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की जानिब से जारी करदा अलर्ट के मुताबिक साइबर मुजरिम माली और जाती फ्रॉड के लिए AI से चलने वाली डीप फेक वीडियोज़ का तेज़ी से गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। शहरियों को मशवरा दिया गया है कि वह अपना बायोमेट्रिक डेटा महफूज रखें, मशकूक लॉगिन की कोशिशों से चौकन्ना रहें और माली सरगर्मियों से मुतालिक ईमेल या SMS नोटिफिकेशन की बाकायदगी से निगरानी करें। उनसे ये भी कहा गया है कि वह नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के जरिए किसी भी मशकूक मालियाती लेन देन की इत्तला फौरी तौर पर दें। चाइल्ड लेबर के खिलाफ आलमी दिन के मौके पर आज लखनऊ में महकमा मेहनत और रोजगार एक खसूसी बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद कर रहा है। इस प्रोग्राम का मकसद चाइल्ड लेबर के खात्मे के बारे में अवामी बेदारी को बढ़ाना और माशरे के बच्चों को तालीम, तहफ़ और मजमू तरक्की के हकूक के बारे में आगाह करना है। प्रोग्राम में तकरीबन 800 शुरका की शिरकत मतवक़ है। कल रियासत के अक्सर ज़िलों में तेज़ रफ्तार हवाओं के साथ अच्छी बारिश देखने को मिली, जिससे आवाम को शदीद गर्मी से राहत मिली। अमरोहा में कल रात से मूसलाधार बारिश होने से मौसम खुशगवार हो गया, जबकि पीलीभीत ज़िले में भी रात से सुबह तक बारिश जारी रही। महकमा मौसमियात के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में लखनऊ समेत रियासत के बेशतर अज़ला में दर्ज हरारत में कमी आ सकती है। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें ख़त्म हुईं।
2: मीडियम वेव 241.56 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी वाराणसी से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है महिलाओं का कार्यक्रम गृहलक्ष्मी, उसके पहले ये संदेश।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
6: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
5: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
6: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
5: बुकिंग है तो संपर्क करें
7: 0542227658
8: 0542227658 आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
9: सखियों के साथ,
10: सखियों के बाद,
9: सखियों के जज्बात,
11: गृह लक्ष्मी।
12: गृहलक्ष्मी सुनने वाली सभी श्रोताओं को मेरा यानी कि शीला का प्यार भरा नमस्कार, और सुरेखा जी आपको भी हमारा नमस्कार।
13: श्रोता सखियों को सुरेखा का प्यार भरा नमस्कार, और शीला आपको भी हमारा बहुत बहुत नमस्कार। कैसी हैं?
12: हम तो अच्छे हैं।
13: शीला देखिए, कई बार ऐसा होता है ना कि हम सभी सोचते हैं कि हमारा परिवार कैसे पूरा होगा, और पता है परिवार में तो सभी सदस्य होते हैं, लेकिन परिवार तभी पूरा माना जाता है जब छोटे छोटे खेलते कूदते बच्चे हों, उनकी किलकारियां हों। और कहते हैं ना कि देश का भविष्य भी तो बच्चों से ही बनता है।
12: सही कहा।
13: बच्चे जितना पढ़ेंगे लिखेंगे आगे बढ़ेंगे तभी हमारे किसी भी देश का भविष्य तभी उज्ज्वल होगा, और परिवार भी तभी आगे बढ़ सकता है, उन्नति कर सकता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बहुत से माता पिता के साथ ऐसी परिस्थितियां होती हैं, या यूं कह ले कि वो अपने बच्चों को अगर नहीं पढ़ा पाते हैं किसी अन्य कारण की वजह से। छोटे छोटे बच्चे कई जगह आपने देखे होंगे कि बहुत सारे रेस्टोरेंट में और स्टेशन पे काम करते हुए नजर आते हैं, तो बड़ी तकलीफ होती है कि इन छोटे बच्चों का जो काम है ना वो सिर्फ खेलना कूदना और पढ़ना है।
12: जी हाँ।
13: तो आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी हो जाती है जो इन्हें बाहर कार्य करना पड़ता है?
12: हाँ सुरेखा जी, सही कहा आपने, बच्चों से उनका बचपन
13: छिन जाता है।
12: तो इसी विषय पे आज हम चर्चा भी करेंगे, क्योंकि आज एक बहुत ही खास दिन है। और आज हम मना रहे हैं बाल श्रम निषेध दिवस। तो हमारे जो नन्हे बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, जो पढ़ लिख नहीं सकते,

0: के माता पिता या ऐसे लोगों को जागरूक करने के लिए हम सभी 12 जून यानी कि आज के दिन मनाते हैं बाल श्रम निषेध दिवस। और देखिए इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस की शुरुआत सन 2002 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO द्वारा बाल श्रम के खिलाफ वैश्विक जागरूकता बढ़ाने और बच्चों को उनके अधिकारों जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा से वंचित करने वाली इस कुप्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से की गई थी, है ना?
1: बिल्कुल सही है। और पता है सखियों कि बाल श्रम ना हो, इसे बढ़ावा ना मिले, इसके लिए कानून में बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। और जो लोग अपने यहाँ बाल श्रम करवाते हैं यानी अपने यहाँ बच्चों को श्रमिक के तौर पे रखते हैं उनके लिए कानून की तरफ से बहुत सज़ा भी है। भारत में भी ऐसा है। और इसी बात को की जागरूकता को बढ़ाने के लिए कि आप अपने यहाँ बच्चों को श्रमिक ना रखें नहीं तो आपको बहुत सज़ा हो सकती है, इसी को उद्देश्य बनाया ILO ने कि इसी के लिए जागरूकता बढ़ानी है लोगों में ताकि लोग जागरूक रहें, अवेयर रहें।
0: हाँ, सही कहा आपने। बाल श्रम में लगे बच्चों को इस समस्या से बाहर निकालना, उन्हें शोषण से बचाना और शिक्षा तक उनकी पहुंच, मतलब उन तक शिक्षा को पहुंचाना,
1: हाँ,
0: और एक सबसे प्रमुख उद्देश्य है
1: और अगर शिक्षा होगी तो हमारे बच्चों में ना नेतृत्व का गुण भी बहुत आएगा।
0: सही,
1: क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं, जो नौनिहाल है ना, वो बचपन में ही बहुत कुछ सीख सकते हैं, तो क्यों ना हम बचपन से ही उनमें नेतृत्व का गुण भी डालें। क्योंकि बच्चे जो है ना बहुत मासूम होते हैं, उनका मन जो है बहुत कोमल होता है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी नेतृत्वकर्ता बने तो उन्हें बचपन से ही ऐसे गुणों का विकास उनके अंदर करना चाहिए ताकि वो आगे चलकर अपने परिवार का भी अगर नेतृत्व करते हैं तो ये अच्छी बात है, देश का भी नेतृत्व करते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है।
0: सही कहा आपने। और ये बात भी कहीं ना कहीं सच है कि ये बच्चे, जैसे आपने कहा ना कि बचपन से हम उनके अंदर नेतृत्व का गुण डालें, लेकिन बच्चों के स्वभाव उनके चरित्र पर भी निर्भर करता है। जैसे कुछ बच्चे बचपन से ही हर कार्य में कुशल होते हैं, दक्ष होते हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ बच्चे कुछ एक चीजों में रुचि होती है, और कुछ बच्चे शांत रहते हैं, शर्मिले स्वभाव के भी होते हैं। तो बहुत से ऐसे बच्चे भी होते हैं जहाँ उनके भीतर, जैसे बचपन से उन्हें देखिए वो सब बच्चों के अंदर के अलावा में अपने खुद को लीडर महसूस करते हैं,
1: हाँ हा।
0: लेकिन ऐसा नहीं है कि उनका मनोबल बढ़ा के वो अपने आप को बॉस ही समझने लगे।
1: लेकिन क्षमता का विकास शुरू से ही होना चाहिए। और पता है अब मेरी इच्छा हो रही है ना, वक्त हो चला है एक प्यारा सा गीत का, तो हम क्यों ना पहले एक गीत सुन ले सकिए और आपको भी सुनाते हैं, देखिए आपको बहुत आनंद आएगा इस गीत को सुनकर।

0: शीला,
1: हाँ?
0: देखो सचमुच मुलाकात तो एक बहाना ही होता है, और बहनों के साथ मिलना हो तो ये तो बड़ी अच्छी बात होती है।
1: हाँ, बहनों से सखियों से मिलना हो तो हम तो यहाँ आ ही जाते हैं, और कभी कभी उनसे फोन पर बातें भी कर लिया करते हैं।
0: और देखिए आज भी हमने बहुत सारी सखियों से बात की है, क्योंकि खुश रहना बहुत ही जरूरी है। तो हम तो खुश रहना जानते हैं, कैसे खुश रहा जाता है, कभी कभी परेशान हो जाते हैं वो बात अलग है, लेकिन चलिए सुनते हैं कि आखिर हमारी सखियां कैसे खुश रहती हैं।
1: हेलो सखी।
2: जी नमस्ते
1: नमस्कार, कहाँ से बोल रही हैं आप?
2: जी, मैं रामनगर से बोल रही हूँ।
1: अच्छा, तो पहले अपना नाम बताइए।
2: जी मेरा नाम प्रियंका है। जी
1: अच्छा प्रियंका, आप क्या करती हैं?
2: मैं हाउस वाइफ हूँ एक।
1: अच्छा, सच कहा आपने, हाउस वाइफ है। घर में रहकर भी घर को सजाना, संवारना या सबके लिए भोजन पकाना अच्छा लगता है, या फिर यूं कहे कि घर के कार्य करने में, जैसे कि हर महिला अपने परिवार के लिए भोजन बनाती है, अपनों के लिए समर्पित रहती है हमेशा, तो ये भी एक बहुत सबसे उत्तम कार्य है। और ऐसा कौन सा कार्य है जिस कार्य को करने में आपको खुशी मिलती है?
2: नहीं, वैसे तो हमारी जिंदगी घर गृहस्थी में ही पूरी कट जाती है, लेकिन कभी कभी जैसे मन बहुत ज्यादा वो हो जाता है तो लगता है कि बस कहीं बाहर निकल जाओ, क्योंकि हम लोग बनारस के हैं और मेरा घर रामनगर में ही है, तो रामनगर में पास में ही घाट पड़ता है, रामनगर घाट में वहीं जाकर के बैठ जाती हूँ। और बहुत मतलब वहां पे शाम को आरती भी होती है, काफी भीड़ होती है, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है, अपने मन को खुश करने के लिए मुझे वो सबसे अच्छा जरिया लगता है।
1: अच्छा, सही बात है कि घाटों पे बहुत सुकून है, तसल्ली है। इसके अलावा आप जैसे कभी मन उदास हो जाए तो क्या करती हैं?
2: जी मैं मंदिरों में जाकर के दर्शन करना और घाटों पे जाना ही ज्यादा पसंद करती हूँ।
1: सही बात है, गंगा के किनारे घाटों पे जो सुकून है वो कहीं और नहीं। और जो कहते हैं ना कि कभी कभार हर किसी का, इंसान है तो देखिए टेंशन भी है, तनाव भी है, लेकिन अपने टेंशन को, अपने दिमाग को चुस्त और दुरुस्त करने के लिए थोड़ा सा मन तरोताजा करना अच्छा होता है सभी के लिए।
2: जी मैं
1: तो
2: पुराने मेलोडी गाने सुन लेती हूँ लता मंगेशकर के, उससे भी मेरा मन बहुत खुश हो जाता है।
1: हाँ, सही कहा आपने, संगीत तो साधना है ही, और संगीत एक तपस्या है, एक भक्ति है, एक रस है। और देखिए ये जो बातें आपने कही, और अगर कोई आप अपनी पसंद का गीत सुनना चाहती हैं तो आप हमें बताएंगी?
2: जी हाँ, साजन के घर का एक गाना है, वो अगर आप सुना दें तो मुझे अच्छा लगेगा,
1: ठीक है, हम
2: मुझे अच्छे से गाने आते।
1: आपको साजन के घर फिल्म का ये गाना जरूर सुनवाएंगे। आपने हमें कॉल किया, हमें बहुत अच्छा लगा, और चलते चलते आपसे यही कहेंगे कि हर पल में प्यार है, हर लम्हे में खुशी, कह दो तो यादें हैं, जी लो तो जिंदगी। नमस्कार।
2: जी नमस्कार।

0: हेलो।
1: हाँ,
0: नमस्कार, गृह लक्ष्मी के फोन इन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका क्या नाम है सखी
1: जी हमारा नाम स्वाति है।
0: स्वाति कहाँ से बात कर रही हैं?
1: जी हम बनारस के सिगरा क्षेत्र से बात कर रहे हैं।
0: स्वाति जी, तो आप मुझे ये बताएं और मेरी सखियों को भी बताएं कि आप क्या करती हैं।
1: जी हम एक हाउसवाइफ हैं।
0: हाउसवाइफ हैं, यानी बहुत ढेर सारा काम होता होगा ना आपको।
1: जी जी
0: काम तो हर महिलाओं को होता है। मुझे ये बताइए कि हम सब अपनी लाइफ में कभी बहुत खुश रहते हैं, लेकिन कभी कभी अनजाने में ही बहुत ज्यादा तनाव ले लेते हैं और बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं या बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन खुश रहना एक अच्छी बात है, तो आप जब कभी परेशान होती हैं तो खुश रहने के कौन से तरीके अपनाती हैं?
1: जब मैं परेशान रहती हूँ या मुझे कुछ रहता है तो मैं फिर गार्डनिंग कर लेती हूँ। थोड़ा समय पौधों के साथ बिताती हूँ।
0: अच्छा, और क्या करती हैं आप?
1: और अपने जैसे फ्रेंड्स के साथ थोड़ी बातें कर लेती हूँ। उनके साथ बातें करके तो अपने पुराने जीवन में जो कॉलेज लाइफ होती है उसमें हम लोग थोड़ी गपशप कर लेते हैं, तो उससे कुछ पल के लिए तनाव दूर हो जाता है।
0: अच्छा लगता है अपने बचपन की सखियों से बात करना, बहुत ही अच्छा लगता है। और इसके साथ ही आप और कोई अपनी ऐसी मेमोरी बताएं, कुछ ऐसी याद बताएं जब आप बहुत परेशान हुई हो और कुछ ऐसा ट्रिक अपनाने से आप पल भर में खुश हो गई हो।
1: मैं एक बार ऐसे ही हेल्थ इश्यू की वजह से थोड़ी परेशान थी। बहुत खुशी तो नहीं लेकिन थोड़ा सा रिलीफ मिल गया मुझे काफी हद तक। मतलब जैसे मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया।
0: अच्छा।
1: और थोड़ा समय अपने लिए दिया। सुबह जल्दी उठ करके जो है थोड़ा सा मेडिटेशन किया, टहलना शुरू किया। तो सुबह सुबह जब आप टहलिए और उसमें कोयल वगैरह बोलता है तो उसमें मन शांत हो जाता है, अच्छा लगता है।
0: जी, ये तो बहुत अच्छा है और योगा हमेशा करना भी चाहिए, है ना?
1: जी, वो योगा कर तो हर किसी को करना चाहिए, अपने लिए तो कम से कम आधा घंटा देना ही चाहिए।
0: जी, तो आप हमारी सखियों को क्या संदेश देना चाहेंगी कि लाइफ में परेशानी तो सभी के साथ है, लेकिन खुश रहना ज्यादा अच्छी बात है।
1: अब सही बात है, लाइफ में तो सबके साथ स्ट्रेस है लेकिन

0: जीवन में छोटी छोटी चीजें करके भी आप खुश रह सकते हैं। जैसे किसी को खाना बनाना पसंद है तो आप अपने मन पसंदीदा फूड बना सकते हैं, गार्डनिंग कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, या अपने जिनको साथ आप बात करने में अच्छा महसूस करते हैं आप उनके साथ थोड़ी देर बातें कर सकते हैं, मैगजीन पढ़ सकते हैं।
1: चलिए, तो आज आपको हमसे बात करके कैसा लग रहा
0: अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है।
1: है? बहुत खुशी मिल रही होगी, है ना? तो चलिए,
0: जी,
1: हम भी खुश रहते हैं और हम अपनी सभी सखियों से स्वाति की तरफ से कहते हैं कि आप भी बहुत बहुत खुश रहिए। स्वाति, आपको नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: हेलो सखी, क्या नाम है आपका?
3: मेरा नाम जयती है, मैं बनारस के चांदमारी से बोल रही हूँ।
2: जयती, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस आज के फोन इन कार्यक्रम में, जिसमें आज का विषय है, जैसा कि आपको पता ही होगा, कि खुश रहने के अनोखे तरीके कौन कौन से हैं। तो जयती, आप ये बताइए कि हम सभी जानते हैं ना कि हम महिलाओं का जो जीवन होता है वो बहुत सारे उतार चढ़ाव से भरा होता है। कई बार तो हम बहुत खुश होते हैं, लेकिन कई बार ना बहुत दुख भी होता है, और दुख भी ना बिना मतलब का होता है, बिना कारण का भी होता है। तो आप जब, सबसे पहले बताइए कि आप जब स्ट्रेस में होती हैं या परेशान होती हैं तो आप क्या ऐसा करती हैं कि आपका स्ट्रेस दूर हो जाए, आपकी परेशानी दूर हो जाए?
3: सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि मुझे खुशी बहुत है कि मैं आज आपसे बात कर रही हूँ, क्योंकि कई बार मैंने कोशिश की कि मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंच सकूं, पर चलिए कोई नहीं, इस बार मुझे मौका मिला है तो मुझे खुशी हो रही है। हाँ, जहां तक आपका विषय है, मैं आपको बताऊं कि खुशी एक ऐसी चीज़ है जो हम सबको सीखनी चाहिए, हम कैसे खुश रहें। कई बार, जैसे आपने कहा ये कि कई बार हम बिना वजह भी दुखी हो जाते हैं, खुश रहने के लिए आपको मौकों की ज़रूरत नहीं होती। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे सबसे अच्छा लगता है, कभी अगर मैं बहुत उदास हूं या मुझे लगता है कि कुछ ठीक नहीं हुआ, तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपने कमरे में या मैं अपने छत पर थोड़ी गार्डनिंग कर लूं। बागवानी का मुझे शौक, पहले मुझे ऐसा नहीं पता था कि मुझे शौक है, लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि मुझे करते हुए अच्छा लगता।
2: अच्छा, ऐसा भी होता है ना कि बहुत सारी बहनों को यही नहीं पता रहता कि उन्हें किस चीज़ का शौक है, और वो बस अपने कार्य करती जाती हैं करती जाती हैं। तो आखिर ये कैसे आपको पता चला कि मुझे बागवानी का शौक है?
3: देखिए, वैसे तो ये सही है, हम सबकी दिनचर्या बहुत व्यस्त होती है, और महिलाओं की तो खास करके, लेकिन मुझे समझ में आया जब बेटा मेरा 12th पास करके गया तो मेरे पास थोड़ा सा टाइम बचा, क्योंकि बच्चों के साथ आप बहुत व्यस्त रहते हैं। फिर मुझे लगा कि मैं, जैसे मेरी अपनी मदर को मैंने देखा था, वो बागवानी करती थी, फिर धीरे धीरे जैसे कभी मैं बाजार गई तो मुझे कुछ पौधे अच्छे लगे तो मैं उन्हें लेकर के आई, और अब वो मेरी एक डेली रूटीन में आ गया है।
2: अच्छा, तो उसमें आप अनोखापन कैसे लेकर आती हैं?
3: देखिए, एक तो मैंने समय बांधा उसके लिए, दूसरा मुझे अपने घर में ग्रीनरी देख करके बहुत खुशी होती है, तो वो एक अलग ही फीलिंग होती है। जैसे आप अपने घर में किसी जानवर को रखते हैं, जितना जिनको पौधों से प्यार है उनसे आप पूछिए कि उन्हें कितना अच्छा लगता है अगर चार पत्तियों में दो पत्तियां और ऐड हो जाए तो।
2: चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है। और देखिए, वैसे भी पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए बहुत आवश्यक है कि हम सभी पेड़ पौधे लगाएं। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। अब जयती, आपकी पसंद का अगर कोई गीत हो तो बताइए हमें,
3: अगर संभव हो तो आप मुझे अभिमान पिक्चर का एक गाना सुना दें।

0: हर पल में प्यार है हर लम्हे में खुशी, हर पल में प्यार है हर लम्हे में खुशी, कह दो तो यादें हैं, जी लो तो जिंदगी, इसी का नाम जिंदगी है।
1: क्या
0: है ना
1: बात
0: सुरेखा
1: है,
0: जी?
1: क्या बात है।
0: और देखिए, हमने तो सखियों से बातें कर ली, उनसे पूछ लिया कि उन्हें कौन सा ऐसा कार्य है, क्या करने में उन्हें दिली खुशी मिलती है। भाई मुझे तो अच्छे अच्छे मीठे मीठे गाने हो तो मुझे बहुत खुशी होती है।
1: अच्छा?
0: और उससे बढ़कर मुझे कहीं आनंद नहीं मिलता। और अगर आपसे पूछे आपको कैसे खुशी मिलती है तो आप क्या कहेंगी?
1: सखियों, मैं आपको एक राज की बात बताती हूँ। पता
0: बताइए
1: है
0: बताइए
1: क्या है शीला? देखो, हम सभी कामकाजी महिलाओं के साथ साथ घर परिवार भी संभालते हैं, तो काम का अपना स्ट्रेस तो अपने काम के स्थान पे होता ही है, लेकिन जब घर में भी कभी कभी तनाव हो जाता है और पति से झगड़ा हो जाता है ना, तो पता है हर घर में होता है सखियों, ये भी आप जान रही होंगी। लेकिन जब उस झगड़े का निपटारा जो है बच्चे कराते हैं ना, बच्चे जब सेतु का काम करते हैं और पैचअप कराते हैं मम्मी पापा का, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है कि चलो बच्चे भी इस लायक हो गए हैं। और बच्चे आजकल के तो बहुत ही ज्यादा समझदार हैं, है ना।
0: हाँ।
1: और ऐसे ही देखो शीला, खुशी तो बहुत सारी चीजों में मिलती है, और खुशी असल में ढूंढनी पड़ती है।
0: हाँ।
1: है ना, तनाव हमेशा होता है काम की अधिकता के कारण, और कई बार विचार आपस में ना मिलें तो भी तनाव होता है, लेकिन उन्हीं सब परिस्थितियों में हमें सबके साथ मिलजुल कर रहना पड़ता है, इसी का नाम जिंदगी है।
0: सही कहा आपने। देखिए, जीवन है तो खुशियाँ भी हैं, गम भी हैं, लेकिन इस जिंदगी जीवन को जीना है, चलते रहना है, और उन छोटी छोटी खुशियों में खुद को तलाशना है कि हम मतलब जैसे कहते हैं ना कि धूप और छांव की तरह है,
1: और
0: जैसे
1: एक,
0: खुशी
1: एक,
0: है तो
1: एक,
0: गम भी है, गम
1: एक,
0: है तो खुशी भी है।
1: बिल्कुल एक और तरीका है जिससे बहने खुश रह सकती
0: क्या?
1: हैं। पहनों का मन लगता है, अपने घर को खूब अच्छे से सजाइए संवारिए, और जब कोई भी बहुत तनाव में हो ना, तो अपने घर का पूरा एंगल चेंज कर दीजिए।

0: वो फे को कहीं और कर दीजिए, बेड को कहीं और कर दीजिए, और देखिए घर जब बिल्कुल चेंज लगेगा, लुक बिल्कुल बदला बदला सा लगेगा, तो आपको बहुत खुशी होगी।
1: हाँ, और दोपहर के समय अगर सुकून से थोड़ा रहना है ना, तो पर्दे लगा दीजिए, खिड़कियाँ बंद कर दीजिए, कमरे को अंधेरा कर लीजिए, और कमरे को एकदम ठंडा करके कूलर या एसी जो भी आप चलाती हैं उस पर कूलिंग करके देखिए दोपहर में लेटिए, और हल्का सा गाना चला दीजिए, तो कितनी खुशी मिलती है उससे भी।
0: सही है। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं खुश रहने के। तो चलो शीला, हम सभी तो खुश रहते ही हैं और रहेंगे। सखियों, आपसे भी कहते हैं हमेशा खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, और घड़ी की सुई हमें इशारा कर रही है कि हमें चलना चाहिए। तो हमें दीजिए इजाजत, अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: सखियों के साथ, सखियों के बाद, सखियों के जज्बात, गृह लक्ष्मी।
3: अभी महिलाएं सुन रहे थे अपना कार्यक्रम गृह लक्ष्मी, मीडियम वेव 241.5 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। दिन के 1:45 हुए हैं। आए सुनते हैं लोक संगीत का कार्यक्रम, और आज के कलाकार हैं डॉक्टर माधवी सिंह। इनके स्वर में पहले सुनिए ये पूर्वी।

लोक संगीत के कार्यक्रम में आज की कलाकार थी डॉक्टर माधवी सिंह। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR, DTH DRM 1233 किलोहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। दिन का 2 बजने को है। कुछ क्षणों में आप सुनेंगे समाचार जिसे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: and diesel from retail pumps. United Nations condemns attacks on oil ships carrying Indian sailors off the coast of Oman. Indian shooting legend and coach Jaswal Rana dies at 49. And in FIFA World Cup 2026, Canada to take on Bosnia-Herzegovina in Group B clash in Toronto. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से उद्योगों के ईंधन खरीदने पर रोक लगाई। संयुक्त राष्ट्र ने ओमान तट के पास भारतीय नाविकों को ले जा रहे तेल टैंकरों पर हुए हमलों की निंदा की। दिग्गज निशानेबाज और प्रशिक्षक जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन। और टोरंटो में फीफा विश्व कप में ग्रुप बी के मुकाबले में कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना होंगे आमने सामने। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, हेल्थ केयर, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और गवर्नेंस तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं और पूरे देश में विकास परिदृश्य बदल रहा है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य किया है, जिसके सकारात्मक परिणाम विभिन्न क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह को सक्रिय सहयोग देकर महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की नीतियाँ सम्मान, अवसर और सशक्तिकरण के सिद्धांतों पर आधारित है। इन प्रयासों से अब महिलाएं अपनी क्षमताओं को पहचानते हुए राष्ट्र निर्माण में अधिक प्रभावी भूमिका निभा रही है। श्री मोदी ने विज्ञान, अंतरिक्ष और नवाचार जैसे क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं की बढ़ती उपलब्धियों की सराहना की। एक संस्कृत श्लोक का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नारी शक्ति राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि देश की माताएं, बहनें और बेटियां हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर भारत का गौरव बढ़ा रही है। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री ने राज्य के पुनर्निर्माण और इसे विकसित राज्य बनाने का संकल्प लिया है। श्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य में अब डबल इंजन सरकार है, अब पश्चिम बंगाल को भी अन्य राज्यों की तरह केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के महानिदेशक उपस्थित थे। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को समाप्त होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन के दौरे पर देहरादून पहुंची। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति आज देहरादून स्थित राष्ट्रपति निकेतन का दौरा करेंगी और 132 एकड़ क्षेत्र में बन रहे राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 जून से फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरे पर रहेंगे। 2014 के बाद से ये प्रधानमंत्री का फ्रांस का 7वां आधिकारिक दौरा है। फ्रांस के नीस शहर में प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। ये भारत का प्रमुख नवाचार सम्मेलन है जो

0: भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंगला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इसका उद्देश्य भारत की डीप टेक प्रतिभाओं को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करना है।
1: काफी अरसे से जो द्विपक्षीय संबंधों में एक फोकस रहा है हमारा, किस तरह से हम इनोवेशन की तरफ ज्यादा फोकस बढ़ाएं, और दोनों देश एक तरह से नॉलेज इकोनॉमीज हैं, दोनों देश सोच रहे हैं कि किस तरह हमारे संबंध हैं इनको और प्रगाढ़ करें हम, और इसी की वजह से हम भारत इनोवेट्स यहाँ उसका आयोजन कर रहे हैं, जो कि पहली बार है कि हमने इतने बड़े पैमाने पे भारत से डीप टेक स्टार्टअप्स बाहर लाके हम एक मंच पे हम रख रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी नीस से स्लोवाकिया जाएंगे और उसके बाद G7 समिट के लिए फ्रांस के एवियन लौटेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत, औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में आज से 2 दिन का ब्रिक्स कृषि मंत्रियों का सम्मेलन शुरू हो गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी प्रतिनिधियों का स्वागत किया। श्री चौहान ने वसुधैव कुटुंबकम की भावना को आगे बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का दृष्टिकोण शांति और सहयोग पर आधारित है। सम्मेलन का विषय है लघु किसानों, महिलाओं और युवाओं के माध्यम से भविष्य के लिए खाद्य सुरक्षा। सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और महिला किसानों की भूमिका जैसे विषयों पर व्यापक चर्चा हो रही है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधिकारियों के साथ प्याज की खरीद को बढ़ाने और किसानों को बेहतर लाभ सुनिश्चित करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने कहा कि खरीद मूल्य को संशोधित करके 1,650 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन, रेडियो और संचार सेवाओं से संबंधित दूरसंचार नियम 2026 का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया है। ये मसौदा पहले के टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के अंतर्गत टेलीविजन और रेडियो सेवाओं के लिए जारी विभिन्न दिशा निर्देशों को नए दूरसंचार अधिनियम 2023 के दायरे में शामिल करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। नए प्रावधान में सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा निजी प्रसारकों के बीच होने वाले ग्रांट ऑफ परमिशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। इससे ये पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका को खारिज कर दिया है। ये याचिका उन्होंने मध्य प्रदेश से अपनी राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के खिलाफ दायर की थी। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वे चुनाव अधिकारी द्वारा नामांकन रद्द किए जाने के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। चुनाव अधिकारी ने तेलंगाना में एक आपराधिक मामले की कथित जानकारी छिपाने के आरोप में मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त कर दिया था। ओडिशा में मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने आज 2 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर भुवनेश्वर में एक संवाददाता सम्मेलन में श्री मांझी ने कहा कि मुख्यमंत्री का पद जनता की सेवा करने का एक पवित्र अवसर है। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पिछले 2 वर्षों में 121 योजनाएं लागू की गई हैं। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रही हैं। ये सम्मेलन स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित किया जा रहा है। राज्य मंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सभी के लिए सम्मानजनक काम, सामाजिक सुरक्षा और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने मध्य एशिया और शंघाई सहयोग संगठन के साथ भारत की दीर्घकालिक साझेदारी के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई है। ताजिकिस्तान के दुशांबे में आयोजित SCO सम्मेलन का विषय है मध्य एशिया, SCO का केंद्र, शांति और संयुक्त विकास का क्षेत्र। खाड़ी क्षेत्र में बदलती

0: समुद्री सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रखे है और प्रत्येक भारतीय नाविक की सुरक्षा और कुशलता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने ओमान के तट पर पलाऊ के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले की निंदा की है। इसमें 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि अंतोनियो गुतरश लगातार बढ़ते तनाव को लेकर बहुत चिंतित हैं। वहीं आईएमओ के महासचिव ने कहा है कि वो स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। सरकार ने ऑनलाइन प्रसारित हो रहे एक फर्जी वीडियो का खंडन किया है, जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन को एक निवेश प्लेटफॉर्म का प्रचार करते हुए दिखाया गया है। वीडियो में 22,000 रुपए के निवेश पर प्रतिदिन 80,000 रुपए और प्रतिमाह 24 लाख रुपए तक के रिटर्न का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि ये वीडियो पूरी तरह फर्जी है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की परीक्षा अवधि को 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दिया है। ये परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगी। एजेंसी ने कहा कि एनटीए ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि नीट यूजी परीक्षा निष्पक्ष, सुरक्षित और उम्मीदवारों की आवश्यकताओं के अनुरूप आयोजित की जाए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: संशोधित परीक्षा अवधि में अनिवार्य परीक्षा औपचारिकताओं के लिए आवश्यक समय शामिल है। एजेंसी ने कहा है कि ये सुधार पिछले कई वर्षों में उम्मीदवारों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर किए गए हैं। इसके अलावा एजेंसी ने प्रश्न पत्र पुस्तिका के साथ दिए जाने वाली रफ शीट को 2 प्रश्न से बढ़ाकर 4 कर दिया है। पुराने लेआउट के असुविधाजनक होने की प्रतिक्रिया के बाद कुछ छात्रों, विशेषकर बाएं हाथ से लिखने वाले छात्रों के लिए यह सुधार किया गया है। एनटीए ने कहा कि परीक्षा डिजाइन में छोटे छोटे सुधार भी एक महत्वपूर्ण परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों के अनुभव पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए निष्पक्षता और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और उम्मीदवार अनुकूल बनाने के उद्देश्य से ये उपाय लागू किए गए हैं। इसके साथ ही उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़े और परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए परीक्षा कर्मचारियों के साथ सहयोग करे। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दिग्गज निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का कल रात निधन हो गया। वे 49 वर्ष के थे। जसपाल राणा भारतीय पिस्टल निशानेबाजों के प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि जसपाल राणा ने एक चैंपियन एथलीट और असाधारण मार्गदर्शक के रूप में राष्ट्र के लिए जो योगदान दिया वो प्रेरणादायक है। और अब खेल खबरों के साथ हैं जया भारती।
2: फीफा वर्ल्ड कप में दक्षिण कोरिया ने चेक गणराज्य को 2-1 से हरा दिया है। मैक्सिको के जापोपान में खेले गए रोमांचक ग्रुप ए मुकाबले में दक्षिण कोरिया ने जीत के साथ महत्वपूर्ण 3 अंक हासिल किए। दक्षिण कोरिया का अगला मुकाबला सह मेजबान मैक्सिको से होगा, जबकि चेक गणराज्य ग्रुप ए के दूसरे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका का सामना करेगा। इससे पहले मैक्सिको सिटी में खेले गए उद्घाटन मैच में मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया था। आज ग्रुप बी के मैच में सह मेजबान कनाडा का सामना बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। दोनों देश विश्व कप में पहली बार आमने सामने होंगे। इसके बाद ग्रुप चरण के मुकाबले में कनाडा का सामना कतर और स्विट्जरलैंड से होगा। एक महीने तक चलने वाले फीफा विश्व कप 2026 का भव्य उद्घाटन कल रात मैक्सिको सिटी में हुआ। रंगारंग उद्घाटन समारोह में शकीरा और बर्ना बॉय ने टूर्नामेंट के आधिकारिक गीत दाई दाई से समा बांधा। उधर पीवी सिंधु ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। तीसरी वरीयता प्राप्त सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की चेन सू यू को 21-6, 21-9 से हराया। सिंधु का अगला मुकाबला सेमीफाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त जापान की अकाने यामागुची से होगा। यामागुची ने क्वार्टर फाइनल में आज भारत की तन्वी शर्मा को 21-14, 21-14 से शिकस्त दी।
0: और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास करा।

0: आने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से उद्योगों के ईंधन खरीदने पर रोक लगाई। संयुक्त राष्ट्र ने ओमान तट के पास भारतीय नाविकों को ले जा रहे तेल टैंकरों पर हुए हमलों की निंदा की। दिग्गज निशानेबाज और प्रशिक्षक जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 241.54 मीटर पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम एक ही कलाकार, और आज के कलाकार हैं पार्श्व गायक एसपी बाल सुब्रमण्यम।
2: नमस्कार श्रोताओं, एक ही कलाकार कार्यक्रम लेकर एक बार फिर हाजिर हूँ मैं, आपकी रेडियो दोस्त पूजा। दोस्तों, आज एक ही कलाकार में हम जिस कलाकार की बात कर रहे हैं उनके नाम के आगे लेजेंड शब्द भी छोटा पड़ता है। जी हाँ, 40,000 से ज्यादा गाने, 16 भाषाएं और एक ऐसी आवाज जिसमें शरारत भी थी और रूहानियत भी। हम याद कर रहे हैं एसपी बाला सुब्रमण्यम सर को, जिन्हें हम प्यार से बालू कहते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं उन्होंने एक ही दिन में 21 गाने रिकॉर्ड करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। वो इंसान नहीं, सुरों की मशीन थे। चलिए आज के कार्यक्रम में शुरुआत करते हैं उनकी उस मखमली आवाज के साथ जिसने 90 के दशक में हर प्रेमी के दिल की धड़कन बढ़ा दी थी। सुनिए ये खूबसूरत नगमा।

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार और आज बात हो रही है एसपीबी सर की। दोस्तों, क्या आपको याद है जब मैंने प्यार किया फिल्म आई थी? पर्दे पर सलमान खान थे, लेकिन जब वो गाते थे तो लगता था कि ये आवाज सलमान खान की ही है। एसपीबी सर ने सलमान खान के लिए जो प्लेबैक दिया, उसने बॉलीवुड का चेहरा ही बदल दिया। चाहे वो दीदी तेरा देवर दीवाना हो या आते जाते हंसते गाते। मजे की बात ये है कि एसपीबी सर दक्षिण भारत से थे, लेकिन उनकी हिंदी डिक्शन और उच्चारण इतना साफ था कि बड़े बड़े दिग्गज दंग रह जाते थे। उनकी आवाज में वो इनोसेंस थी जो सीधे दिल के पार जाती थी। चलिए एक और ऐसा ही गाना सुनते हैं जो आज भी हर महफिल की जान है।

दोस्तों, आज का ये सफर उस आवाज के नाम जिसने महलों से लेकर झोपड़ियों तक और कॉलेज के गलियारों से लेकर टूटे दिलों तक हर जगह अपनी जगह बनाई, एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने सिर्फ गाया नहीं बल्कि हर शब्द को जिया। आज हम बात कर रहे हैं एक ही कलाकार में संगीत के बाहुबली एसपी बाला सुब्रमण्यम साहब की। लोग उन्हें प्यार से बालू कहते थे, लेकिन उनके हुनर का कद इतना बड़ा था कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी उनके आगे छोटा पड़ जाए। दोस्तों, बालू सर के बारे में एक बात मशहूर थी कि वो रिकॉर्डिंग से पहले कभी रियाज नहीं करते थे, वो सीधे माइक पर जादू करते थे। उन्हें संगीत का कैमलेयन कहा जाता था क्योंकि वो हर एक्टर की आवाज के हिसाब से अपनी टोन बदल लेते थे। आज एक ही कलाकार के इस सफर में हम उनकी सादगी, उनके संघर्ष और उनके उस मैजिकल टच को याद करेंगे जिसने हमारे बचपन को सुरीला बनाया। चलिए सुनते हैं वो गाना जिसने बॉलीवुड में तहलका मचा दिया था।

दोस्तों, क्या आप जानते हैं एसपीपी सर ने फिल्म एक दूजे के लिए गाने गाए थे, जिसके लिए उन्हें नेशनल अवार्ड मिला। मजे की बात यह है कि जब वो हिंदी गानों की रिकॉर्डिंग के लिए आए तो उन्हें हिंदी ठीक से नहीं आती थी। संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल थोड़े डरे हुए थे, लेकिन जब बालू सर ने माइक पकड़ा तो जो जादू बिखरा उसने इतिहास रच दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने एक ही दिन में 21 कन्नड़ गाने गाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। उनकी सादगी ऐसी थी कि इतने बड़े सुपरस्टार होने के बाद भी वो हर रिकॉर्डिंग से पहले नर्वस होते थे, जैसे उनकी पहली रिकॉर्डिंग हो। चलिए उनकी वर्सिटैलिटी को सलाम करते हैं इस बेहद रोमांटिक ट्रैक के साथ।

वक्त पंख लगाकर उड़ जाता है, खासकर तब जब हम एसपी बाला सुब्रमण्यम जैसे लीजेंड की बात कर रहे हो। एक ही कलाकार का आज का ये एपिसोड अब खत्म होने को है, लेकिन बालू सर की आवाज कभी खत्म नहीं होगी। 2020 में वो हमें छोड़कर चले गए, लेकिन मैंने प्यार किया से लेकर चेन्नई एक्सप्रेस तक उनकी आवाज आज भी हमारे कानों में मिश्री खोलती है। वो कहते थे, संगीत ही मेरी ऑक्सीजन है, और आज उनका संगीत हमारे लिए ऑक्सीजन का काम

कर रहा है। जाते जाते बस इतना ही कहूंगी दोस्तों, कलाकार मरता है, कला नहीं। आज घर जाते वक्त या ऑफिस में काम करते वक्त उनका एक गाना जरूर गुनगुनाइएगा। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त पूजा, फिर मिलूंगी एक और महान कलाकार की कहानी के साथ फिर कभी। फिलहाल अभी छोड़ जाती हूं आपको इस हाई एनर्जी गाने के साथ जो आपको झूमने पर मजबूर कर देगा। नमस्कार।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार, और आज के कलाकार थे पार्श्व गायक एसपी पाल सुब्रमण्यम। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR, DTH, DRM 1233 किलोहर्ट्स, वेव्स OTT पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। दिन के 3 बजे हैं, संपन्न हो रही है आज की हमारी पहली सभा। शाम 5 बजे दूसरी सभा आरंभ होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए।

मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं, आरंभ होती है हमारी आज की सायंकालीन सभा। सभा के आरंभ में प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

कभी खुशी कभी गम इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाज़ों में। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म सुर से। निदा फाजली के बोल हैं और एमएम क्रीम का संगीत, आवाज़ महालक्ष्मी अय्यर की।

महालक्ष्मी अय्यर की आवाज में आप सुन रहे थे सुर फिल्म का गीत। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव के मीटर पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। अब युवा साथी सुने अपना कार्यक्रम युववाणी।

0: किसी के हिस्से काम का हिसाब।
1: बचपन तो होना चाहिए सपनों, शरारतों और मुस्कानों का नाम, फिर क्यों कुछ नन्हे कंधों पर आ जाता है जिम्मेदारियों का भार तमाम।
0: दोस्तों, इन्हीं पंक्तियों के साथ आगाज करते हैं आप सबके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी का। मैं हूँ आपकी रेडियो साथी दिव्या
1: और मैं हूँ शुभ्रा।
0: आप सबको हमारा नमस्कार।

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

0: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
1: हमारी जनगणना हमारा विकास।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

0: सुनो ना,
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है, हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगू।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो,
2: 0542227658।
3: 0542227658।
0: लो अभी फोन लगाता हूँ।
3: 0542227658।
4: दोस्तों जब हम बचपन शब्द सुनते हैं तो सबसे पहले क्या याद आता है? खेल का मैदान, दोस्तों की टोली, स्कूल की घंटी और ढेर सारे सपने।
5: बिल्कुल शुभ्रा, लेकिन अफसोस की बात है कि दुनिया में ऐसे लाखों बच्चे भी हैं जिनके हिस्से में ना खेल का मैदान आता है और ना ही स्कूल की घंटी। उनके हाथों में खिलौनों की जगह काम के औजार होते हैं।
4: सच कहा दिव्या, जिस उम्र में बच्चों को अपनी कॉपी पर रंग बिरंगे अक्षर लिखने चाहिए उसी कम उम्र में कई बच्चे जीवन की कठोर परिस्थितियों से जूझ रहे होते हैं, और यही चिंता हमें आज के विषय की ओर ले जाती है, यानी विश्व बाल श्रम निषेध दिवस।
5: दोस्तों हर वर्ष ये दिन 12 जून को मनाया जाता है, लेकिन ये सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि एक सवाल है जो हम सबके सामने खड़ा होता है। क्या हमारे समाज का हर बच्चा अपने बचपन को जी पा रहा है?
4: क्योंकि बचपन केवल उम्र का एक पड़ाव नहीं है दोस्तों, ये वो समय है जब सपने जन्म लेते हैं, प्रतिभाएं निखरती हैं और भविष्य की नींव रखी जाती है।
5: लेकिन जब कोई बच्चा मजदूरी करने को मजबूर हो जाता है तो उसका वर्तमान ही नहीं बल्कि उसका भविष्य भी प्रभावित होता है।
4: और किसी ने बड़े सूफियाना अंदाज में लिखा था कि बचपन से मिला ना कोई तिनका भी सुकून का, खिलौनों की उम्र में जो कमाने निकल पड़े।
5: हमारे कई युवा दोस्त ये भी सोच रहे होंगे कि आखिर इस बाल श्रम विरोधी दिवस की शुरुआत कब और कैसे हुई, इसका ओरिजिन क्या है?
4: बिल्कुल दिव्या, दरअसल ये बात है साल 2002 की। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी ILO ने दुनिया का ध्यान इस तरफ खींचने के लिए हर साल 12 जून को विश्व बाल श्रम विरोधी दिवस यानी वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर के रूप में मनाने की शुरुआत की थी।
5: अच्छा, यानी करीब 2 दशक से ज्यादा का वक्त हो गया है। लेकिन शुभ्रा, इस दिन को मनाने का सबसे मुख्य मकसद क्या था? क्या सिर्फ ये एक दिन की छुट्टी है या फिर अवेयरनेस?
4: नहीं दिव्या, इसका मकसद बहुत गहरा है। हर साल इसकी एक खास थीम तय की जाती है जो हमें एक नया नजरिया देती है। इस दिन का सबसे बड़ा लक्ष्य यह है कि दुनिया भर की सरकारें, संस्थाएं और हम जैसे अनेकों युवा मिलकर एक ऐसा माहौल बनाएं जहां किसी भी बच्चे को अपनी बुनियादी शिक्षा से समझौता ना करना पड़े।
5: बिल्कुल, और इसमें सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? इस दिन का फोकस सिर्फ बच्चों को काम से हटाना नहीं है बल्कि उन्हें क्वालिटी एजुकेशन और सामाजिक सुरक्षा भी देना है। दोस्तों
4: बचपन जीवन का सबसे सुंदर मौसम माना जाता है। ये वो समय होता है जब बच्चे खेलते हैं, सीखते हैं, सपने देखते हैं और अपने भविष्य की नींव भी रखते हैं।
5: लेकिन सोचिए, जब यही बचपन जिम्मेदारियों के बोझ तले दब जाए तो कितने सपने अधूरे रह जाते होंगे।
4: और इस समस्या को समाप्त करने के लिए दोस्तों दुनिया भर में जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस हमें यह याद दिलाता है कि हर बच्चे को शिक्षा, सुरक्षा और सम्मानपूर्ण जीवन जीने का अधिकार है।
5: भारत में भी बाल श्रम को रोकने के लिए कई कानून बनाए गए हैं। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से अधिकांश प्रकार के कार्य कराना कानूनन अपराध है। इसके साथ ही बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए भी अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं।
4: बिल्कुल सही दिव्या, यानी 12 जून सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है, यह एक रिमाइंडर है हम सबके लिए कि हम अपने आसपास के बच्चों के सपनों को पंख देने में छोटा सा ही सही लेकिन अपना एक योगदान जरूर दें।
5: कितनी अच्छी बात कही शिप्रा। तो दोस्तों आज बाल श्रम विरोधी दिवस के इस मौके पर क्यों ना

सब ये संकल्प लें कि हम अपने आसपास शिक्षा की रोशनी फैलाने में मदद करेंगे। तो चलिए इसी ज्ञान और सकारात्मकता के साथ युववाणी के सफर को आगे बढ़ाते हैं इस गीत के साथ।

0: दोस्तों, आज हम सीने दर्पण में एक ऐसे चमकते सितारे के बारे में बात करने वाले हैं जो अब हमारे बीच तो नहीं है, लेकिन उनका नाम आज भी हमारे बीच जीवित है और उनका नाम है नूतन। तो चलिए आज उनके बारे में जानते हैं। हिंदी सिनेमा का इतिहास कई ऐसे कलाकारों से सजा है जिनकी लोकप्रियता सिर्फ उनकी फिल्मों तक सीमित नहीं रही, बल्कि एक दौर की पहचान बन गई।
1: दोस्तों, सिनेमा सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं बल्कि समाज का आईना भी है, और इस आईने को चमकाने वाले होते हैं वो कलाकार जो अपने अभिनय से किरदारों में जान डाल देते हैं।
0: आज हम ऐसे ही एक कलाकार के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हिंदी सिनेमा के इतिहास में एक ऐसा नाम है जिसने अपनी अदाकारी, स्टाइल और ऊर्जा से कई पीढ़ियों को प्रभावित किया है।
1: जी हाँ, आज के हमारे सिने दर्पण के सितारे हैं नूतन, जो हिंदी सिनेमा की सबसे महान और प्रतिभाशाली अभिनेत्रियों में से एक थी। उनका पूरा नाम नूतन समर्थ बहल था। उनका जन्म 4 जून 1936 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता कुमार सेन समर्थ एक फिल्म निर्देशक थे और उनकी माता शोभना समर्थ प्रसिद्ध अभिनेत्री थी।
0: फिल्मी माहौल में पली बड़ी नूतन बचपन से ही कला और अभिनय के करीब रही। उनके परिवार में उनकी छोटी बहन तनुजा भी बाद में एक प्रसिद्ध अभिनेत्री बनी। नूतन का स्वभाव बहुत सरल, शांत और अनुशासित।

0: था। उनकी सुंदरता के साथ साथ उनकी अभिनय प्रतिभा ने उन्हें लाखों लोगों का प्रिय बना दिया था।
1: नूतन की प्रारंभिक शिक्षा मुंबई में हुई, बाद में उन्होंने बेंगलुरु के बाल्डविन गर्ल्स हाई स्कूल में पढ़ाई की। पढ़ाई के साथ उन्हें संगीत, खेल और नृत्य में भी रुचि थी। वे तैराकी, घुड़सवारी और बैडमिंटन जैसी गतिविधियों में भी भाग लेती थीं।
0: नूतन ने शास्त्रीय संगीत का प्रशिक्षण भी लिया था और उनकी आवाज बहुत मधुर थी। कुछ समय के लिए वो आगे की पढ़ाई के लिए स्विट्जरलैंड भी गई थी। शिक्षा और संस्कारों ने उनके व्यक्तित्व को और भी प्रभावशाली बनाया था।
1: उनका व्यक्तित्व बेहद सादा था और वे ग्लैमर से अधिक अपनी कला और अभिनय के लिए जानी जाती थीं। उनकी मुस्कान, मासूम चेहरा और स्वाभाविक अभिनय दर्शकों को बहुत पसंद आता था।
0: नूतन ने अपने पहले फिल्मी करियर की शुरुआत मात्र 14 वर्ष की आयु में फिल्म हमारी बेटी, जो 1950 में आई थी, उससे की थी, जिसका निर्देशन उनकी माँ शोभना समर्थ ने किया था।

इसके बाद उन्होंने नगीना, हम लोग, सीमा, सुजाता, अनाड़ी, छलिया, बंदनी, तेरे घर के सामने, मिलन, सरस्वती चंद्र, अनुराग, सौदागर, मैं तुलसी तेरे आंगन की, मेरी जंग, नाम और कई अन्य फिल्मों में अभिनय किया।

0: लगभग 4 दशकों के अपने लंबे करियर में उन्होंने 80 से ज्यादा फिल्मों में काम किया था।
1: 1955 में आई फिल्म सीमा नूतन के करियर का महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। इस फिल्म में उनके शानदार अभिनय को बहुत सराहा गया और उन्हें पहला फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार मिला।

0: इसके बाद सुजाता, बंदिनी, मिलन और मैं तुलसी तेरे आंगन की जैसी फिल्मों ने उन्हें हिंदी सिनेमा की सबसे बेहतरीन अभिनेत्रियों की श्रेणी में पहुंचा दिया।
1: उनकी अभिनय शैली बहुत स्वाभाविक थी। वो अपने चेहरे के भाव और आंखों के माध्यम से भावनाओं को इतना गहराई से व्यक्त करती थी कि दर्शक उनके किरदार से जुड़ जाते थे। नूतन ने वर्ष 1952 में मात्र 16 वर्ष की आयु में मिस इंडिया का खिताब भी जीता था।
0: यह उपलब्धि उस समय बहुत बड़ी मानी जाती थी। हालांकि उन्होंने मॉडलिंग या सौंदर्य प्रतियोगिताओं के बजाय अभिनय को अपना मुख्य करियर बनाया। फिल्मों में उन्होंने समाज से जुड़े गंभीर विषयों पर आधारित भूमिकाएं निभाई और महिलाओं के मजबूत चरित्रों को पर्दे पर जीवंत किया।
1: नूतन का विवाह 11 अक्टूबर 1959 को नौसेना अधिकारी राजनीश बहल से हुआ था। विवाह के बाद भी उन्होंने अपने अभिनय करियर को सफलतापूर्वक जारी रखा। उस समय ये माना जाता था कि शादी के बाद अभिनेत्रियों का करियर समाप्त हो जाता है, लेकिन नूतन ने इस सोच को बदल दिया।
0: उनका एक पुत्र है मोहनीश बहल, जो बाद में हिंदी फिल्मों और टेलीविजन के प्रसिद्ध अभिनेता बने। नूतन को अपने करियर में अनेक सम्मान प्राप्त हुए। उन्होंने रिकॉर्ड 5 बार फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार जीता और बाद में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री पुरस्कार भी प्राप्त किया।
1: वर्ष 1974 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। वो अपने समय की सबसे ज्यादा सम्मानित अभिनेत्रियों में से एक थीं। नूतन के कुछ प्रसिद्ध संवाद और विचार आज भी लोगों को याद है। हालांकि उनकी फिल्मों में संवादों से ज्यादा उनके अभिनय और भावनात्मक अभिव्यक्ति की चर्चा होती है।
0: उनके किरदार अक्सर सच्चाई, आत्मसम्मान, त्याग और प्रेम का संदेश देते हैं। फिल्म बंदिनी, सुजाता और सीमा में उनके संवाद और अभिनय दर्शकों के दिलों में आज भी बसे हुए हैं। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में नूतन ने चरित्र भूमिकाएं निभानी शुरू कर दी थी।
1: उन्होंने मेरी जंग और नाम जैसी फिल्मों में माँ के किरदार निभाकर भी खूब प्रशंसा प्राप्त की।

0: वर्ष 1990 में उन्हें अपनी बीमारी का पता चला, लेकिन इलाज के बावजूद भी 21 फरवरी 1991 को मुंबई में उनका निधन हो गया। उनके निधन से भारतीय सिनेमा को अपूर्णीय क्षति हुई।
1: नूतन केवल एक अभिनेत्री नहीं थी, बल्कि अभिनय की एक संस्था थी। उन्होंने यह साबित किया कि सच्ची प्रतिभा कभी पुरानी नहीं होती। उनकी फिल्में आज भी देखी जाती हैं और नई पीढ़ी के कलाकार उनके अभिनय से प्रेरणा लेते हैं।
0: उनकी सादगी, गरिमा, मेहनत और उत्कृष्ट अभिनय उन्हें हिंदी सिनेमा के इतिहास में सदैव अमर बनाए रखेंगे। भारतीय फिल्म जगत में नूतन का नाम हमेशा सम्मान और गर्व के साथ लिया जाएगा।

0: दोस्तों, शब्द केवल भाषा को सुंदर नहीं बनाते, बल्कि हमारे विचारों को भी समृद्ध बनाते हैं। तो इसी कड़ी में हमारा आज का हिंदी शब्द है अधोगति, जिसका अर्थ होता है पतन, गिरावट या फिर बुरी स्थिति की ओर बढ़ना। इसके कुछ पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे दुर्गति, विनाश या फिर पराभव। और अगर हम इसका वाक्य प्रयोग करें तो कह सकते हैं कि बुरी आदतें व्यक्ति को अधोगति की ओर ले जाती है। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि शिक्षा के अभाव में व्यक्ति विकास के बजाय अधोगति की राह पर चल पड़ता है।
1: और अब बात करते हैं आज के इंग्लिश वर्ड की। और आज का इंग्लिश वर्ड है लोकेशियस, जिसकी स्पेलिंग है LOQUACIOUS, और इसका अर्थ है बहुत अधिक बोलने वाला या वाचाल। इसके सिनोनिम्स हैं टॉकेटिव या फिर चैटी। और इसका सेंटेंस फॉर्मेशन हम कर सकते हैं कि माई

0: precious friend can make even a long journey feel short. Yeah, Jack become loquacious on his favorite topic.
1: तो दोस्तों अब जान लेते हैं कि इतिहास में आज ही के दिन क्या कुछ खास हुआ था। सबसे पहले 1932 में आज ही के दिन भारत के मशहूर भरतनाट्यम नर्तकी और अभिनेत्री पद्मिनी का जन्म हुआ था।
0: और दोस्तों 1933 में वित्तीय एवं आर्थिक विश्व सम्मेलन का उद्घाटन हुआ जिसमें 66 देशों ने भाग लिया था।
1: साथ ही 1994 में दुनिया के सबसे बड़े ट्विन जेट बोइंग 777 विमान ने अपनी पहली सफल उड़ान भरी थी।
0: और सन 2007 में कनाडा में होने वाले जीव विज्ञान ओलंपियाड में 4 भारतीयों का चयन हुआ था।
1: 2016 में आज ही के दिन साइना नेहवाल ने दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया ओपन खिताब जीता था। और शुभ्रा आगे बढ़ेंगे और इसके बाद अपने दोस्तों को कल के प्रश्न का सही उत्तर बताएंगे, लेकिन दोस्तों उसके लिए थोड़ा सा और इंतजार कर लीजिए, पहले ये गीत सुन लेते हैं।

0: तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको इस गीत के पहले बताया था, अब बारी है हमारे कल के प्रश्न के सही उत्तर और आज के सवाल की। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं हमारे कल के प्रश्न का सही उत्तर।
1: दोस्तों, हमने कल आपसे सवाल किया था कि अहमदाबाद में आयोजित दुनिया की पहली वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है, और इसका सही जवाब है पहला स्थान।
0: और जिन लोगों ने इसका सही उत्तर दिया है उनके नाम है चंदौली से चंदा, प्रवीण चौहान खरगोन मध्य प्रदेश से, ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से, दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना भावना बिंदु गोलू कुसुमबाई बाबू दिव्यांश और सूरज कुमार ढाक से, ग्राम खैगांव तहसील महेश्वर से प्रेमलाल वर्मा, वेदिका वंश, निकेश धर्मेंद्र, मेघा नंदिनी, हर्षिता और ममता बाई वर्मा।
1: और रिंग रोड नर्मदा नगर मध्य प्रदेश से सूरज वर्मा, नीरज शिवम, धीरज चिंता वर्मा, ऋषभ कनक और भावना वर्मा। नेपाल नगर मध्य प्रदेश से प्रभु दयाल शिवदे, शिवा बसंती बाई और गणेश शिवदे। संगीत की नगरी खंडवा से श्याम बाई राय रायकवार।
0: और हमारा आज का सवाल आपसे ये है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन से थे? तो हमारा प्रश्न एक बार फिर से सुनिए, भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? और इसका उत्तर आपको कहाँ देना है ये तो आपको पता ही है। एक बार फिर से आपको याद दिला देते हैं, हमारे इंस्टा आईडी youth AIR वाराणसी या फिर हमारी मेल आईडी youth AIR VNS@gmail.com पर।
1: और दोस्तों, इसी कड़ी में हम हाजिर हैं आपके लिए रोजगार सूचना लेकर। तो आइए जान लेते हैं इसके बारे में। बैंक ऑफ बड़ौदा ने जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट और अन्य 5,000 पदों पर आवेदन जारी किया है, जिसकी शुरुआत 19 मई से हो चुकी है और इसकी अंतिम तिथि 15 जून 2026 है। इसकी न्यूनतम आयु सीमा 20 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष निर्धारित है।
0: बात करें इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी स्ट्रीम में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। और अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट bankofbaroda.bank.in पर विजिट कर सकते हैं।
1: दोस्तों, गर्मी के मौसम में तेज हवाएं चलती हैं, जिन्हें लू कहा जाता है। लू लगने से शरीर का तापमान बहुत बढ़ जाता है और व्यक्ति की तबीयत खराब हो सकती है, इसलिए गर्मी के दिनों में विशेष सावधानी बरतना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल, लू से बचने के लिए सबसे पहले ये ध्यान रखें कि दोपहर के समय, खासकर सुबह 11 बजे से लेकर के शाम 4 बजे तक, बिना जरूरत के घर से बाहर ना निकलें। और अगर बाहर जाना जरूरी है तो सिर को टोपी से, गमछे से या छाते से ढक कर ही निकलें।
1: और हल्के रंग के सूती कपड़े पहनिए, क्योंकि ये शरीर को ठंडा रखने में मदद करते हैं। गर्मी में शरीर से पसीने के रूप में पानी निकलता है, इसलिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीना बहुत आवश्यक है। दोस्तों, दिन भर में बार बार पानी पीते रहें, भले ही आपको प्यास ना लगी हो।
0: नींबू पानी, छाछ, नारियल पानी, बेल का शरबत और ORS जैसे पेय पदार्थ आप शरीर में पानी और ऊर्जा की कमी नहीं होने देते हैं। और जो बहुत ज़्यादा चाय, कॉफ़ी और ठंडे जो होते हैं, जो गैस वाले पदार्थ होते हैं, उसका अगर कोशिश करिए कि सेवन कम हो।
1: और भोजन में ताजे फल और हरी सब्जियां जरूर शामिल करें, जैसे तरबूज, खरबूजा, खीरा और ककड़ी जैसे फल शरीर को ठंडक प्रदान करते हैं। और दोस्तों, बासी या खुले में खाना जो रखा होता है उसको तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए।
0: और खास कर तो बच्चे और बुजुर्ग तो और ज्यादा बीमार होते हैं, तो उनका और ज्यादा ख्याल रखिए क्योंकि उन्हें लू लगने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। अगर किसी व्यक्ति को तेज सिर दर्द, चक्कर आ रहा है या फिर बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, कमजोरी या बुखार जैसा महसूस हो रहा है, तो उसे तुरंत ठंडी जगह पर ले जाकर पानी पिलाना चाहिए और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से भी आप कंसल्ट कर सकते हैं।
1: और लू से बचाव के लिए थोड़ी सी सावधानी और सही खानपान बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अगर हम गर्मी के मौसम में उचित सावधानी बरतें तो अपने और अपने परिवार को लू के खतरे से सुरक्षित रख सकते हैं।
0: और फिलहाल अब समय है अपने आज के कार्यक्रम के आखिरी गीत का।

0: तो दोस्तों, आप समय की कद्र करते हुए आज के लिए हम आपसे इजाजत लेना चाहेंगे और बस इतना ही कहेंगे कि खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और हर रोज ये वाणी ऐसे ही सुनते रहिए। तो आज के लिए दिव्या
1: और शुभ्रा को दीजिए इजाजत।
0: नमस्कार।

युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। इस वक्त स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे भोजपुरी में समाचार जो रिले होंगे हमारे गोरखपुर केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: लेखनीय प्रगति भइल हो। विदेश नीति के जरिया से भारत के वैश्विक नेता के रूप में स्थापित कैले के दिशा में सरकार का उठावल गैल कदमन के लेके प्रस्तुत बा एगो रिपोर्ट।
1: दुनिया भर में भारत के जुड़ाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्य है। नवंबर 2025 में श्रीलंका के पूर्वी तट पर चक्रवात दित्वा टकराया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े होकर भारत ने उन्हें तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। इस बचाव और राहत कार्य में भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना और आपदा प्रतिक्रिया के दलों ने मिलकर काम किया। भारत ने श्रीलंका को हर तरह की मदद दी। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने 264 लोगों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित निकाला और 50 टन सामग्री एयरलिफ्ट की। इसके अलावा वहां फंसे 2500 से ज्यादा भारतीयों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता कोविड महामारी के दौरान देखने को मिली। भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल शुरू की, जो इंसानों को ध्यान में रखकर की गई भारत की कूटनीति का एक बड़ा उदाहरण है। जनवरी 2021 से भारत ने 99 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज सप्लाई की है। इसमें 50 से ज्यादा देशों को तोहफे में दी गई और कोवैक्स पहल के जरिए दी गई डोज शामिल है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्र सरकार खुदरा पेट्रोल पंपन से संस्थागत औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकन के ईंधन खरीदले पर रोक लगा दे रहे हो। सरकार कहले हवे कि इनके अपने जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रन से लेवे के होई। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय एगो अधिसूचना में कहलस कि प्रतिबंध 90 दिन ले लागू रही। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA 21 जून के होखे वाले NEET UG पुनर्परीक्षा के परीक्षा अवधि के 15 मिनट बढ़ा के 195 मिनट कह दिले हो। ये परीक्षा दोपहरिया 2 बजे से संझा 5:15 बजे ले हुई। एगो रिपोर्ट।
1: संशोधित परीक्षा अवधि में अनिवार्य परीक्षा औपचारिकताओं के लिए आवश्यक समय शामिल है। इसके अलावा एजेंसी ने प्रश्न पत्र पुस्तिका के साथ दिए जाने वाली रफ शीट को 2 पृष्ठ से बढ़ाकर 4 कर दिया है। पुराने लेआउट के असुविधाजनक होने की प्रतिक्रिया के बाद कुछ छात्रों, विशेषकर बाएं हाथ से लिखने वाले छात्रों के लिए यह सुधार किया गया है। इसके साथ ही उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यान पूर्वक पढ़े और परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए परीक्षा कर्मचारियों के साथ सहयोग करे। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गोरखपुर के सतही प्रदेश के कई गो पूर्वी जिलन में आज दिन में लोग एक बार फिर से उमस भरल गर्मी महसूस कैले। हालांकि मौसम विभाग एह इलाकन में अजू कुछ जगहिन पर ओहि बिहने कहीं कहीं बरखा आ गरज चमक के साथे बौछार पड़ले क संभावना जतौले हवे। विभाग के ओर से एह दौरान कहीं कहीं बिजली गिरले आ तेज झोंकेदार बेरियो चलले को चेतावनी जारी कैल गैल बा। समाचार पूरा भइल, नमस्कार।
2: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन AIR ऐप पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। शाम के 6:05 हुए हैं। कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत प्रस्तुत है हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष और कल के प्रमुख कार्यक्रमों।

का संक्षिप्त विवरण, पहले आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों पर एक नजर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में उस्ताद गुलाम मुस्तफा खां का गायन आप सुनेंगे आज रात 10:30 पर। विज्ञान पत्रिका कार्यक्रम का प्रसारण होगा रात 10 बजे। इसके अंतर्गत आप सुनेंगे नीरज कुमार शुक्ला की वार्ता हमारे आसपास की अदृश्य तरंगे, साथ ही क्या होते हैं सेमी कंडक्टर्स, इस विषय पर भेंट वार्ता भी सुनवाई जाएगी। गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम अंजुमन आप सुनेंगे रात 9:30 पर।

0: कार्यक्रम अंजुमन आप सुनेंगे रात 9:30 पर। सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर विशेष श्रृंखला का प्रसारण होगा रात 8:10 पर। रात्रि 8 बजे सुगम संगीत के कार्यक्रम में कलाकार होंगी पूनम शर्मा। किसान भाइयों के लिए कृषि जगत कार्यक्रम होगा शाम 6:30 पर, जिसमें धान की उन्नत प्रजातियां विषय पर डॉक्टर जोखन सिंह और सुधीर कुमार श्रीवास्तव की बातचीत सुनवाई जाएगी। साथ ही डॉक्टर माधवी सिंह के गाए लोकगीत भी सुने जा सकेंगे। फिल्म संगीत श्रोता सुन सकेंगे 6:10 पर शाम 7 बजे और 7:31 पर कार्यक्रम रसरंग में। ये थी जानकारी आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की और अब एक नज़र कल प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों पर। संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम होगा रात 10 बजे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनिएगा प्राप्ति पुराणिक का गायन सुबह 7:31 और दोपहर 12:45 पर। खेती की बातें कार्यक्रम में सुबह 6:05 पर कृषि रसायनों के प्रयोग में सावधानियां विषय पर जानकारी देंगे दिनेश कुमार सिंह। भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना आप सुनेंगे सुबह 6:10 पर और विचार बिंदु 6:30 पर। सुबह 6:35 पर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में बदलते मौसम में हमारी दिनचर्या और आहार विहार पर जानकारी देंगे डॉक्टर मधु राणा। श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ सुनिएगा सुबह 6:40 पर। गुड मॉर्निंग बनारस कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 7 बजे और मधुरिमा 8:45 पर। महिलाओं के लिए अंगनैया कार्यक्रम होगा दिन में 1:15 पर, जिसमें फल सब्जियों का संरक्षण कैसे करें इस विषय पर डॉक्टर स्वाति शर्मा से शिखा श्रीवास्तव की बातचीत सुनवाई जाएगी। साथ ही होगा गीत संगीत। गीतांजलि कार्यक्रम आप सुन सकेंगे दिन में 2:30 पर। शाम 5 बजे बच्चे सुनेंगे अपना कार्यक्रम नन्ही दुनिया। युवा साथियों के लिए युववाणी कार्यक्रम होगा शाम 5:15 पर, जिसमें कल के आकर्षण होंगे आज की बात, यूथ जंक्शन, यूथ डायरी, इतिहास में आज का दिन और रोजगार सूचना। किसान भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम कृषि जगत शाम 6:30 पर, जिसमें गर्मी में मधुमक्खियों की देखभाल विषय पर डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव और दिनेश कुमार सिंह की बातचीत सुनवाई जाएगी। साथ ही सुरभि सिंह के गाए लोकगीत भी सुनवाए जाएंगे। इन्हीं के गाए लोकगीत आप सुबह 9:50 और दिन में 1:45 पर भी सुन सकेंगे। स्वर बेला कार्यक्रम में महेंद्रनाथ तिवारी का काव्य पाठ आप सुनेंगे शाम 7:31 पर। रात्रि 8 बजे सुगम संगीत के कार्यक्रम में कलाकार होंगी डॉक्टर रमा सेन। सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर विशेष श्रृंखला का प्रसारण होगा रात 8:10 पर। गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम अंजुमन सुनिएगा रात्रि 9:30 पर। ये थी जानकारी हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष और कल के प्रमुख कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे फिल्म संगीत।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूं।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे?
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो
3: 0542227658।
1: ओ 0542227658।

0: 02-2-7658।
1: लो अभी फोन लगाता हूँ।
0: 054-222-7658।
2: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

अलका याग्निक और बाबुल सुप्रियो की आवाज़ों में आप सुन रहे थे फिल्म चोरी चोरी चुपके चुपके से ये गीत। समीर के बोल थे और अनु मलिक का संगीत। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव के मीटर पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:20 होने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार जो रिले होंगे हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: ओ राम
1: राम
0: राम
1: दीना भैया।
0: सत्तू भैया।
1: अरे कहा कुल हाल चाल हो। धान का बेहन वन डल्ला कि नहीं अभी?
0: सत्तू भैया देखा बेहन तब पड़ गई है भैया। बाकी ए बिरी जो सोचा था ना कुछ खेतन में जो ना छिड़काव विधि से भी जो
1: छिटकवा विधि
0: छिटकवा विधि से भी बोआई कर जाता तो ये जो नई नई तकनीकी निकलल है ना हम सोचे थे कि काहे ना येहू के आजमावल जा हो।
1: भाई देखा तकनीकी यही बदे हुईबे करेला कि भाई ज्यादा से ज्यादा हमनी का उत्पादन ले सकल जा आसान विधि से। कहे का मतलब ये है कि भाई जो तू छिटकवा विधि कहला है ना दीना भैया, देखा अब ना किसान मनई सब लोग ए पैन मने एहू के कह लो कि अपन आधा के लगभग लगभग अपन कुल खेती का आधा खेती ये विधि से करत हूँ। और सबसे बड़ बात यह है कि तनी एमे श्रम कम लगत है
0: हाँ एकदम सही कहला
1: और
0: भैया।
1: श्रम कम से भाई ओमे तनी लागत भी बच जाए।

0: और पैदावार उतने होता, और तरह तरह के मान लो कि हमने के लगे मशीनी यंत्र भी तो हो गई ना, जैसे एगो सीड ड्रिल मशीन करके जोन चलल है, हाँ वो में धान के बिया डाल द अपन ट्रैक्टर चलल जात है, और कहल जाओ कि पंक्ति में हाँ एक भाव बुआ जात है, और ये समझ लगे जैसे हमने को रोपाई होला ना दूरी दूरी पर, वहीं वो जमत है और खूब बढ़िया से सेवा पानी कर देख जिंगने जितनी रोपाई विधि से हमने के धान निकली वहीं छिटको विधि में निकली।
1: सत्तू भैया देखा ये बात एकदम नीमन कहला है, कहीं ना कहीं किसान भाई ये बात के देखा लाभ भी उठावत हुन। और दूसर चीज सत्तू भैया ये कहते हैं कि दिन पर दिन जवन हम देखते हैं कि ये जोत जवन हो खेते के जोताई जवन हो दिन पर दिन बहुत कम मात्रा में भइल जाता है।
0: भाई देख दिन पर दिन काहे न कम मात्रा में हुई, कहल जाओ कि आज से 40 साल 50 साल पहले का जनसंख्या देख ल और अब का जनसंख्या देख ल कितना में अंतर में आ गई ह। तो भाई जब जनसंख्या वृद्धि होई तो जमीन तो भाई जितनी है उतने रहे के है, वो तो भाई जनसंख्या के हिसाब से बढ़े के तो जमीन के है ना, जितनी है उतने उ रही। तो भाई हमने का उतने में अगर कहल जाओ कि उपयोग करे के है उतने जमीन में रहे के है, तो भाई हमने की हाथ में यह है कि अपन जनसंख्या के कम कर जा।
1: देखा कहने हो सत्तू भैया देखा दिन पर दिन ना हम तो ये कहिला कि देखा भाई जितना छोटा परिवार रही ना उतना देखा फायदा हो,
0: बिल्कुल
1: अब जो घरे का गार्जियन रही ओके कम भार पड़ी थोड़ा सा, और कहीं ना कहीं जो सरकार है ना अपन देखबा जहाँ रेलवे स्टेशन है कहीं दर दुकान पे लिखल रही कि कम से कम जनसंख्या।
0: भाई देख जच्चा बच्चा जब कह लो कि अस्पताल में पैदा होता ना तो वहाँ सबसे पहला अक्षर में लिखल है कि छोटा परिवार सुखी परिवार, हम दो हमारे दो हाँ। तो भाई ये कुल स्लोगन जो ना कह जला कि सरकार अपने माध्यम से कुछ कुछ शब्द ऐसन दे ले कि भाई उस आम जनमानस के समझ में आ जाओ कि वो शब्द का क्या मतलब है, और छोटा परिवार रही ना दीना भैया तो देख कहल जाओ कि छोटा परिवार सुखी परिवार तो है ये है, और सबसे बड़ी चीज ई है कि अगर छोटा परिवार है ना तो अगर एगो मनई का सबसे जरूरत वाला पहला अगर चीज देखल जाए तो भाई ओकर स्वास्थ्य है, और स्वास्थ्य अगर छोट परिवार है जो ना के तू अपनी आर्थिक स्थिति में लेके ओकर स्वास्थ्य का ठीक से देखभाल कर सकेला, ओके पोषण का बढ़िया व्यवस्था दे सकेला, ओके दर दवाई का जब भी जरूरत हुई ओके समय से दवाई दे सकेला। हम कहते हैं कि भाई कमाई कम हो और 5 गो बच्चे हो जाओ घर में तो भाई केकर केकर देखभाल कर पाई
1: केकर केकर नहीं भाई। देखा सत्तू भैया बात एकदम सही कल है, बच्चा लोगन का परवरिश करे के बा यही में खान पान पोषण का उत्तम व्यवस्था भी करे के बा तो कहीं ना कहीं परिवार छोटा रही तो बहुत अच्छा से परिवार चले।
0: छोटा परिवार रही तो जान जा कि स्वास्थ्य की संगे संगे बढ़िया शिक्षा भी दे देव हो, और आज के जमाने में देखो तो ना शिक्षा का कितना महत्व है
1: भैया।
0: भाई कह जाओ कि अपने घरे में अगर सब शिक्षित रही तो देखो वो हर चीज का भी समझदारी रखी, वो चाहे कोनो काम करे जाए कह जाओ कि ख से लेके गया तो कोनो वो काम करे उकर काम हर काम कह जाओ कि एकदम परिपक्वता से बढ़िया हुई।
1: सत्तू भैया देखा बात एकदम सही कल है, अगर हम दिन पर दिन देखते भैया जितना सिवान में पहले पेड़ लगत रहे अब जनता बढ़े की वजह से सब पेड़ का भी कटाई एक तरफ से होता तो कहीं ना कहीं अपने के भी पराजित हुआ का समस्या।
0: बिल्कुल भाई जनसंख्या बढ़ी तो भाई मांग बढ़ी, मांग से हमारा मतलब ये है कि भाई देख चाहे अपनी अनाज का मांग हो खो, चाहे अपनी जोन पेड़ पौधा का बात कैला हो ओकर मांग हो खो, चाहे खान पान का मांग हो खो, जब जनसंख्या रही तो भाई मांग बढ़बे करी भाई, वो तो भूखे पेटे कोई रही नहीं या अपनी जरूरत मार के तो रही नहीं, कहीं से ना कहीं से जरूरत पूरा हुई तो एक ही बढ़िया उपाय है कि भाई अपने परिवार के अपन जनसंख्या पर नियंत्रण कर जा। और एक और बात कह कि देख जनसंख्या कम से ना आर्थिक स्थिरता भी तुहार रही, ये नहीं कि भाई बेफजूल खर्चा हो जात है या ऐसा भाई, अब कहनी है ना कि एगो घर में मने पर 5 आदमी का बोझ है तो भाई वो 5 आदमी का बोझ के निर्वहन करी है, अगर ये मान लो 2 आदमी का बोझ रही तो भाई 2 आदमी का निर्वहन करी खर्च और उसे ओकर भाई जो आर्थिक स्थिति है वो स्थिर रही भाई, उमे बहुत हलचल ना हुई, हलचल से हमारा मतलब ये है कि बहुत उतार चढ़ाव ना हुई कम बेसी ना हुई, आर्थिक बोझ ना पड़ी और बेहतर जीवन दे सकी अपने परिवार का, कहल जाओ कि तनाव में भी कम रही, भाई छोट परिवार रही 5 आदमी का खर्च ना है तो भाई जन मानसिक तनाव भी बढ़ जाला कि भाई उनकर उनहु के फीस कम हो गई, उनहु के कुछ खुराक देवे के है, या वो बाहर रहते हो।

0: तो उन्हों के कुछ भेजे के है तो भाई इस चीज से भी तू बच सकेला। आए और भविष्य बदे जब हम शिक्षा का बात करनी है, शिक्षा का बात या कह जाओ कि अपने बाल बच्चन के अधिक से अधिक समय दे सकेला, तो हर चीज का एक ही उपाय बा भैया कि कम परिवार के रख, कम परिवार रही तो सुखी परिवार रही।
1: सत्तू भैया, हम देखी ला जा कि जैसे कि छोटा परिवार है अपन, ठीक है, उम्मीद जौन अपन खर्चा सीमित में चलत हो, और जैसे ही कभी कभी 10 लोग 5 लोग मेहमान जुट जालो तो देखा ला ना एक एक प्रेशर बढ़ जाले कि अरे भाई कैसे का हुई।
0: बिल्कुल एकदम बढ़िया उदाहरण दियाला भैया, दीना भैया। और एक और चीज कह कि देखो एमे सबके भागीदारी होके की चाहिए, वो चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, काहे से कि जब परिवार छोट रही ना तो देखो महिला लोगन के भी समान अवसर मिली। कहे का मतलब यह है कि भाई अगर घर में पुरनिया या पीछे से आदमी देखत आई है तो भाई चार गो अगर लड़का रहे, एगो लड़की हो जाए या दू गो लड़की हो जाए तो लोग भाई बराबर शिक्षा न दे पाव।
1: न दे
0: तो देखो
1: पाओ।
0: ओकर सबसे बड़ा यही उपाय है कि भाई अगर छोटा परिवार रही तो उनमें जे भी रही, वो चाहे लड़का हो या लड़की हो, सबके समान शिक्षा दियाई। और हम अपनी बहन लोगों से भी एगो अपील करब कि भाई वो लोग भी अपने घर में सबके समझावा कि देखो छोटा परिवार रहला से एकदम समानता का भाव रही भाई।
1: समानता के भाव रही है, सब हंसी खुशी से अपन नल की नहीं जाना था। जब ज्यादा बड़ा परिवार हो जाले ना तो हमेशा घरे में जो ना किच किच किच भी वो ठीक ना रहे, उसे पारिवारिक में असंबद्धता बढ़ने ले।
0: तो भाई देखो छोटा परिवार सुखी परिवार ये कहल गई है। आ दीना भैया आगे भी बात बत कही कल जी अपनी खेती बारी पर, लेकिन है कुछ संदेश वो सुन लिया जा और ओकरी बात बत कही हो।
1: अच्छा सुनवाया था, सुनवाया था।
2: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
3: आरबीआई कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: सत्तू भैया,
0: हाँ भैया,
1: संदेशा तो हो गई भैया।
0: अब ना जोन बत कही अपने पंचायती में कि धान का उन्नत प्रजाति कौन कौन है, डॉक्टर जोखन सिंह से बतियेले हो सुधीर कुमार श्रीवास्तव भैया, आओ भैया उनके सुनवाओ जा, खुद सुनल जा।
1: अच्छा हाँ सुनवाया था।
5: डॉक्टर जोखन सिंह, आप पूर्व प्रधानाचार्य रहल हुआ
6: जी,
5: आज हम आपसे ये जानल चाहब कि जोन मुख्य फसल हमारे धान और गेहूं का है
6: जी,
5: मन धान का स्थिति बा और जैसे कि समय भी चलत हो इस समय तैयारी का
6: जी जी,
5: और पौष्टिकता का स्थिति हमारे खाना में बा धान का
6: जी,
5: जानकारी दे हमारे किसान भैया लोगों।
6: हाँ किसान भाइयों, धान हमारे देश की जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है, जिसका किसान भाई के साथ साथ पूरे विश्व की जो आबादी है, आधे से अधिक आबादी चावल पर निर्भर है। संसार में पैदा की जाने वाली जितनी भी खाद्यान्न की फसलें हैं उनमें क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों ही दृष्टि में धान का प्रथम स्थान है। इसकी खेती हमारे देश में अतीत काल से होती आई है
5: जी,
6: क्योंकि ऋग्वेद जैसे प्राचीन ग्रंथ में भी अनेक स्थानों पर चावल का वर्णन मिलता है। चावल का प्रयोग हमारे शुभ अवसरों पर अक्षत के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसका प्रयोग इसमें चावल में देखा गया है कि माड़ काफी मात्रा में पाया जाता है, जिसका प्रयोग कपड़ा उद्योग में किया जाता है, और सबसे बड़ी बात इसका जो पुगाल होता है वो पशुओं को चारे के लिए या सामान की पैकिंग के लिए किया जाता है। और इसमें पोषक तत्व के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो इसमें 7.7% प्रोटीन होती है, 76% कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च होता है, 2.5% वसा होती है, 1.1% खनिज पदार्थ तथा 11.8% तक सेलुलोज पाया जाता है। संसार में धान के समस्त उत्पादन का 90% दक्षिण पूर्व एशिया में पैदा होता है। चीन व भारत दोनों मिलकर विश्व के कुल उत्पादन का लगभग आधा भाग पैदा करते हैं।
5: अच्छा अच्छा

0: हमारे देश में उगाई जाने वाली धान्य फसलों में भी धान का प्रथम स्थान है। देश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 1/3 भाग पर धान की खेती की जाती है।
1: अच्छा
0: भारत में पश्चिम बंगाल राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल में धान की खेती होती है। इसके पश्चात अपना उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार और मध्य प्रदेश आता है। देश के कुल चावल उत्पादन का 15% भाग लगभग उत्तर प्रदेश से होता है और उत्तर प्रदेश में गोरखपुर मंडल और बस्ती मंडल में सबसे अधिक क्षेत्रफल में धान की खेती होती है। और प्रदेश में जितना कुल धान का क्षेत्रफल है उसका लगभग 40 से 42% भाग इन्हीं दोनों मंडलों में है।
1: तो ये तो बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आप धान के विषय में पूरा एकर कुंडली आप बता देते हैं।
0: जी जी
1: अब हम ये जानना चाहें कि एकरे खेती बदे के जलवायु कैसी चाहिए।
0: हाँ किसान भाइयों, धान एक ऐसी फसल है जो शुरुआती दौर में बहुत गर्म जलवायु माने उष्ण जलवायु में फसल है। इसके लिए उच्च ताप
1: अच्छा
0: और उच्च आर्द्रता तथा अधिक वर्षा या पानी की आवश्यकता होती है। और इसके
1: और एकरे बदे भूमि कैसन चाहिए, कैसन भूमि का चुनाव
0: किसान
1: करें
0: भाइयों
1: चाहिए।
0: की धान की खेती के लिए सबसे अच्छी मृदा होती है जिसकी जल धारण क्षमता अच्छी हो और जल धारण क्षमता चिकनी मिट्टी या दोमट मटियार मिट्टी की होती है। और मृदा की जल धारण क्षमता अच्छी हो उसके साथ साथ मृदा का एक पीएच मान होता है जो 8.5 अधिकतम हो और कम से कम 5.5 5.5 पीएच मान पर ये अच्छी उपज मिलती है।
1: अच्छा
0: जी
1: तो अब हम जानना चाहें कि कौन कौन अच्छी किस्म है जिससे कि हमके उत्पादन बढ़िया मिले और कम
0: हाँ
1: समय में
0: किसान
1: पकड़े।
0: भाइयों, अच्छा उत्पादन पाने के लिए अच्छी जातियों का चयन करना बहुत जरूरी है।
1: जी
0: अब हमें ध्यान देना है कि हम किस समय धान की खेती करना चाह रहे हैं। समय के अनुसार धान की प्रजातियों को भी कई वर्गों में बांट दिया जाता है।
1: अच्छा
0: जैसे आप अगेती जाति जिनको हम गांव की भाषा में कुआरी जात कहते हैं, मध्यम जात जिनको कार्तिकी जातियां कहते हैं,
1: अच्छा
0: पछेती जात जिनको अगहनी कहते हैं, और बहुत से हमारे प्रदेश में ऐसी जगह है जहाँ निचला तराई एरिया है, बाढ़ ग्रस्त एरिया है या ऊसर भूमि है, या हम बासमती जातियां इन वर्गों में बांटते हैं। तो अगेती जातियों के बारे में अगर हम चर्चा करें, अगेती जातियों का अर्थ ये हुआ कि आप 100 से 120 दिन में फसल पक के तैयार हो जाती है। जातियां भी दो प्रकार की होती है किसान भाइयों, एक तो जिनके पौधे लंबे होते हैं उनको लंबी प्रजातियां, और एक बौनी जाति के होते हैं। तो अगेती जातियों में लंबी जाति की जो किस्म है जैसे नगीना 22, सुधा, काशी,
1: अच्छा
0: धानेश्वर, NSJ 200, मझेरा 3, रोहेला, जलध 1, जलध 2 और जलध 3,
1: अच्छा
0: ये अगेती जात की लंबी प्रजातियां हैं।
1: हाँ
0: और इसमें बौनी जातियां जो है अगेती में साकेत 4, रत्ना, पूसा 2, पद्मा, बाला, मनहर, पंतधान 12, प्रसाद, गोविंद, पूसा 33, साबरमती, IR 50, नरेंद्र 80, कावेरी, और एक जात है सस्यश्री।
1: अच्छा
0: ये रही आपकी कुआरी जातियों की लंबी और बौनी जातियां। अब मध्यम जातियां माने जो कार्तिकी जातियां कहा जाता है जो 121 से 140 दिन में पक के तैयार हो जाती हैं। इसमें लंबी जातियों में आता है टाइप 1, टाइप 3, टाइप 21, टाइप 43, N10B, NSJ 98 और बासमती 370।
1: अच्छा
0: इसकी बौनी प्रजातियां हैं पूसा सुगंधा 4, पूसा सुगंधा 5, पूसा 1121, पूसा 1509, पूसा 1637, नगीना बल्लभ, बासमती 1, पूसा बासमती 1, हरियाणा बासमती 1, बल्लभ बासमती 21, बल्लभ बासमती 23, पूसा 169, पंत 4, पंत 10, सरजू 52, सरजू 62, नरेंद्र 359, जया, पंजाब गौरव, NDR 180, NDR 118। और पछेती जातियां जो 140 दिन से अधिक समय में पक के तैयार होती हैं इनको अगहनी जातियों के नाम से भी कहा जाता है।
1: अच्छा
0: इनकी लंबी जातियां हैं क्रास 116, टाइप 9, टाइप 26, टाइप 100, और बौनी जातियां हैं पंकज, जगन्नाथ, जागृति, स्वर्ण। ये रही आपकी अगेती, मध्यम और पछेती जातियां। किसान भाइयों, जो क्षेत्र निचले हैं या पानी ज्यादा वहां रुकता है उनके लिए कुछ विशेष प्रजातियों की अनुशंसा की जाती है, जैसे जलहरी, जलनिधि, जलमग्न, सोना महसूरी, मधुकर, जलप्रिया, ये जो है जलमग्न क्षेत्रों के लिए हैं।
1: तो डॉक्टर साहब जलमग्न क्षेत्र पर जो तो विशेष स्थिति हम लोग मान लेंगे कि
0: जी
1: एक अलावा

0: जौन आप प्रजाति कुल बताऊ ना हा,
1: जी
0: तो किसान भैया लोग एकरे चुनाव में आधार कोने बात के बनावे कि कैसे प्रजाति का चुनाव
1: किस क्षेत्र में है, कैसी खेती करना चाहते हैं, अगेती जात की खेती करना चाह रहे हैं अगेती जातियों में से लें, लंबी प्रजाति की नर्सरी डालना चाहते हैं लंबी प्रजाति कर लें, इनमें से जो भी हम चर्चा कर रहे हैं इनमें से अपने आप अपनी सुविधा अनुसार और आवश्यकता अनुसार चयन कर लें। और कुछ क्षेत्र ऐसे जो जहाँ की जमीन बड़ी ऊसर है वहां के लिए झोना 349 है, आईआर 24 है, एसआर 26 बी है, पूसा 2 है, पूसा 21 है, ऊसर धान 1 है, जया है, नरेंद्र ऊसर धान 2 है, तो ऊसर क्षेत्रों के लिए। और किसान भाइयों कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जो हमारे प्रदेश के सभी क्षेत्रों में सफलतापूर्वक उगाई सकती हैं, जैसे पूसा सुगंधा 4 और पूसा सुगंधा 5, बल्लभ बासमती 21, 22, 24 और 27, पंत धान 10, पूसा 169, पूसा बासमती 1, पूसा बासमती 1121, मनहर, प्रसाद, गोविंद, पूसा 33, रत्ना, साकेत 4, नगीना 22, ये हमारे प्रदेश के सभी क्षेत्रों में सफलतापूर्वक इसको उगा सकते हैं।
0: अच्छा,
1: किसान भाइयों इसके अलावा भी कुछ जातियां होती हैं जिनका बीज आपको हर साल बदलना पड़ता है, संकर जातियां होती हैं, उनका बीज एक साल बोने के बाद आप बाद में नहीं प्रयोग कर सकते हैं।
0: अच्छा,
1: हाँ, तो संकर धान की जातियां भी आप जान लें, आपको अगर लगे इनका उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, जैसे पंत संकर धान 1, पंत संकर धान 3, ये 115 से 120 दिन में पक के तैयार हो जाती है, इसकी उपज जो है 60 से 65 कुंतल प्रति हेक्टेयर है। नरेंद्र संकर धान 2, नरेंद्र संकर धान 3, 125 से 130 दिन में पक के तैयार होती है, इसका भी उत्पादन 60 से 65 कुंतल प्रति हेक्टेयर है। प्रो एग्रो 6611 125 से 130 दिन में 90 से 95 कुंतल प्रति हेक्टेयर तक उत्पादन होता है इसका। प्रो एग्रो 6201 120 से 125 दिन में पक के तैयार होती है, 85 से 90 कुंतल प्रति हेक्टेयर तक उत्पादन होता है इसका। और PHB 72 ये 120 से 125 दिन में पक के तैयार होती है, 80 से 85 कुंतल प्रति हेक्टेयर तक उपज प्राप्त होती है।
0: तो डॉक्टर साहब इतनी प्रजाति जो आप बतावत हो
1: जी,
0: तो इमन जलमग्न वाली प्रजाति जो आप बताना है जैसा अगर भूमि हो तो जलमग्न वाली स्थिति तो वही भाई नहीं, बाकी प्रजाति बदे का उचित समय हो।
1: हाँ किसान भाई इस समय जो चल रहा है धान का, अभी हम लोग केवल नर्सरी तैयार करेंगे
0: जी,
1: किसान भाइयों से अनुरोध है वो 15 जून तक अपनी नर्सरी डाल दें।
0: अच्छा
1: जी,
0: तो नर्सरी डाले बदे का तैयारी करें
1: किसान भाई, सबसे बड़ी बात है नर्सरी के लिए आपको जितने क्षेत्रफल में धान की रोपाई करना हो उसके 1/15 से 1/20 भाग में आप नर्सरी डालें। अच्छा। इस बात को किसान भाई ध्यान नहीं देते हैं, वो अपने छोटे से हिस्से में कोने में डाल देते हैं और पौधों की संख्या इतनी ज्यादा हो जाती है कि नर्सरी में ही पौधे कमजोर हो जाते हैं। अगर आप 1 हेक्टेयर पूरे क्षेत्रफल में नर्सरी डालते हैं तो उससे 15 हेक्टेयर या 20 हेक्टेयर क्षेत्रफल में धान की रोपाई कर सकते हैं, और उसके लिए बीज की मात्रा भी, जैसे 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में रोपाई करना है तो महीन जातियों का 30 किलोग्राम बीज, मध्यम जातियों मध्यम मोटाई वाले का 40 किलोग्राम बीज और मोटी प्रजाति का 50 किलोग्राम बीज एक पर्याप्त होता है।
0: अगर ये बात का ध्यान दें तो उन्हें आर्थिक बचत भी
1: होगी, बहुत बचत होगी, और सबसे बड़ी चीज पौधे जो नर्सरी में होंगे स्वस्थ होंगे
0: बिल्कुल।
1: और नर्सरी के जो खेत तैयार करते हैं किसान भाई थोड़ा सा ध्यान नहीं देते हैं, खेत को इतना बड़ा बना देते हैं उसी में अपने पांव चल करके भी जगह जगह गड्ढे बना देते हैं
0: जी जी।
1: तो किसान भाई ध्यान दें इस बात का कि वो नर्सरी के लिए जो खेत तैयार कर रहे हैं उसकी जुताई कर लें, पानी भर के खूब, जब उसका पानी स्थिर हो जाए तो 1 मीटर से 1.25 मीटर चौड़ी और लंबाई अपनी सुविधानुसार क्यारियां बना लें।
0: अच्छा,
1: और 2 क्यारियों के बीच में 30 से 40 सेंटीमीटर जगह छोड़ दें। उससे क्या फायदा होगा कि आपको अपनी नर्सरी में पांव नहीं रखना पड़ेगा
0: जी। हाँ।
1: 1 मीटर 1.25 मीटर होगा तो आप बीज की बुआई, खाद या कोई भी शस्त्रक्रिया कुछ भी करना होगा तो आप उन नालियों में चल के निराई गुड़ाई कर लेंगे और आपके पौधे एकदम स्वस्थ रहेंगे, आपको पैर से पौधे नहीं दबेंगे, नहीं तो आप बीज छिड़कते समय ही इतने पांव चला देंगे उसमें पौधे दब जाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो चौड़ाई हमेशा 1 मीटर से 1.25 मीटर, लंबाई अपनी सुविधा अनुसार करें।
0: और कौन बात का ध्यान रखा है?
1: हाँ,
0: जमीन तैयार करो,
1: जमीन तैयार करने के बाद आजकल जिंक की बहुत कमी हो जाती है तो नर्सरी के डालते समय ही जिंक का प्रयोग, जिंक सल्फेट का प्रयोग और उर्वरकों के साथ कर लें तो पौधा, अगर नर्सरी में पौधा स्वस्थ है तो खेत में जाके अपने आप स्वस्थ रहेगा और अच्छे उपज प्राप्त हो।

0: किसान भाइयों को।
1: तो डॉक्टर जोखन सिंह, आप हमारे पंचायती में ही ना, और बड़ी अच्छी जानकारी देना हमारे किसान भैया लोगन के धान के नर्सरी के विषय में। अब बड़ी बारीक वाली बात बताऊँ ना कि कौन कौन विषय पर किसान भैया लोग ध्यान नहीं देते ना, अगर
0: जी
1: ऊपर ध्यान दें तो उनका उत्पादन बढ़िया हो।
0: जी
1: तो ये
0: भाई
1: जानकारी दे बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद। सत्तू भैया
2: हाँ दीना
0: देखा ही
2: जी।
0: कितना नीमन जानकारी मिलल हो। धान की उन्नत प्रजातियाँ पे डॉक्टर जोखन सिंह और सुधीर कुमार श्रीवास्तव भैया कितना फरियाई की बतियाई ना कि एकदम मन जो ना हरियर हो गई।
2: अब हम तो कहब कि मन हरियर हो गिल ना, तो तनी और हरियर करावा और भैया लोगन के कुछ सुनवावा।
0: हम समझत है अब तुहार किधर कहत हुआ तुम। इधर डॉक्टर माधवी सिंह का ही देखा है ठीक गौ नहीं है बहुत बढ़िया। हम सुनल जा और किसान भाई लोग भी सुना।
2: बिल्कुल सुनवा दे।

0: जी ना भैया,
1: सत्तू भैया।
0: देखो डॉक्टर माधवी सिंह का कितना बढ़िया देशभक्ति गीत रहा हो, और अपने गीत के माध्यम से देखा अपने देश का कितना बढ़िया बखान, और अपने सैनिक भैया लोगों का कितना बढ़िया बखान के लिए है।
1: कहे नहीं भाई, अगर सैनिक भाई लोगों का बखान न करल जाए तो भाई देखा देश का पहरुदार हूँ।
0: बिल्कुल
1: आ
0: भाई,
1: भाई रक्षा करत हुआ, इसलिए हमने सुकून का नींद सो दी।
0: बिल्कुल भैया,
1: भैया
0: लगले हाथे काल के कार्यक्रम के बारे में बता दिया जाए।
1: भैया तो देखा कल सवेरे जो है ना 6:05 पे खेती की बातें में कृषि रसायनों के प्रयोग से सावधानियां पे देखा जानकारी दिया दिनेश कुमार सिंह भैया, तो संझा का सुनवा दुआ।
0: संझा के अपने यही कार्यक्रम कृषि जगत में ना, जौन कि 6:30 पर होला, ओमे भाई गर्मी में मधुमक्खियन का कैसे देखभाल करे के है, डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव से बात बत कही हुई। और हम तो कहम ना
1: हाँ भैया।
0: कि भाई चलत चलत जौन तू एगो घटना कहत रहा है कि बड़ा नुकसानदेह हो जाती है, ओहू पर
1: हाँ
0: तनी अपने किसान भैरों के कुछ बता दिया जाए।
1: सत्तू भैया, देखा भाई अगर किसान भाई लोगों से वो निवेदन बा
0: का हो?
1: कि अगर रास्ते पेड़े अगर चलत हो जा तो भाई बहुत ही ध्यान से रोड पे चला जा, ये बता कि दुर्घटना इसमें दिन पर दिन जौन है ना सत्तू भैया पढ़ल जाता।
0: भाई देखा, कहल जाओ कि जितने हमनी को सुख सुविधा हो जाता है, गाड़ी घोड़ा अब तो देखत हो कि हर घरे में चार मनई हों तो चारों लोन की लगे मोटरसाइकिल, चाहे घर परिवार के आवे जाए बदे लोग फोर व्हीलर, हर साधन अपन अपन कर ले ले हुआ और करत भी हुआ। तो भाई जैसे जैसे साधन बढ़ी, भाई दुर्घटना को कहल जाओ कि अवसर भी बढ़ी, और अवसर ऐसे बढ़ी कि भाई ज्यादा से ज्यादा गाड़ी रोड पर दिखी अपने, तो भाई रोड पर देखिए तो हमनी के का करे के है, जे चलावे वाला है भाई बंधु ओकर ओके का करे के है कि भाई सावधानी से चलावे, यातायात के नियम के देख समझ के बूझ के ओकरे हिसाब से चलें। आज जे सड़क के किनारे और या सड़क पर आर पार करे वाला लोग हों या सड़क के किनारे चलत भी हों, वो भाई बच बचा के चला।
1: दम सही कला भैया। सत्तू भैया एक चीज हम ये देखत हैं
0: का हो?
1: कि जैसे जो 3 पहिया वाहन हो, जिसे बैठावे के 6 मिल जाने के, तो ओपे लगभग 10 लोग 11 लोग करके बैठा देते हुआ, तो ऐसे भी भाई बचा।
0: बिल्कुल भाई, जितना ड्राइवर भैया लोग हुआ जे कहल जाओ कि किराए पर या ऐसे गाड़ी चलावत है दो पैसा कमाए बदे, तो भाई वो देखो भाई सबके जीवन का मूल्य है, तो भाई जेकर बैठावत तड़ा ओहू का भाई जीवन का मूल्य है और संगे संगे तोहरो जीवन का
1: तोहरों
0: मूल्य
1: जीवन के
0: है,
1: मूल्य
0: तो
1: एकदम सही
0: भाई
1: कहा
0: इस
1: है।
0: सबके ले के चल और सावधानी बरत, काहे से कि जीवन बहुत अनमोल है, बहुत कहल जाओ कि बहुत मूल्यवान है और बहुत मूल्य चुकावल गेल है जीवन बदे। हैं भाई कितना लालन पालन, कितना लोगन का शौक रहे या कितना ऐसे आशा जुड़ल है, तो भाई एके बहुत ध्यान से रहे के है, और जे सड़क की अगले बगल जेकर घर द्वार भी है वो बहुत सावधानी से अपने छोटे छोटे गदेला लोगन के समझा के देखभाल करके रखे कि ताकि उस सड़क पे दौड़ के जा ना और बच बचा के रहें। और भैया देखा
1: भैया
0: अब समय हो गई अपन चले के, तो भैया लोन से आज्ञा लिया जा, तो पंचो
1: राम
0: राम राम।
1: राम।

किसान भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम कृषि जगत। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7 बजे हैं, आइए सुने फिल्म संगीत।

हम आपके हैं कौन, इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाजों में। देव कोहली के बोल थे और राम लक्ष्मण का संगीत। और ये अगला गीत आप सुन रहे हैं फिल्म मैंने प्यार किया से। आवाजें लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की हैं।

सातवां आसमान इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज़ों में। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

मीडियम वेव के मीटर पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी वाराणसी के कार्यक्रम। प्रस्तुत है खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं।

थाना पड़री मिर्ज़ापुर से प्राप्त सूचना के अनुसार कुलई, पिता का नाम मंगरू, निवासी ग्राम धर्मदेवा भगदना पोस्ट छठहा मिर्ज़ापुर। इनकी लंबाई 5 फुट 3 इंच है, उम्र करीब 80 वर्ष। ये 2 अप्रैल 2026 को घर से पैड़ापुर के लिए निकले और वहां से वापस नहीं आए। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया संबंधित थाने को सूचित करें। थाना जैतपुरा कमिश्नरेट वाराणसी से प्राप्त सूचना के अनुसार साजिद मोहम्मद, पिता का नाम अफसर अंसारी, निवासी अमरपुर मड़िया मछली मंडी थाना जैतपुरा वाराणसी। इनकी उम्र 23 वर्ष, कद 5 फुट 6 इंच, रंग गोरा और चेहरा लंबा है। लापता होने के समय इन्होंने ब्लू कलर के जीन्स और पिंक कलर का टी शर्ट पहना हुआ था। ये 20 मार्च 2026 से लापता हैं। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया संबंधित थाने को सूचित करें।

थाना कोतवाली विंध्याचल जिला मिर्जापुर से प्राप्त सूचना के अनुसार श्रीमती माया देवी पत्नी स्वर्गीय श्री फूलचंद निवासी ग्राम कनकपुर पोस्ट माया बाजार महाराजगंज जिला अयोध्या। इनका रंग गेहुआ चेहरा गोल लंबाई 5 फुट 4 इंच और उम्र 50 वर्ष है। लापता होने के समय इन्होंने हरे रंग की साड़ी व गले में काला धागा पहना हुआ था। ये 30 मार्च 2026 दोपहर में लगभग 3 बजे अष्टभुजा विंध्याचल जिला मिर्जापुर से गायब हैं। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर

कृपया संबंधित थाने को सूचित करें। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं समाप्त हुई। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:18 होने वाले हैं। अब से थोड़ी देर बाद यानी 7:20 से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे लखनऊ केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के।
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
3: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए तैयार किया है अनुकूल वातावरण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर लखनऊ और वाराणसी में आयोजित कार्यक्रमों में हुए शामिल। कहा, अपनी शक्ति और सामर्थ्य का प्रदर्शन करते हुए विकास यात्रा पर अग्रसर है देश। मुख्यमंत्री ने जेवर एयरपोर्ट से बेहतर कनेक्टिविटी के लिए 45 इलेक्ट्रिक और 3 हाइड्रोजन बसों का किया शुभारंभ। कहा, नेट जीरो लक्ष्य प्राप्त करने में अहम साबित होगी पहल। और आईआईटी कानपुर में जुलाई से शुरू होगा साइबर सिक्योरिटी स्नातक पाठ्यक्रम, साइबर हमलों से बचाव के लिए प्रशिक्षित करेगा ये कोर्स। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, हेल्थ केयर, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और गवर्नेंस तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
4: प्रधानमंत्री ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य किया है, जिसके सकारात्मक परिणाम विभिन्न क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह को सक्रिय सहयोग देकर महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की नीतियां सम्मान, अवसर और सशक्तिकरण के सिद्धांतों पर आधारित है। इन प्रयासों से अब महिलाएं अपनी क्षमताओं को पहचानते हुए राष्ट्र निर्माण में अधिक प्रभावी भूमिका निभा रही है। श्री मोदी ने विज्ञान, अंतरिक्ष और नवाचार जैसे क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं की बढ़ती उपलब्धियों की सराहना की। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
3: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के हित में अनेक प्रभावी कदम उठाए हैं। केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों पर आज लखनऊ में

0: मीडिया को संबोधित करते हुए श्री योगी ने कहा कि हम उस नए भारत के नागरिक हैं जो अपनी विकास यात्रा की तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ रहा है।
1: भारत ने अपनी शक्ति और सामर्थ्य का एहसास आज दुनिया को कराया है और आने वाले समय में भारत की इस ताकत का लोहा न केवल दुनिया करेगी बल्कि उसका अनुसरण भी करने को मजबूर होगी। और इसलिए देश के अंदर सर्वाधिक समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री की रिकॉर्ड को तोड़ते हुए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने देखा है। मैं इसके लिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करता हूँ।
0: इसके बाद मुख्यमंत्री वाराणसी में आयोजित जन कल्याण शिविर में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र भी प्रदान किए। इसी क्रम में प्रदेश भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेन्द्र प्रसाद ने पीलीभीत के बनकटी में चौपाल लगाकर जनता की समस्याएं सुनी। श्री प्रसाद ने कहा कि एनडीए सरकार ने अपने कार्यकाल में गरीबों को पक्का मकान देने के साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार जैसे क्षेत्रों में अभूतपूर्व काम किया है। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल कल भारतीय जनता पार्टी की ओर से लखनऊ में आयोजित विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीते 12 वर्षों में देश की वैश्विक प्रतिष्ठा बढ़ी है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति पर आकाशवाणी समाचार विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम विदेश नीति के माध्यम से भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में सरकार के उठाए गए कदमों पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
2: पिछले 12 वर्षों में भारत अपनी साहसिक पहलों के दम पर एक मजबूत ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। दुनिया भर में भारत के जुड़ाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्य है। नवंबर 2025 में श्रीलंका के पूर्वी तट पर चक्रवात दित्वा टकराया था जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े होकर भारत ने उन्हें तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। इस बचाव और राहत कार्य में भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना और आपदा प्रतिक्रिया के दलों ने मिलकर काम किया। भारतीय नौसेना के जहाजों ने तमिलनाडु से 1000 टन से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने 264 लोगों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित निकाला और 50 टन सामग्री एयरलिफ्ट की। इसके अलावा वहां फंसे 2500 से ज्यादा भारतीयों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता कोविड महामारी के दौरान देखने को मिली। जनवरी 2021 से भारत ने 99 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज सप्लाई की है। इसमें 50 से ज्यादा देशों को तोहफे में दी गई और कोवैक्स पहल के जरिए दी गई डोज शामिल है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा और ईडा क्षेत्र में जेवर एयरपोर्ट तक संचालित होने वाली परिवहन निगम की 45 इलेक्ट्रिक और 3 हाइड्रोजन बसों का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने नोएडा इलेक्ट्रिक बस डिपो का भी शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 जून तक 110 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू हो जाएगा और मांग के अनुरूप बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी। श्री योगी ने कहा कि ये नेट जीरो लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम है।
1: प्रधानमंत्री जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए जब 15 जून से भारत का सबसे बड़े एयरपोर्ट के संचालन का कार्य प्रारंभ होने जा रहा है तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सुचारू वायु सेवा की दृष्टि से यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए और नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके इस दिशा में यह प्रयास तीनों अथॉरिटी ने मिलकर के उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के माध्यम से प्रारंभ किया है।
0: राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की परीक्षा अवधि को 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट का कर दिया है। संशोधित समय के अनुसार परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक रहेगा। संशोधित परीक्षा अवधि में अनिवार्य परीक्षा औपचारिकताओं के लिए आवश्यक समय शामिल है। एनटीए ने प्रश्न पत्र पुस्तिका के साथ दिए जाने वाली रफ वर्कशीट को 2 पृष्ठ से बढ़ाकर 4 कर दिया है। इसके साथ ही उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देश

0: लक्ष्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए परीक्षा कर्मचारियों के साथ सहयोग करें। कानपुर स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी द्वारा जुलाई 2026 से बैचलर ऑफ साइबर सिक्योरिटी का नया स्नातक कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल ने बताया कि इस कोर्स को शुरू करने का उद्देश्य भविष्य में साइबर हमलों से बचाव के लिए प्रशिक्षित टीम तैयार करना है।
1: इसका मुख्य उद्देश्य एक साइबर वॉरियर्स की ट्रेनिंग है। साइबर प्रोटेक्शन की हर एक देश को इस समय अत्यधिक आवश्यकता है। मैं एडमिशन जेई एडवांस के द्वारा नहीं होगा, एडमिशन एक हैकाथॉन मुख्यतः के द्वारा होगा और इसका उद्देश्य है ऐसे स्टूडेंट्स को ढूंढना जो कि प्रारंभ से ही इस दिशा में रुचि रखते हैं, इस दिशा में काम कर रहे हैं।
0: केंद्र सरकार ने संस्थागत औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों को खुदरा विक्रेताओं से मोटर ईंधन और हाई स्पीड डीजल खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा कि वे अपनी जरूरतें घरेलू पेट्रोल पंप से पूरी करें। उन्नाव में गंगा एक्सप्रेसवे पर हुए सड़क हादसे में आज 4 लोगों की मौत हो गई है। ये घटना थाना आसीवन क्षेत्र में हुई जब एक तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़े ट्रक से जा टकराई। दुर्घटना में कार सवार 2 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया जबकि 2 की इलाज के दौरान मौत हो गई। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश और बिजली गिरने का अनुमान जताया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए तैयार किया है अनुकूल वातावरण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर लखनऊ और वाराणसी में आयोजित कार्यक्रमों में हुए शामिल। कहा, अपनी शक्ति और सामर्थ्य का प्रदर्शन करते हुए विकास यात्रा पर अग्रसर है देश। मुख्यमंत्री ने जेवर एयरपोर्ट से बेहतर कनेक्टिविटी के लिए 45 इलेक्ट्रिक और 3 हाइड्रोजन बसों का किया शुभारंभ। कहा, नेट जीरो लक्ष्य प्राप्त करने में अहम साबित होगी ये पहल। और आईआईटी कानपुर में जुलाई से शुरू होगा साइबर सिक्योरिटी स्नातक पाठ्यक्रम। साइबर हमलों से बचाव के लिए प्रशिक्षित करेगा ये कोर्स। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूँ कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है।
1: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। शाम के 7:31 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंग।

मनहर उदास और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में आप सुन रहे थे अमृत फिल्म का गीत। आनंद बख्शी के बोल थे और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। अगला गीत फिल्म आनंद आश्रम से। आवाजें आशा भोसले और किशोर कुमार की हैं। इंदिवर के बोलों को सुरों में ढाला है श्यामलाल ने।

मुद्दत फिल्म का गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले और मोहम्मद अजीज की आवाजों में। आइए अब आपको सुनवाते हैं अनुराधा पौडवाल और पंकज उधास का गाया फिल्म दयावान का ये गीत।

0: अनुराधा पौडवाल और पंकज उदास के गाए फिल्म दयावान के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंग अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं।
1: जी हाँ श्रोताओं, सुनते रहिए आकाशवाणी वाराणसी और हमसे जुड़े रहिए। अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने विचार हम तक पहुंचाएं, उन्हें हम पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम में शामिल करेंगे। हमारा ईमेल आईडी है pkld@varanasi.gmail.com। हमारा फेसबुक पेज है ऑल इंडिया रेडियो वाराणसी। ट्विटर हैंडल है @airvaranasi। इसमें ए और वी कैपिटल लेटर्स में है। तो हमें सुनिए, फील कीजिए और लिख भेजिए अपने विचार। मीडियम वेव FM और न्यूज ऑन AIR ऐप पर अब हम हैं आपके साथ हर पल हर घड़ी।

0: 1, 2, 3, चेक।
1: दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश नए अवतार में, यानी फिर एक बार मनोरंजन का संसार सीधे आपके द्वार। डीडी फ्री डिश में अब हैं 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स, 51 एजुकेशनल यानी शैक्षिक चैनल्स, साथ ही 48 रेडियो चैनल्स भी। बस एक बार सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई मासिक या अतिरिक्त खर्च नहीं। डिजिटल क्रांति की दिशा में एक और कदम बढ़ाइए, डीडी फ्री डिश घर लाइए। जी हाँ, सूचना, शिक्षा और मनोरंजन से भरपूर डीडी फ्री डिश का नया अवतार, यानी मनोरंजन का संसार सीधे आपके द्वार।
2: मीडियम वेव के मीटर पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी वाराणसी के कार्यक्रम। रात्रि के 8 बजे हैं, प्रस्तुत है सुगम संगीत। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज की हमारी कलाकार हैं पूनम शर्मा। सबसे पहले आइए सुनते हैं इनकी आवाज में दादू दयाल की ये रचना।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं पूनम शर्मा के गीत। आइए सुनते हैं एक बार फिर से पूनम शर्मा की आवाज़ में दादू दयाल की रचना।

आप सुन रहे थे पूनम शर्मा की आवाज में गीत। इसी के साथ सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव के मीटर पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:10 हुए हैं। प्रस्तुत है सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर विशेष श्रृंखला।

0: ये आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: एक ओर हजारों वर्षों की सभ्यताएं, दूसरी ओर नए भारत की आकांक्षाएं, एक ओर वेदों की वाणी तो दूसरी ओर डिजिटल युग की गति, एक ओर काशी के घाट, दूसरी ओर विश्व मंच पर भारत का बढ़ता सम्मान। पिछले 12 वर्षों में भारत ने सिर्फ विकास की नई इबारत ही नहीं लिखी है, भारत ने अपनी सांस्कृतिक चेतना, विरासत और पहचान को एक नए आत्मविश्वास के साथ दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है। काशी के धाम की बात करें या फिर केदारनाथ के पुनर्निर्माण की, विदेशों से आई मूर्तियों की बात करें या फिर ज्ञान भारतम मिशन की, साथ ही साथ वंदे मातरम के 150 वर्षों के राष्ट्रीय उत्सव की बात करें या फिर हम बात करें आज आधुनिक होते भारत के नए स्वरूप की, हर जगह चर्चा है एक ऐसे भारत की जिसकी ओर दुनिया उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। संस्कृति और पर्यटन के क्षेत्र में पिछले 12 वर्ष किस तरीके के रहे, इस पर चर्चा के लिए आज के खास मेहमान हैं केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। आकाशवाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद, बहुत सारा आभार यह अवसर प्रदान करने के लिए।
1: शुरुआत यहीं से करते हैं, पिछले 12 वर्ष की हम बात करें तो संस्कृति के क्षेत्र में आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि दुनिया को लगता था कि विरासत और विकास दो अलग अलग विषय हैं, लेकिन भारत ने इसे एक साथ एकाकार कर दिखाया है।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से पिछले 12 वर्षों में एक तरफ जनता के विश्वास पर खरा उतरते हुए सर्वस्पर्शी योजनाओं के माध्यम से, लोक कल्याणकारी सर्व कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से देश को परिवर्तित किया, वहीं दूसरी तरफ जहां भारत का आम व्यक्ति गुलामी की मानसिकता के बोझ से दब करके भारत पर स्वाभाविक गर्व करने की जो व्यवस्था थी, जो विचार था, उससे कहीं दूर भटक गया था, उससे कहीं अलग हो गया था। भारतीयों का भारत के प्रति गर्व का बोध वापस स्थापित करने में पिछले 12 साल में सफलता प्राप्त की है। इस 12 साल के दौर में जिस तरह से विरासत और विकास दोनों एक साथ चले, हम गुलामी की मानसिकता को पीछे छोड़ करके अपनी विरासत का संरक्षण करते हुए विकसित होने की दिशा में आगे बढ़े। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस दिशा में जिस तरह से पिछले 12 वर्षों में

0: काम हुआ है और जो परिवर्तन और प्रभाव उसका दिखाई देता है, मैं जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूं कि 12 साल का कालखंड जब भारत के विकसित होने का इतिहास लिखा जाएगा, तब भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का दौर उसके रूप में परिभाषित और चिन्हित किया जाएगा।
1: जी बिल्कुल, कई सारे ऐसे विषय रहे जिसने संस्कृति मंत्रालय ने पिछले 12 वर्षों में बेहतरीन काम किया। अगर एक एक विषय की बात करें तो विदेशों से जो प्राचीन मूर्तियां आई उसका आप कितना प्रभाव मानते हैं? सिर्फ वो मूर्तियों का आना नहीं रहा, वो भारत की सांस्कृतिक चेतना का वैश्विक प्रसार भी दिखाता है और साथ ही साथ दिखाता है कि जब संस्कृति की कोई चीज वापस आती है तो विरासत भी हमारी समृद्ध होती है।
0: देखिए, 70 के दशक के प्रारंभ में यूनेस्को का ये वर्ल्ड कन्वेंशन हुआ जिसमें यह तय हुआ कि सांस्कृतिक धरोहरें यदि अनधिकृत रूप से उस देश से कहीं बाहर ले जाई जाती है तो इस कन्वेंशन के बाद की इन संपदाओं पर वो राष्ट्र अपना प्रोविनेंस प्रूव करके उसको वापस लाने के लिए क्लेम कर सकता है, अनैतिक तरीके से, इलीगल तरीके से, चोरी से, तस्करी से, जो जिस किसी भी देश की संपदा गई हो। तब से लेकर के 2014 तक जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता ने प्रधानमंत्री के पद पर आसीन किया, विरासत का संरक्षण केवल शब्द नहीं था, उसके प्रति जो भाव था, मैं आज गर्व के साथ में कह सकता हूं कि वो 13 की संख्या बढ़कर के और 670 से ज्यादा हो गई है। और पिछले वर्षों में जिस तरह से हमने अनेक देशों के साथ इस पर अपने कल्चरल एग्रीमेंट्स किए, ऑब्वियसली अमेरिका जो सबसे बड़ा मार्केट इसका है, ऐसी सारी संपदाएं चोरी होकर के अमेरिका जाती थी, उनके साथ जो हमने कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट साइन किया, भारत की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग जब भारत में हुई थी 2024 के वर्ष में उस समय में, उसके चलते हुए एक नया मार्ग प्रशस्त हुआ और हम 670 के आंकड़े को पार कर पाए। और आज जिस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम आगे चले हैं, इस साल के अंत तक जाते जाते हम 1000 के आंकड़े को पार करके हम 4 डिजिट की संख्या में पहुंच जाएंगे। इतना ही नहीं, विभिन्न वैश्विक मंचों पर जहां ये विषय रेलेवेंट है, भारत ने अपनी इस सफलता को दुनिया के दूसरे देशों के साथ में भी साझा करके ऐसे अनेक देश जिन्होंने गुलामी का दंश सहा है उनकी आवाज को बुलंद करने का भी काम किया है। हमारी कल्चरल प्रॉपर्टीज का रेस्टिट्यूशन हमारा सांस्कृतिक सभ्यतागत हक है, ये आवाज वैश्विक मंच पर भारत ने एक नेतृत्वकर्ता बनकर के उठाई है। जब एक संपत्ति, एक संपदा, चाहे वो अन्नपूर्णा की मूर्ति हो, वो ट्रैक करके प्रधानमंत्री खुद इंटरेस्ट लेकर के वापस लाते हैं और वो काशी विश्वनाथ के मंदिर में जब पुनर्स्थापित होती है, वो एक सभ्यतागत मूल्य का पुनर्स्थापन होता है, एक इतिहास का वापस पुनर्स्थापन होता है और एक राष्ट्रीय संकल्प का सिद्ध होना उसके कारण से दिखाई देता है। निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनकी इस विचार के प्रति, इस विषय के प्रति निष्ठा और संकल्प शक्ति, इन तीनों का प्रकटन इसके माध्यम से होता है।
1: अगर हम सांस्कृतिक पुनर्जागरण की बात को थोड़ा और आगे लेकर जाएं, हमने देखा कि काशी विश्वनाथ का पूरा कॉरिडोर बना, केदारनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ, उज्जैन में जो द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक है महादेव का मंदिर, वहां पर महादेव लोक बनाया गया और बहुत टूरिज्म को बढ़ावा मिला। इसके दो पहलू हैं, एक तो जो सांस्कृतिक कॉरिडोर का निर्माण होना और उसके जरिए युवाओं को जोड़ना और रोजगार के अवसरों को बढ़ाना। संस्कृति मंत्रालय आने वाले समय में भी इस तरह की किस योजनाओं पर काम कर रहा है?
0: देखिए, हमारी संस्कृति के मानबिंदु, हमारी सभ्यता के मानबिंदु, हमारी आस्था के केंद्र, जिनकी आपने चर्चा की, काशी बाबा का कॉरिडोर बनाने की बात हो, महाकाल लोक बनाने की बात हो, केदारनाथ के पुनर्निर्माण की बात हो, सोमनाथ जो भारत की अदम्य जिजीविषा का प्रतीक है, उसके मंदिर के परिसर के पुनर्निर्माण के साथ साथ में वहां इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट का विषय हो, या सोमनाथ के आक्रमण उसके ध्वस्त किए जाने के 1000 साल के पूरे होने को, या पुनर्निर्माण के 75 साल पूरे होने के को वर्ष पर्यंत उत्सव के रूप में मनाने और देश को उसके साथ जोड़ने का विषय हो, जगन्नाथपुरी के धाम से लेकर के देश के अन्य इस तरह के श्रद्धा के केंद्रों को प्रसाद योजना के माध्यम से पर्यटन मंत्रालय द्वारा विकसित करने, वहां अवसंरचनाओं के विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ में टूरिस्ट एमिनिटीज को बढ़ाने का काम हो, निश्चित रूप से उसने वहां जाने वाले दर्शनार्थियों के अनुभव के स्तर को समृद्ध करने का काम किया है। लेकिन इसके चलते हुए मात्र पर्यटन को या धार्मिक पर्यटन को उछाल मिलाओ ऐसा नहीं है। पिछले वर्षों में जिस

0: तरह से गरीब कल्याण की योजनाएं बनाई गई, उनको जिस तरह से सैचुरेशन के मंत्र के साथ में धरातल पर उतारा गया, उसके चलते हुए जो 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकल पाए, मध्यम वर्ग को जिस तरह से दोहरी राहत प्रदान की गई, एक टैक्स में कटौती करके, इनकम टैक्स के स्लैब्स को रिवाइज करके, जहां 2 लाख रुपए के ऊपर की आय पर इनकम टैक्स लगता था, आज 12.5 लाख तक इनकम टैक्स जीरो हुआ। दूसरी तरफ अप्रत्यक्ष करों में जीएसटी का लागू करके, देश में एक कर की व्यवस्था को लागू करके, जो कैस्केडिंग इफेक्ट से टैक्स लगता था, टैक्स ओवर टैक्स, उससे राहत प्रदान करके, और तीसरे देश की महंगाई को पिछले 12 वर्षों तक निरंतर काबू में रख करके जो है हिस्टोरिकली लो बनाए रखने में कामयाबी प्राप्त करके मध्यम वर्ग को जिस तरह से लेवरेज किया, उनकी जेब में जब डिस्पेंसिबल पैसा आया, तो सामान्य भारतीय की जिस तरह की सोच, मानसिकता और जिस तरह का विचार होता है, उसकी जेब में जब डिस्पेंसिबल इनकम होती है, तब वो पहली बार घर से बाहर निकलने का अवसर मिलता है, तो दशकों से, कई केसेस में पीढ़ियों से दबी हुई आकांक्षा कि कभी हमारे पास पैसा होगा तब मैं अपने बूढ़े माँ बाप को लेकर के आस्था के किसी केंद्र में, जहां परिवार की आस्था हो या जिन जिन जगहों पर आस्था हो, वहां लेकर के जाऊंगा, दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करूंगा, दर्शन कराने का पुण्य प्राप्त करूंगा। ये सपना इन सब परिस्थितियों के कारण से साकार हुआ, और इसके साथ साथ में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हुआ, सड़कें बनी, वर्ल्ड क्लास इन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ, मॉडर्न एज रेलवे भारत में आई, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ में उनके परिचालन की गति पड़ी ताकि आवागमन में समय कम हो, नए हवाई अड्डे बने, हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई यात्रा कर सके, इस सपने को साकार सरकार ने किया। उसने भी निश्चित रूप से धार्मिक पर्यटन को बढ़ाया। पर्यटन की गतिविधि जो कहीं भी होती है, पर्यटन की अर्थव्यवस्था जो है वो ओवरऑल भारत की जीडीपी में 6% का कंट्रीब्यूशन करती है। माननीय प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट मार्गदर्शन है, हमको इसको 2047 तक, जब भारत विकसित होगा, तब तक 10% के ग्लोबल बेंचमार्क के बराबर लेकर के जाना है। लेकिन दूसरा, पर्यटन की अर्थव्यवस्था सबसे डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी होती है। जब आप और मैं पर्यटन के लिए कहीं जाएं, चाहे वो किसी भी पर्पज के लिए होगा, ट्रांसपोर्टर को उसको लेकर के रोजगार मिलता है, ट्रांसपोर्टर का कैस्केडिंग इफेक्ट से ड्राइवर को रोजगार मिलता है, गाड़ियां मैन्युफैक्चरिंग करने वालों को उसके चलते हुए रोजगार मिलता है, वो एक कैस्केडिंग इम्पैक्ट होता है। होटल में ठहरते हैं, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जो है वो सबसे बड़ा रोजगार का प्रदाता है। निवेश विज रोजगार सजित रोजगार अगर देखें तो हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म सेक्टर सबसे ज्यादा रोजगार सृजन करने वाला होता है, उनको रोजगार मिलता है, रेस्टोरेंट्स को रोजगार मिलता है, स्ट्रीट फूड वेंडर्स को रोजगार मिलता है, कोई सुवेनियर शॉप पर जाकर के कुछ खरीदता होगा उसको रोजगार मिलता है, क्राफ्ट शॉप पर जाकर के कुछ खरीदता होगा उसको रोजगार मिलता है, इसके अतिरिक्त टूरिस्ट गाइड को रोजगार मिलता है, अनेक लोगों को, पूरे समाज को उससे लाभ होता है। रास्ते चलते हुए कोई रुक करके, शायद कोई खेत में से तोड़ करके फल लेकर के बैठी हुई एक महिला से अगर कोई जामुन खरीद करके खाए, कोई अमरूद खरीद करके खाए, कोई फल खरीद, केला खरीद के खाए, उस फार्मर को रोजगार मिलता है। तो ये जो डिसेंट्रलाइज्ड कंट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमी और उसके साथ साथ में रोजगार के नए अवसर पैदा करना, ये दोनों ही पर्यटन के क्षेत्र की खूबसूरती है, खूबी है। और मैं ये मानता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि हम 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था जो आज 4 ट्रिलियन पर है और पूरी दुनिया जिस बात पर विश्वास करता है कि 2047 तक 30 ट्रिलियन से ज्यादा की अर्थव्यवस्था होगी, उसमें जब भारत का ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर 10% का कंट्रीब्यूटर बनेगा, निश्चित रूप से जिस प्रमाण में भारत में डोमेस्टिक ट्रैवल बढ़ेगा उसी प्रमाण में भारत का इनबाउंड टूरिस्ट, जो विदेश से आने वाले सैलानियों की संख्या भी बढ़ेगी, क्योंकि भारत की छवि बदल रही है, भारत की तरफ देखने की दृष्टि बदल रही है। तो भारत में एक तरफ भारत की 30 ट्रिलियन की उस संभावित अर्थव्यवस्था में 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर होगा, और वहीं भारत में जो 2,30,000 करोड़ रुपए का आय जो है विदेशी मुद्रा की जो ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर से होती है, ये भी लगभग इसमें जो है 10 गुना की अभिवृद्धि होगी। तो भारत में टूरिज्म सेक्टर भारत की इकोनॉमी का ड्राइवर भी बनेगा, बड़ा स्टेक होल्डर होगा, और क्योंकि जैसा मैंने कहा ये डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी होने के कारण से बहुत सारे रोजगार का अवसर पैदा करती है। जब हम उस मुकाम तक पहुंचेंगे जिस लक्ष्य को लेकर के प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम एग्रीकल्चर के बाद में सबसे बड़े एम्प्लॉयमेंट जनरेटर सेक्टर होंगे।
1: जी बिल्कुल, इसी में दो और पहलू हैं मंत्री जी। छोटे राज्यों की बात करें, बिहार में महाबोधि मंदिर कॉरिडोर की बात हुई, विष्णुप्रयाग मंदिर की बात हुई, साथ

0: साथ बिहार में जहां सीता माता का जन्म हुआ था वहां भी शुरुआत चल रही है, रामायण सर्किट महाभारत सर्किट की भी चर्चा जोरों पर रही, इन सब का क्या रिस्पॉन्स आप देख रहे हैं?
1: देखिए, इन योजनाओं पर हम राज्यों के साथ में निरंतर बातचीत करते हुए इस पर आगे बढ़ने के लिए काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे कॉरिडोर्स या विषय हो सकते हैं जिसको स्तंदन करने के लिए जिस पर हम काम कर रहे हैं। हिस्टोरिकल ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, नेचर बेस्ड ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, ट्रैकिंग ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, बुद्धिस्ट बेस्ड टूरिज्म के ट्रेल्स काम कर रहे हैं, हम वाइल्ड लाइफ टूरिज्म के ट्रेल पर काम कर रहे हैं। इसलिए बहुत सारी ट्रेल्स पर एक साथ में काम हो रहा है और क्योंकि संभावनाओं का द्वार बहुत बड़ा है इसलिए हम नए डेस्टिनेशंस डेवलप करने के लिए भी प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण से उनके विजन के साथ में काम कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से पर्यटन के क्षेत्र में एक बड़ा उछाल दिखाई दे रहा है, निश्चित रूप से आने वाले समय में सस्टेनेबिलिटी के लिए, नए अनुभवों की उपलब्धता को बनाए रखने के लिए, बढ़ाने के लिए हमको नए अनुभव सृजित करने पड़ेंगे। जहां एक तरफ हम अपनी सभ्यतागत धरोहर, चाहे वो राखीगढ़ी की आर्कियोलॉजिकल साइट होगी वहां से लेकर के और चित्तौड़ के किले की ऐतिहासिक साइट तक, उन सब को नए सिरे से ग्लोब जो है देश परियोजना के तहत डेवलप करने के लिए काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ 50 से ज्यादा विश्व स्तरीय आइकॉनिक डेस्टिनेशंस नए बनाने के ऊपर भी हम माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं।
0: अगर चर्चा को थोड़ी आगे बढ़ाएं, पांडुलिपियों के संरक्षण पर प्रधानमंत्री का बहुत जोर रहता है, ज्ञान भारतम मिशन चलाया जा रहा है पांडुलिपियों के संरक्षण और उसमें AI तकनीक का इस्तेमाल करके उनका डिजिटलाइजेशन, कुछ उसके बारे में बताएं।
1: देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब विरासत के संरक्षण की बात की तब उनका मार्गदर्शन था कि हमको अपनी बौद्धिक संपदा की समृद्ध विरासत का संरक्षण भी करना चाहिए। भारत के हजारों साल के निरंतरता के सभ्यतागत इतिहास में भारत के ऋषियों ने, मनीषियों ने जो अनुभूत ज्ञान अर्जित किया, जो समृद्ध ज्ञान की धरोहर खड़ी की गई थी, वो कालांतर में अंग्रेजों की कुत्सित नीतियों के चलते हुए और उससे पहले पश्चिम से आए हुए आक्रांताओं के आक्रमण के समय में नष्ट कर दिए जाने के भय से उनको दबा छिपा करके रखने की पद्धति बन गई थी। दुर्भाग्य से आजादी के बाद में भी जिस तरह की मानसिकता के लोग सत्ता के सिंहासन पर बैठे थे, जो सिर्फ जन्म से भारतीय थे, बाकी मन से, विचार से, आत्मा से, सोच से वो कहीं भारतीय नहीं थे। भारतीय परंपराओं के प्रति, सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति, भारत के ज्ञान के प्रति उनके मन में श्रद्धा का भाव नहीं था। वो पाश्चात्य परंपरा से और पाश्चात्य सोच से प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने भी उदासीनता रखी। ये हमारी हजारों साल की जो है बौद्धिक संपदा धीरे धीरे जीर्ण शीर्ण हो रही थी। प्रधानमंत्री जी ने कहा चिन्हित किया जाना चाहिए और उनका मार्गदर्शन का था कि इनको चिन्हित करके मात्र संरक्षण करने से काम चलेगा। किसी एक मैन्युस्क्रिप्ट को अगर हम शिष्य संहिता को अगर हम डिजिटाइज कर देंगे, उसका डिस्क स्कैन करके डिजिटल वर्जन को अपलोड कर देंगे, उसको हम सुरक्षित तो कर पाएंगे। उसको अगर क्षरण हो रहा है तो उसको कुछ सालों के लिए, आने वाले कुछ सदियों के लिए हम उसको एक बार फिर कंजर्व करके शायद रख तो पाएंगे, लेकिन आज के वर्तमान संदर्भ में वो उपयोगी हो ये नहीं कर पाएंगे। तो जो हमारा अथाह ज्ञान का सागर है ये वर्तमान में विश्व के उपयोग में आए, इसके लिए आवश्यक है। और उनका मार्गदर्शन था कि हम तकनीकी का उपयोग करके इसको कंप्यूटर रीडेबल फॉर्मेट में लेकर के आए ताकि आज की उपलब्ध तकनीकियों के आधार पर उनको देश और दुनिया की विभिन्न प्रचलित भाषाओं में परिवर्तित किया जा सके, ट्रांसलिटरेट किया जा सके। हमने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में इस विषय से जुड़े हुए सारे विशेषज्ञों को बुलाया। 3 दिन तक, सुबह से लेकर रात तक, देर रात तक सभी लोगों ने अलग अलग सेक्टर्स में, जिसमें पांडुलिपियों को रखने वाले भी थे, उनके कंजर्वेशन पे काम करने वाले भी लोग थे, एंडोलॉजिस्ट भी थे, टेक्नोलॉजी के लोग भी थे, जो भाषाएं डिसाइफर्ड नहीं है उनके डिसाइफरमेंट के लिए काम करने वाले विशेषज्ञ थे, ऐसे लोगों ने अलग अलग वर्टिकल्स में बैठ करके जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमने दिए थे, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट उन्होंने आइडेंटिफाई किए थे, उसके सोल्यूशन और उसका रोडमैप बनाने पर विचार विमर्श किया। उन सबके प्रेजेंटेशन ने प्रधानमंत्री स्वयं 3 घंटे तक बैठ करके सुने और फिर आगे उसका एक रोडमैप उनके मार्गदर्शन में बना। हमने अभी 2026 के मार्च के 20 तारीख को एक ऐप लॉन्च करते हुए प्रधानमंत्री से लॉन्च करवा करके एक सर्वे देश में प्रारंभ किया कि मैन्युस्क्रिप्ट जिसके पास में भी है वो उसका फोटो, उसका मेटा डेटा अपलोड करें। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि 1,90,00,000 से ज्यादा ऐसे ग्रंथ जो है वो लोगों ने अपलोड किए, उनकी सूचना अपलोड की। हमने वेरिफिकेशन का प्रोसेस, क्योंकि कहीं

0: डुप्लीकेशन नहीं हो, डी डुप्लीकेशन भी आवश्यकता थी, कहीं हो सकता है कि गलत एंट्री आ जाए, इन सब का ध्यान में रखते हुए इंडिविजुअल एंट्री को वेरीफाई करके हमने अपनी रिपोजिटरी पर रखना शुरू किया है, वो संख्या भी 1,08,00,000 को क्रॉस कर चुकी है। ऐसे में मैं मानता हूं कि आने वाले समय में जब ये सारी बौद्धिक संपदा, ये सारी धरोहर संरक्षित भी होगी और इस सारी धरोहर और संपदा को आज का विश्व जान सकेगा, आज विज्ञान पढ़ने वाले हम सब लोग, आप और मैं, जिस विषय को और जिन पुस्तकों को पढ़ करके जो हमको पढ़ाया गया, हम जिसको पढ़ करके सीखे, वो ये कहता है कि धरती सूर्य के चक्कर लगाती है, गैलीलियो ने सिद्ध किया था लगभग 400 वर्ष पूर्व। जब उसने ये कहा था तब उसको कितनी तरह की कठिनाइयों और यातनाओं को झेलना पड़ा था, सूली पे लटकाने तक का उपक्रम किया गया था, लेकिन हम मानते हैं कि उन्होंने ये विश्व में सबसे पहले वैज्ञानिक रूप से प्रतिस्थापित किया। लेकिन भारत की बौद्धिक संपदा ये 400 साल पहले भारत की मेनुस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है कि 2000 साल पहले ऋषि आर्यभट्ट ने स्थापित कर दिया था कि सूर्य और धरती के बीच में कितनी दूरी है, इस सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, धरती सूर्य का चक्कर लगाने के लिए कितना समय लेती है, धरती अपने एक्सिस पर घूमने में कितना समय लेती है, धरती कितने डिग्री कोण में झुकी हुई है, धरती और चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी है, चंद्रमा का सर्कमफेरेंस कितना है और वो धरती का चक्कर लगाने में कितना समय लगाता है, इसके अतिरिक्त अन्य ग्रहों और उन ग्रहों के उपग्रह क्या है, उस सबका रचना संसार उन्होंने पुस्तक में लिखा हुआ था। जब मैं आपसे पूछता हूं कि एक भारत की आने वाली पीढ़ी का बच्चा, चाहे जैन अल्फा होगी, बीटा होगी, जैन जी होगी, जब ये पढ़ेगा कि जो विज्ञान की किताबों में हमको पढ़ाया जाता है 400 साल पहले जिस खोज को यूरोप में होने की बात की जाती है, वो गर्व करते हैं, वो हमारे ऋषि, हमारे पूर्वज जो है 2500 साल पहले भी जानते थे, जब वो ये अनुभव करेगा कि जब पूरा विश्व और विश्व के लगभग सब देशों जो आज अपने आप को विकसित होने का दम्भ भरते हैं, अभिमान करते हैं, वो जब अपने आप को पशु से डिस्टिंक्ट करने के लिए, अलग दिखाने के लिए या अपनी लज्जा छुपाने के लिए प्रयासरत है, जब वो पेड़ की छाल या जानवर की खाल लपेट रहे थे, तब हमारे यहाँ जो है वो भरत मुनि नाट्य शास्त्र लिख रहे थे, और उस नाट्य शास्त्र में वो मंच सज्जा कैसे हो, फेस एक्सप्रेशन कैसे हो, रस की अभिव्यक्ति कैसे हो, व्यक्ति की आंखों का और भावों की अभिव्यक्ति का सामंजस्य क्या है, हाथ की उंगलियों का लस्य क्या है, बॉडी का जेस्चर्स क्या होते हैं, किस तरह की ड्रेस होती है, क्या कलर कॉम्बिनेशन होता है, इन सब के ऊपर वो लिखित में शोध करके अपने ग्रंथ लिख रहे थे। हमारा भारत कितना समृद्ध था, ये जब हमारी नई पीढ़ी जानेगी तब वो भारत के प्रति गर्व की अनुभूति करेगी, और जिस देश और समाज के लोग अपने राष्ट्र पर, राष्ट्र की परंपराओं पर, राष्ट्र के इतिहास पर, देश की मान्यताओं पर गर्व करते हैं, वो देश निरंतर प्रगति करता है। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये जो ज्ञान भारत मिशन है, ये निश्चित रूप से इस देश को परिवर्तित करने वाला होगा, इस देश के ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत बड़ा योगदान करने वाला होगा, और न केवल भारत के प्रति, अभी तो भारत के प्रति पूरे विश्व की देखने की दृष्टि बदलेगी, और इसमें छुपा हुआ अकूत ज्ञान और संपदा जो है वो विश्व के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगी।
1: अब थोड़ी चर्चा वंदे मातरम की कर लेते हैं। 150 वर्ष पूरे हुए हैं, राष्ट्रीय उत्सव मनाया जा रहा है, संस्कृति मंत्रालय की तरफ से कई तरह की पहल की गई, राष्ट्रीय चेतना का एक मंत्र था सिर्फ एक गीत न होकर वंदे मातरम, क्या क्या कार्यक्रम हो रहे हैं और किस तरह की योजनाएं हैं इस दिशा में?
0: वंदे मातरम का गीत वो केवल एक गान नहीं, उस समय की परिस्थिति की कल्पना कीजिए जब अंग्रेजों का दमन चक्र चरम पर था, देश और देश के बारे में विचार करना, देश और देश के भक्ति की बात करना, परतंत्रता से मुक्ति की बात करना, उसके लिए अनेक अत्याचार होते थे, अनेक यातनाएं सहन करना पड़ती थी, और देश जो है मानसिक रूप से देशवासी और देश के उस समय के लोग टूट रहे थे। उस समय पे बंकिम बाबू ने जो ये अमर गीत लिखा, इस गीत ने एक भारत के उस कम मानसिकता की कमजोरी के उन्मूलन के लिए काम किया, और दूसरा भारत के विभिन्न हिस्सों में जो बायर कालांतर में अलग अलग तरह से अलग अलग जगह पर स्वतंत्रता के लिए अलग अलग मार्ग से संघर्ष हो रहा था, उस सबको एकता के सूत्र में निबद्ध करने का काम किया, और वंदे मातरम का यह अमर गीत जिसने हजारों लोगों को बलिदान होने के लिए प्रेरित किया, समर्पित करने के लिए प्रेरित किया, और उनके बलिदान से इस गीत के माध्यम से, क्योंकि उनके अंतिम शब्द वो मतंगिनी हाजरा से लेकर के अनेक अनेक ऐसे लोग होंगे जिनके जीवन के अंतिम शब्द पंख फांसी के फंदे पर झूलने से पहले या सीने पर गोली खाने के पहले, या वीर सावरकर जैसे लोगों ने कोड़ों की मार खाते हुए कोल्हू में बैल में

0: जुते हुए भी जो वंदे मातरम का उद्घोष किया, उसने लाखों लोगों को देश की आजादी की लड़ाई के साथ जुड़ने का मार्ग प्रशस्त किया था। इसलिए वंदे मातरम भारत की आत्मा का, भारत की सांस्कृतिक चेतना का गीत था। इस अमर गीत के जब 150 साल पूरे हुए, ये दुर्भाग्य था कि आजादी से पहले जिस तरह के विचार के लोग थे, और जैसा मैंने कहा कि उनके हृदय में कहीं भारत की चिति और भारत की सांस्कृतिक परंपराओं के प्रति इस तरह का प्रबल वेग नहीं था, उन लोगों ने वंदे मातरम के विभाजन को स्वीकार किया। जिस वंदे मातरम के विभाजन ने देश के विभाजन का मार्ग प्रशस्त किया, जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा, उस वंदे मातरम के एहसास के साथ में, उस वंदे मातरम की भावना के साथ में, वंदे मातरम के गीत के साथ में अपने आप को खपा देने वाले लोगों की प्रेरणा प्राप्त करते हुए, इस महत्वपूर्ण समय में जब देश 140 करोड़ लोगों की ताकत के आधार पर विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ने के महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है, तब वंदे मातरम एक बार फिर प्रेरणा का पुंज बने। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसके लिए साल भर तक इस 150वीं शती पर स्मरणोत्सव आयोजित करने का हम सबको मार्गदर्शन दिया। हमने उस पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला प्रारंभ की। अलग अलग जगह पर इसके निमित्त कार्यक्रम हो, अलग अलग विधाओं के कार्यक्रम हो, उन सबको आयोजित करने पर श्रृंखला प्रारंभ की। इसके अतिरिक्त इस पर एक हर एक व्यक्ति इसके साथ में जुड़े, जो वंदे मातरम का डिजिटल प्लेटफॉर्म हमने बनाया, उस प्लेटफॉर्म पर भारत के लोग खुद एकत्रित होकर के अपने स्वर में वंदे मातरम को गा करके अपलोड करें, वंदे मातरम के साथ में उन लोगों को जोड़ने के लिए, प्रेरणा को प्राप्त कर सके, ऐसा अवसर प्रदान करने के लिए हमने एक प्लेटफॉर्म सृजित किया, जिस पर करोड़ों लोगों ने आकर के वंदे मातरम का गायन करते हुए रजिस्टर किया। वंदे मातरम और वंदे मातरम से जुड़े हुए विषयों की देश भर में अनेक जगह पर प्रदर्शनी आयोजित की गई। वंदे मातरम के इतिहास से जुड़े हुए अनेक गोष्ठियां आयोजित की गई, विचार विमर्श आयोजित किए गए और किए जा रहे। देश भर एक साथ में, एक जगह पर एक साथ में वंदे मातरम का गायन करे, इस तरह के कार्यक्रम आयोजित हुए। और उनके साथ साथ में वंदे मातरम पर अलग अलग तरह की, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के अनुकूल फिल्म्स बन सके, वीडियो मटेरियल बन सके, अपने अपने तरह से लोग वीडियो मटेरियल बनाए, इसके लिए कॉम्पिटिशन आयोजित किए, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने अब तक अपने कंटेंट अपलोड किए। इस तरह से पूरे देश में वंदे मातरम को पूरे देश को जोड़ने और एक राष्ट्रभक्ति का ज्वार हम पुनः इस महत्वपूर्ण समय में खड़ा कर सकें, जो उतना ही प्रासंगिक और महत्वपूर्ण है जितना आजादी की लड़ाई थी, इस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम निरंतर काम कर रहे हैं।
1: दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है मंत्री साहब, और हम बात योग की करें, आयुर्वेद की करें या भारतीय भाषाओं की करें, दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचाना, जिसे आज आधुनिक दौर में सांस्कृतिक कूटनीति भी कहते हैं, संस्कृति मंत्रालय इस दिशा में किस तरह की पहल कर रहा है?
0: ठीक है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके इनिशिएटिव पर जिस तरह से योग पूरे विश्व तक पहुंचा, आज दुनिया के हर देश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को, जो अभी आने वाले दिनों में 21 तारीख को आने वाला है
1: जी,
0: पूरा विश्व योगमय हो जाता है, ऐसा हम सब देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन विषय वहां तक नहीं है। मुझे, क्योंकि दुनिया के अनेक देशों में जाने का सौभाग्यपूर्ण अवसर माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से मिलता है, डे टू डे लाइफ में भी योग की एक्सेप्टेबिलिटी एज ए वेलनेस प्रैक्टिस, ए बैलेंसिंग प्रैक्टिस इन द लाइफ, वो अपनाने की में बहुत बड़ी गति मिली है। लाखों लाखों लोगों के जीवन का योग हिस्सा बना है, और निश्चित रूप से उसके माध्यम से भारत के प्रति सम्मान बढ़ा है। भारत ने जिस तरह से आर्थिक दृष्टि से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रगति की, विभिन्न वैश्विक प्लेटफॉर्म्स पर भारत की प्रासंगिकता बढ़ी, इंपॉर्टेंस बढ़ी, भारत ने एक सदस्य देश से आगे बढ़ करके माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से विभिन्न विधाओं में एक लीडरशिप का रोल लेना प्रारंभ किया, भारत ने जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, और इन सब के चलते हुए भारत की तरफ देखने की दृष्टि जिस तरह से विश्व की बदली, मैं मानता हूं कि उसके कारण से भारत की सांस्कृतिक परंपराओं, भारत के ज्ञान, भारत से निकले हुए विषयों की एक्सेप्टेबिलिटी भी पूरे विश्व भर में बढ़ी। हमने योग की बात की, हम भारत की संस्कृत की बात कर सकते हैं। आज दुनिया के 100 टॉप यूनिवर्सिटीज में से 75 में जो है संस्कृत का विभाग काम करता है, लगभग 40 से ज्यादा विश्वविद्यालयों में वेद अध्ययन केंद्र खुले हैं।

0: या खुल रहे हैं। इसके अतिरिक्त भारत की जीवन पद्धति, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मिशन लाइफ की बात की, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ रही है क्योंकि क्लाइमेट चेंज के थ्रेट से सारी दुनिया घबराई हुई है। भारत की कृषि परंपरा, भारत की परिवार व्यवस्था, भारत के गौवंश, इन सब की डिमांड पूरी दुनिया में नए सिरे से बढ़ रही है। भारत अब केवल दुनिया के लिए एक देश नहीं, भारत दुनिया के लिए एक इंस्पायरिंग नेशन के रूप में खड़ा हो रहा है। और भारत जिस दिशा, जिस गति से प्रगति कर रहा है, आज भारत विश्व के लिए एक भरोसेमंद मित्र और पार्टनर के रूप में खड़ा हो रहा है। हम भगवान बुद्ध के रेलिक्स को लेकर के दुनिया के विभिन्न देशों में गए, निश्चित रूप से उसका बहुत बड़ा कूटनीतिक प्रभाव पड़ा है। और इन सब विषयों को लेकर के भारत की छवि, जो कभी भ्रष्टाचार से ग्रसित देश, कभी कमजोर देश, आतंकवाद से पीड़ित देश, नक्सलवाद से ग्रसित देश के रूप, छवि के रूप में बनी हुई थी, आज एक सशक्त आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते हुए देश की तरह छवि बनी है।
1: आपसे एक और सवाल समझना चाहेंगे कि जब हम बात अमृतकाल की करते हैं और 2047 में विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की बात करते हैं, तो संस्कृति मंत्रालय किन भविष्य की योजनाओं पर काम कर रहा है?
0: देखिए, आजादी के 100 वर्ष पूरे करने तक देश विकसित देश बने, एक बहुत विजनरी और बहुत बड़ा संकल्प देश के प्रधानमंत्री ने लिया। जो देश 2014 से पहले अविश्वास के भाव में या आत्मविश्वास की कमजोरी से ग्रसित था, जहां व्यवस्था पर से विश्वास डगमगाया हुआ था, उस देश को 12 साल के इस कालखंड में, जो बहुत छोटा है किसी देश के परिवर्तन के दृष्टिकोण से, उससे बदल करके विश्वास से भरे हुए देश के रूप में परिवर्तित करके हम विकसित हो सके, इस दिशा में ले जाने का एक साहसिक काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। देश के 140 करोड़ लोगों की ताकत पर हम कदम दर कदम, दिन प्रतिदिन उस दिशा में आगे बढ़ रहे। इस मंत्र के साथ में हम भारत को विकसित करते हैं कि भारत विरासत का संरक्षण करते हुए विकसित होगा, तो निश्चित रूप से संस्कृति मंत्रालय की भूमिका बहुत बढ़ती है। जब कोई देश प्रगति करता है, विकसित होता है, तो निश्चित रूप से सम्मान अर्जित। मैंने एक दिन कहीं ऑन एयर इंटरव्यू में कहा था, और मैंने वो पत्रकार मित्र जो बातचीत कर रहे थे उनसे कहा, क्या आप कभी किसी ऐसे विक्षिप्त व्यक्ति के घर गए जो एक छोटे से झोंपड़ी में कहीं रह रहा हो, चारों तरफ दुर्गंध हो, महीनों से नहाया नहीं हो, कपड़ों में से दुर्गंध आ रही हो, बालों में शायद कीड़े रंग रहे हों, चारों तरफ बर्तन गंदे पड़े हों, मैले कुले चले कपड़े पड़े हों, सब कुछ अव्यवस्थित हो, क्या आप वहां जाकर के आपके मन में क्या भाव होगा जब आप जाएंगे? या तो करुणा का भाव होगा
1: जी,
0: या घृणा का भाव होगा, या दया का भाव होगा, या दान का भाव होगा। आपके मन में सेंस ऑफ ओनरशिप उसके लिए नहीं होगी। तो भारत की छवि जब ऐसी थी, तब देश और दुनिया के लोगों के भारत के प्रति सेंस ऑफ ओनरशिप नहीं थी। अब जब परिस्थितियां बदल गई, अब जब भारत विकसित होने वाला है, विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो भारत की तरफ देखने की दृष्टि और भारतीयों की भारत को ओन करने की दृष्टि बदली है, का विचार बदला है, भाव बदला है। और ये जब भाव बदलता है, जब देश अपनी सांस्कृतिक परंपराओं पर गर्व करना शुरू करता है, जब देश अपनी विरासत पर गर्व करना शुरू करता है, तब राष्ट्रीय भाव से उत्प्रोत होकर के जब काम करने लगता है, तो राष्ट्र का संकल्प स्वतः सिद्ध हो जाता है। इसे संकल्प को सिद्ध करने में भी संस्कृति मंत्रालय और भारत की सांस्कृतिक परंपराओं का पुनरुद्घाटन, भारत का सांस्कृतिक पुनर्जागरण निश्चित रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। लेकिन उसके साथ साथ में भारत जब विकसित होगा, तब भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, परंपराएं, भारत की एकता में विविधता और विविधता में एकता, ये दोनों विश्व को भारत की तरफ आकर्षित करने और भारत की तरफ सम्मान की दृष्टि से देखने का एक नया नजरिया जो है वो सशक्त रूप से पैदा करेगी।
1: कार्यक्रम के अंत में युवाओं को क्या संदेश देंगे कि वो अपनी भारतीय संस्कृति से जुड़ें, उन पर गर्व करें और उनका प्रचार प्रसार भी करें?
0: देखिए, भारत युवाओं का देश है और युवाओं की ताकत के आधार पर ही भारत विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। वो हमारी सबसे बड़ी धरोहर है और ये धरोहर देश की सांस्कृतिक परंपराओं के साथ में जुड़े हैं। उसके लिए मैं कहूंगा कि हम सब लोग जब कभी भी अवसर मिले, जहां कहीं भी अवसर मिले, जैसा भी अवसर मिले, हम देश की विरासत के साथ में, सांस्कृतिक संपदा के साथ में, धरोहर के साथ में, परंपराओं के साथ में जुड़े। میں یہ بالکل

0: नहीं कहता कि वो सभी तीर्थ यात्रा के लिए जाएं, वो भावना का विषय है, वो श्रद्धा का विषय है, वो भारत को देखें, भारत की विविधता को अनुभव करें, भारत की सांस्कृतिक वैधव्य को, जो विविधता है, वैविध्य को अनुभव करें, वो भारत की जो है नेचुरल लैंडस्केप की जो डाइवर्सिटी है उसको अनुभव करें, भारत के भोजन की जो समृद्ध परंपराएं हैं और उनका जो वैविध्य है उसको अनुभव करें, और उसके साथ साथ में भारत को जाने और पहचाने। जब वो ये सब करेंगे तो निश्चित रूप से भारत के प्रति उनके मन में श्रद्धा और सम्मान दोनों बढ़ेगा और वो उनको भारत के लिए जुट जाने के लिए अभिप्रेरित करेगा। आइए हम सब मिलकर के भारत को जानना प्रारंभ करें, भारत को पहचानना प्रारंभ करें, भारत को जीना प्रारंभ करें और भारत को जान पहचान करके भारत के लिए जीना प्रारंभ करें।
1: कहते हैं नील गगन में सांध्य तारा का, पावस में प्रथम फुहारा का और माला में जो स्थान प्रथम मणि का रमणीय होता है वो ऐतिहासिक होता है। भारत के विकसित होने की इस यात्रा में संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय की जो पहल है वो इसी तरह की ऐतिहासिक पहल है। आकाशवाणी पॉडकास्ट में शामिल होने के लिए आपको बहुत बहुत आभार।
0: धन्यवाद।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन।
3: अभी आप सुन रहे थे सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर विशेष श्रृंखला। ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने को हैं। अब आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार संध्या।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व में विकास को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, सीमावर्ती क्षेत्रों में बाढ़ लगाने का काम शुरू। भारत ने अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन नीक्स को तलब कर भारतीय नाविकों वाले वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी हमलों का कड़ा विरोध किया। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने उत्तर कोरिया में ड्रोन घुसपैठ और शक्ति के दुरुपयोग के लिए पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को 30 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई। और पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम विदेश नीति के माध्यम से भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में सरकार के कदमों पर जानकारी दे रहे हैं।
5: पिछले 12 वर्षों में भारत अपनी साहसिक पहलों के दम पर एक मजबूत ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। इन पहलों में बड़े लक्ष्यों को हासिल करने का जज्बा और काम करने की लगन दोनों शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन कोशिशों को जिम्मेदारी और सबको साथ लेकर चलने की भावना से जोड़ा गया है, जिससे भारत की आवाज पूरी दुनिया में गूंज रही है। भारत ने इंडिया फर्स्ट के सिद्धांत को सबसे ऊपर रखते हुए अपनी विदेश नीति में नई ऊर्जा भरी है, पुराने रिश्तों को मजबूत किया है और नए दोस्त भी बनाए हैं। दुनिया भर में भारत के जुड़ाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्य है। नवंबर 2025 में श्रीलंका के पूर्वी तट पर चक्रवात दित्वा टकराया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े होकर

0: प्रसाद ने उन्हें तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। इस बचाव और राहत कार्य में भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना और आपदा प्रतिक्रिया के दलों ने मिलकर काम किया। भारत ने श्रीलंका को हर तरह की मदद दी। पानी साफ करने वाली किट, दवाएं व सर्जिकल उपकरण और 60 टन विशेष मशीनें शामिल थी। भारतीय नौसेना के जहाजों ने तमिलनाडु से 1000 टन से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टरों ने 264 लोगों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित निकाला और 50 टन सामग्री एयरलिफ्ट की। इसके अलावा वहां फंसे 2500 से ज्यादा भारतीयों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। चक्रवात दित्वा के बाद प्रभावित इलाकों में रास्तों को फिर से जोड़ने और मजबूत करने के लिए भारत ने 14 लोहे के अस्थायी पुल भेजे। भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए श्रीलंका के बंदरगाह और नागर विमानन उप मंत्री जनित रवान कोदितवक्कू ने कहा कि भारत ने श्रीलंका के लोगों के प्रति प्यार और अपनापन दिखाया है। भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता कोविड महामारी के दौरान देखने को मिली। भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल शुरू की जो इंसानों को ध्यान में रखकर की गई भारत की कूटनीति का एक बड़ा उदाहरण है। जनवरी 2021 से भारत ने 99 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज सप्लाई की है। इसमें 50 से ज्यादा देशों को तोहफे में दी गई और कोवैक्स पहल के जरिए दी गई डोज शामिल है। वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने अपनी पड़ोसी प्रथम नीति के अंतर्गत अपने पड़ोसी देशों को सबसे आगे रखा। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बांग्लादेश के रहने वाले फिजियोथेरेपिस्ट और योग शिक्षक डॉक्टर ज्योतिष को विश्वास ने कहा,
1: इंडिया जो किया हमारे लिए वैक्सीन वो टाइम पे फास्ट रिस्पॉन्स किया और भेज दिया, हम भी वो वैक्सीन लिया तो हमारे भी बहुत अच्छा हुआ। हमारा रिलेटिव्स और देशवासी को लिए वो एक बहुत अच्छा तोहफा था इंडिया से, तो इसलिए हम बहुत कृतज्ञ हूँ।
0: पिछले 12 वर्षों में वैक्सीन मैत्री, ऑपरेशन सागर बंधु जैसी पहलों के जरिए भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में आगे आया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्ष के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
3: भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
2: देश में 2014 में स्टार्टअप की संख्या लगभग 350 थी, अब 235,000 से अधिक स्टार्टअप और 131 यूनिकॉर्न है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत अब स्टार्टअप के मामले में विश्व का तीसरा प्रमुख देश है।
4: पिछले 12 वर्षों में सरकार द्वारा किए गए अनेक सुधारों जैसे स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत, अटल इंक्यूबेशन सेंटरों की स्थापना, फंड ऑफ फंड्स की व्यवस्था तथा अनुपालन प्रक्रियाओं को सरल बनाने जैसे कदमों ने भारत के उद्यमिता परिदृश्य को पूरी तरह बदल दिया है। आज देश का स्टार्टअप इकोसिस्टम डीप टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष, रक्षा, कृषि प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी और स्वच्छ ऊर्जा जैसे विविध क्षेत्रों तक विस्तारित हो चुका है। शिखर सम्मेलन में जिन स्टार्टअप्स को विशेष रूप से प्रदर्शित किया जाएगा उनमें मेडेव प्लस भी शामिल है। भारत फ्रांस इनोवेशन ईयर के अंतर्गत आयोजित यह सम्मेलन दोनों देशों के बीच उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप्स और वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत बनाने का प्रयास है। आकाशवाणी समाचार के लिए नीस फ्रांस से शैलेश मेनन जी की रिपोर्ट के साथ सकलैन अख्तर।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.telly-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की और तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। एक रिपोर्ट।
2: बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने ड्रोन, सीसीटीवी और आधुनिक निगरानी प्रणाली जैसी तकनीकों का उपयोग कर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने पर जोर दिया। श्री शाह ने कहा कि सीएपीएफ और जम्मू

0: कश्मीर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी पूरी यात्रा के दौरान शिविर स्थलों पर प्रबंधों की लगातार निगरानी करेंगे। उन्होंने तीर्थयात्रियों के पंजीकरण, रहने की व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाओं और आपदा प्रबंधन सहित सभी जरूरी सेवाओं के लिए पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री ने मौसम की मौजूदा स्थितियों और पूर्वानुमान के अनुसार तीर्थयात्रियों के जत्थों की आवाजाही को नियंत्रित करने के भी निर्देश दिए। यह भी कहा गया कि यात्रा से जुड़े सभी स्थानीय लोगों और जानवरों का पंजीकरण किया जाए और उन्हें QR कोड वाले पहचान पत्र जारी किए जाएं। दीपेंद्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगी। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाढ़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में ये जानकारी दी। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। उन्होंने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाढ़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जमीन के बदले आम आदमी को उचित कीमत दे रही है।
2: जमीन हैंडओवर करने का काम कर दिया, डेली हैंडओवर हो रहा है। अब तो 100 किलोमीटर के आसपास की जमीन हम लोग हैंडओवर कर दिया है। नॉर्थ बंगाल में कुछ एरिया जो चिकन लेग से लगा हुआ है उसमें फेंसिंग का काम BSF चालू भी कर दिया है। हम लोग समयबद्ध तरीके से भी पूरा करने का काम करूँ, ये देश की सुरक्षा का सवाल है।
1: कैबिनेट सचिव डॉक्टर TV सोमनाथन ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनः परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनः परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। नीट पुनः परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच NTA ने 21 जून को नीट UG पुनः परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि असैन्य जहाज पर जानलेवा हमला और खतरनाक साधनों का उपयोग गंभीर चिंता का विषय है और ये बात अमरीका राजनयिक को बताई गई। इसी तरह के हमले में जहाज पर तैनात 3 भारतीय मारे गए। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ प्रस्तावित समझौते पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बातचीत में जल्द ही सफलता मिल सकती है। एक रिपोर्ट।
4: पश्चिम एशिया के लिए ये नई कूटनीतिक कोशिश बहुत महत्वपूर्ण मोड़ पर हो रही है। राष्ट्रपति ट्रंप के हमले रद्द करने की घोषणा से कुछ समय के लिए ये उम्मीद जगी थी कि इलाके में बड़े टकराव को टाला जा सकता है। हालांकि ईरान का कहना है कि किसी भी अंतिम समझौते को मंजूरी नहीं मिली है और कई बड़े मुद्दे अब भी नहीं सुलझे हैं। मुख्य अड़चनों में ईरान का परमाणु कार्यक्रम, रोकी गई संपत्ति की बहाली और हॉर्मुज जल डमरू मध्य से जुड़ी भविष्य की सुरक्षा व्यवस्था शामिल है। भले ही बातचीत करने वाले पर्दे के पीछे काम कर रहे हों, लेकिन पूरे इलाके में सैन्य गतिविधियां जारी हैं, जिससे ये खतरा बना हुआ है कि कोई भी गलत कदम कूटनीतिक प्रगति को तेजी से पटरी से उतार सकता है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हॉर्मुज जलडमरू मध्य में भारतीय नाविकों वाले जहाजों पर ड्रोन हमले करने का आरोप लगाया है। उनका ये बयान भारत में अमेरिकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मिक्स को तलब कर हमलों का कड़ा विरोध करने के बाद आया है। दक्षिण कोरिया की अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को आज 30 वर्ष की जेल की सजा सुनाई। अदालत ने उन्हें उत्तर कोरिया के साथ तनाव बढ़ाने के लिए ड्रोन घुसपैठ का आदेश देने और दिसंबर 2024 में मार्शल लॉ लागू करने को उचित ठहराने का दोषी पाया। पूर्व रक्षा मंत्री किम योंग ह्यून को भी इस मामले में 30 वर्ष की सजा सुनाई गई है। PV सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपेई की चेन सू यू को हराया। सेमीफाइनल में उनका सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल

0: टूर्नामेंट में आज ग्रुप बी के मैच में सह मेजबान कनाडा का मुकाबला बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। 10वां आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप आज से इंग्लैंड और वेल्स में शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच रात 11 बजे से इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। मौसम विभाग ने कल असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल पूर्वोत्तर क्षेत्र बिहार, केरल, माहे, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों में तेज वर्षा की आशंका है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मानसून आज उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी, पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा तथा झारखंड में और आगे बढ़ गया है। कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कोंकण और गोवा में बिजली चमकने और तेज हवा चलने की संभावना है। अगले 2 दिनों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह के मौसम की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व में विकास को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का काम शुरू। भारत ने अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब कर भारतीय नाविकों वाले वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी हमलों का कड़ा विरोध किया। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने उत्तर कोरिया में ड्रोन घुसपैठ और शक्ति के दुरुपयोग के लिए पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को 30 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई। और पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी and I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi highlights government's efforts to further women-led development across diverse sectors. Home Minister Amit Shah says government is fully committed to ensure highest level of security and smooth pilgrimage experience to devotees of Amarnath Yatra. Fencing work begins in border areas of West Bengal, says Chief Minister Shubhendu Adhikari. New Delhi summons U.S. Chargé d'Affaires Jason Meeks to lodge strong protest over U.S. strikes on commercial vessels carrying Indian mariners. Seoul court sentences former South Korean President Yoon Suk-yeol to 30 years in prison over drone incursions into North Korea and abuse of power. And in badminton, PV Sindhu storms into women's singles semi-finals of Australian Open tournament in Sydney. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today highlighted that from financial inclusion and entrepreneurship to education, healthcare, sanitation, housing, sports, science and governance, women are playing a prominent role across diverse sectors. In a social media post, Mr. Modi said, the growing participation of women in emerging fields such as drone technology is opening new avenues of opportunity and transforming the development landscape across the nation. He noted that over the last 12 years, the NDA government has worked to further women-led development, and this is visible across sectors. Union Home Minister Amit Shah has said that the government is fully committed to ensuring the highest level of security and a smooth pilgrimage experience for devotees undertaking the Amarnath Yatra. He said this while chairing a high-level meeting in New Delhi to review the preparedness of the Sri Amarnath Yatra. Mr. Shah directed for creating impregnable multi-layered security grid along the pilgrimage route with the coordinative efforts of the Central Armed Police Forces, Jammu and Kashmir Police and all security agencies. Our correspondent reports that the Amarnath Yatra will begin on 3rd of July and conclude on the 28th of August.
2: Union Home Minister emphasized to further strengthen the security framework with extensive use of modern technologies such as drones, CCTV surveillance and advanced monitoring systems. Mr. Shah added that the senior officers of CAPF and the Jammu and Kashmir Police will continuously monitor arrangements at campsites throughout the pilgrimage route. He also emphasized for ensuring adequate arrangements for all essential services including pilgrim registration, accommodation, healthcare facilities and disaster management. With the

0: highlights government's efforts to further women-led development across diverse sectors. Home Minister Amit Shah says government is fully committed to ensure highest level of security and smooth pilgrimage experience to devotees of Amarnath Yatra. Fencing work begins in border areas of West Bengal, says Chief Minister Shubhendu Adhikari. New Delhi summons U.S. Chargé d'Affaires Jason Meeks to lodge strong protest over U.S. strikes on commercial vessels carrying Indian mariners. Seoul court sentences former South Korean President Yoon Suk-yeol to 30 years in prison over drone incursions into North Korea and abuse of power. And in badminton, PV Sindhu storms into women's singles semi-finals of Australian Open tournament in Sydney. For details of these stories and more, log on to our website www.newsoneir.gov.in and News on EIR app. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदा, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शमीम अहमद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुतनव्वे शोबों में ख्वातीन की क्यादत वाली तरक्की को मजीद मुस्तहकम करने की हुकूमत की कोशिशों को उजागर किया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि हुकूमत अमरनाथ यात्रा के लिए जाने वाले यात्रियों के लिए इंतहाई आला दर्जे की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने और उन्हें यात्रा का एक बिला रुकावट तजर्बा फराहम करने के तई मुकम्मल तौर पर पुरअज़्म है। मगरबी बंगाल के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि मगरबी बंगाल के सरहदी इलाकों में बाड़ लगाने का काम शुरू हो गया है। वजारत खारजा ने आज अमरीका के शाज़े डिफेयर जैसन मीक्स को तलब किया और भारतीय मल्लाहों को ले जा रहे कमर्शल जहाजों पर अमरीकी बहरी फोर्सेज के जारी हमलों के मुतालिक सख्त एहतजाज दर्ज किया। सियोल में एक अदालत ने जनूबी कोरिया के साबिक सदर उन सुक यूल को शुमाली कोरिया में ड्रोन कार्रवाई करने और अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करने के लिए 30 साल कैद की सजा सुनाई है। और बैडमिंटन में पीवी सिंधु सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट के ख्वातीन के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज इस बात को उजागर किया कि मालियाती शमूलियत और एंटरप्रेन्योरशिप से तालीम, हिफ्ज़ान सेहत, सफाई सुथराई, मकानात, खेलकूद, साइंस और हुक्मरानी तक ख्वातीन तमाम मुतनव्वे शोबों में अहम किरदार अदा कर रही हैं। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि उभरते हुए शोबों जैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी में ख्वातीन की बढ़ती हुई शराकत मवाके के नए दर खोल रही है और मुल्क भर में तरक्की के मंजरनामे की काया पलट कर रही है। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि पिछले 12 बरस में एनडीए हुकूमत ने ख्वातीन की क्यादत वाली तरक्की को मजीद बढ़ाने के लिए काम किया है और ये सभी शोबों में नुमाया है। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत अपनी मदद आप ग्रुपों को सरगर्म ताउन दे रही है जो ख्वातीन को माली एतबार से आजाद बनाने में अहम रोल अदा कर रहे हैं। जनाब मोदी ने भारत की नारी शक्ति के साइंस, खला और इख्तिरात जैसे शोबों में नुमाया होने वाले असरात पर खुशी का इजहार किया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि हुकूमत अमरनाथ यात्रा के लिए जाने वाले यात्रियों के लिए इंतहाई आला दर्जे की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने और उन्हें यात्रा का एक बिला रुकावट तजर्बा फराहम करने के तई मुकम्मल तौर पर पुरअज़्म है। जनाब शाह ने श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने की गरज से नई दिल्ली में आला सतह की एक मीटिंग की सदारत करते हुए ये बात कही। मीटिंग के दौरान उन्होंने हिदायत दी कि मरकजी मुसल्ला पुलिस फोर्सेज, जम्मू कश्मीर पुलिस और तमाम सिक्योरिटी एजेंसियों की मुश्तरका कोशिशों के साथ यात्रा के पूरे रास्ते पर नाकाबिले तस्खीर कसीर सतही सिक्योरिटी ग्रिड की तामीर की जाए। वजीर मौसूफ ने जदीद टेक्नोलॉजी जैसे ड्रोन, सीसीटीवी से निगरानी और जदीद तरीन निगरानी के निज़ामों को वसी पैमाने पर इस्तेमाल करते हुए सिक्योरिटी के पूरे फ्रेमवर्क को मजीद मुस्तहकम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। वजीर दाखिला ने कहा कि यात्रियों के रजिस्ट्रेशन, रिहाइश, सेहत की देखभाल से मुतालिक खिदमात, कुदरती आफात की सूरत में बंदोबस्त और तमाम दीगर ज़रूरी सहूलियात को यकीनी बनाने के लिए खातिरख्वाह इंतजाम किए जाएँ। फौज के सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी, कौमी सलामती के मुशीर अजित डोभाल, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और SSB के

0: डायरेक्टर जनरलों ने मीटिंग में शिरकत की। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई को शुरू होगी और 28 अगस्त को खत्म होगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी यूरोप के 2 मुल्कों फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरे के पहले मरहले के तहत 14 जून को फ्रांस के शहर नीस का दौरा करेंगे। वजीर आजम मोदी का यह दौरा खुसूसी अहमियत का हामिल है क्योंकि इस साल फरवरी में फ्रांस के साथ अपने ताल्लुकात को खुसूसी आलमी कलीदी शराकत दारी का दर्जा अता करने के बाद सदर इमैनुअल मैक्रों के साथ जनाब मोदी की ये पहली दो तरफा मुलाकात होगी। जनाब मोदी नीस से स्लोवाकिया रवाना होंगे। इसके बाद वजीर आजम G7 चोटी कॉन्फ्रेंस के लिए फ्रांस के इवान वापस लौटेंगे, जहां भारत आलमी खित्ते जनूब की अहम आवाज के तौर पर शिरकत करेगा। मगरबी बंगाल के सरहदी इलाकों में बाढ़ लगाने का काम शुरू हो गया है। मगरबी बंगाल के वजीर आला शुभिंदु अधिकारी ने मरकज में NDA हुकूमत के 12 साल मुकम्मल होने के मौके पर कोलकाता में मुनक़िदा एक प्रोग्राम में मीडिया को आज ये इत्तला दी। जनाब अधिकारी ने कहा कि लोग भारत बांग्लादेश सरहद पर बाढ़ लगाने के लिए अपनी जमीनें दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें मुनसिफाना कीमत देकर मगरबी बंगाल की हुकूमत आम आदमी की जमीनें ले रही है और इन जमीनों को BSF के हवाले कर रही है। वजीर आला ने कहा कि जमीन की मुंतकली का यह अमल जारी है और इस प्रोजेक्ट को कौमी सलामती का एक मामला करार दिया। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि सरहदों पर बाड़ लगाने का काम इंतहाई अहमियत का हामिल है ताकि दरअंदाजी को कतई रोका जा सके।
1: जमीन हैंडओवर करने का काम कर दिया, डेली हैंडओवर हो रहा है। अब तो 100 किलोमीटर के आसपास की जमीन हम लोग हैंडओवर कर दिया है। नॉर्थ बंगाल में कुछ एरिया जो चिकन लेग से लगा हुआ है उसमें फेंसिंग का काम BSF चालू भी कर दिया है। हम लोग समयबद्ध तरीके से ये भी पूरा करने का काम करूँ, ये देश की सुरक्षा का सवाल है।
0: मरकजी काबीना के सेक्रेटरी डॉक्टर TV सोमनाथन ने आज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के डायरेक्टर जनरल अभिषेक सिंह के साथ एक मीटिंग में नीट के दोबारा होने वाले इम्तिहान की तैयारियों का जायजा लिया। जायजे के दौरान जनाब सोमनाथन ने तमाम मुतालिका तरफेन के दरमियान गहरे तालमेल के साथ बिला रुकावट, शफाफ और महफूज दोबारा इम्तिहान मुनक़िद किए जाने को यकीनी बनाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत, रियासती सरकारें और जिला इंतजामिया नीट के दोबारा इम्तिहान को बिला रुकावट मुनक़िद किए जाने को यकीनी बनाने की गरज से गहरे तालमेल के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इससे कबल इस माह के आगाज में जनाब सोमनाथन मरकजी हुकूमत और मुतालिका एजेंसियों के सेक्रेटरियों के साथ इंतजामात का जायजा ले चुके हैं। इधर NTA ने इस माह की 21 तारीख को होने वाले NEET UG 2026 के दोबारा इम्तिहान के लिए इम्तिहान की विंडो में 15 मिनट का इजाफा किया है और इसे 180 मिनट से बढ़ाकर 195 मिनट कर दिया है। ये आकाशवाणी है। वजारत खारजा ने आज अमरीका के शाज डिफेयर जैसन मीक्स को तलब किया और खलीज उमान में भारतीय मल्लाहों को ले जा रहे कमर्शल जहाजों पर अमरीकी बहरी फोर्सेस के जारी हमलों के मुतालिक सख्त एहतजाज दर्ज किया। इन हमलों के नतीजे में पहले ही 3 भारतीय बाशिंदों की जानें तलब हो चुकी हैं। अमरीकी एलची को नई दिल्ली में वजारत खारजा ने अमरीकी उमूर के एडिशनल सेक्रेटरी ने तलब किया। वजारत खारजा ने एक बयान में कहा है कि उसने एक बार फिर शहरी जहाजरानी के खिलाफ इंतहाई मोहलिक कुव्वत के इस्तेमाल पर अपनी गहरी तश्वीश से उन्हें वाकिफ कराया। वजारत ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई नाकाबिले कबूल है और एक मुश्किल वक्त में एक हसास इलाके में बैनुल अक्वामी सरहदों में कारोबार के तहफ्फुज़, सलामती और इस्तेहकाम को कमजोर करती है। अमरीका के शाज़ डिफियर से दरख्वास्त की गई कि वो अपने हुक्काम को भारत की सख्त तश्वीश से वाकिफ कराएं और इस बात को यकीनी बनाएं कि खित्ते में कार्रवाई में शामिल अमरीकी फोर्सेज शहरियों की जिंदगी के नुकसान की रोकथाम के लिए सभी जरूरी इकदाम करें। ये दूसरी मरतबा है कि अमरीकी LG को वजारत में तलब किया गया। भारत के 3 मल्लाह जिनके बारे में इब्तदाई इत्तलात मिली थी कि वो लापता हैं, तस्दीक हो गई है कि वो एक हमले में अपनी जानें गंवा बैठे। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आज ईरान पर इल्जाम लगाया कि वो आबनाए हुरमुस से रवाना होने वाले भारतीय जहाजों पर ड्रोन हमले कर रहा है। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में जनाब ट्रंप ने इन वाकयात को कतई तौर पर नाकाबिले कबूल करार दिया। उनका ये बयान भारत की जानिब से अमेरिका के शॉज़ डिफेयर जैसन मीक्स को तलब किए जाने और खलीज उमान में भारतीय मल्लाहों को ले जा रहे कमर्शल जहाजों पर अमरीकी बहरी फौजों के जारी हमलों पर सख्त एहतजाज दर्ज कराने के बाद सामने आया है। इससे कबल दिन में ईरान ने कमर्शल जहाजों पर अमरीकी हमलों की मजम्मत की थी और इन्हें हलाकत खेज करार दिया था और वॉशिंगटन पर लाकानूनियत पर मबनी कार्रवाई में मुलविस होने का इल्जाम लगाया था, जिससे आलमी अमन और समुद्री सरहद की सलामती को खतरा है। सोशल मीडिया पर पोस्ट

मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़। और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:30 हुए हैं। प्रस्तुत है गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम अंजुमन।

जब चांद की रोशनी में किसी का चेहरा नजर आने लगे, जब हर बात में किसी का जिक्र शामिल हो जाए, तब दिल की धड़कनें गजल बनकर लबों पर उतर आती हैं।

0: मोहब्बत केवल साथ निभाने का नाम नहीं, बल्कि हर हाल में किसी को दिल में बसाए रखने का एहसास है। कुछ रिश्ते वक्त के सीमाओं से परे होते हैं, जो सांसों के साथ नहीं, रूह के साथ चलते हैं।
1: आपकी बड़ी पहले से फरमाइश आई हुई है, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सारा है।

तेरी हर चाप से, यानी हवा के झोंके से कुछ पत्ता हिलाया, पर्दा हिल गया, आहट आहट को चाप कहते हैं, कि तेरी हर चाप से चलते हैं ख्यालों में चिरागीनी खुशी, कि शायद महबूब आ गया वो चिराग।

0: इसी के साथ गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम अंजुमन अब समाप्त होता है। मीडियम वेव के मीटर पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विज्ञान पत्रिका।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक उदय प्रताप इंटर कॉलेज भोजूबीर वाराणसी, वाराणसी की अति प्राचीनतम शिक्षण संस्थान उदय प्रताप इंटर कॉलेज भोजूबीर वाराणसी।
2: क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य की तलाश में हैं? आइए जुड़िए उदय प्रताप इंटर कॉलेज भोजूबीर वाराणसी से, जहां शिक्षा के साथ संस्कार भी दिए जाते हैं। अनुभवी शिक्षक, उत्कृष्ट शैक्षणिक वातावरण, आधुनिक शिक्षण पद्धति और विद्यार्थियों के लिए सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान। यहाँ से निकले छात्र आज विभिन्न क्षेत्रों में सफलता की मिसाल हैं। उदय प्रताप इंटर कॉलेज भोजूबीर वाराणसी।
0: इस कार्यक्रम में सबसे पहले लीजिए सुनिए नीरज कुमार शुक्ला की वार्ता, हमारे आसपास की अदृश्य तरंगे। प्रस्तुतकर्ता अशोक कुमार।
3: हमारे आसपास की अदृश्य तरंगे, एक जानकारी। जब हम सुबह उठते हैं और अपना मोबाइल फोन देखते हैं, किसी मित्र को कॉल करते हैं, टीवी चलाते हैं, इंटरनेट का उपयोग करते हैं या घर का रिमोट दबाते हैं, तब हम अनजाने में ऐसी शक्तियों का उपयोग कर रहे होते हैं जिन्हें हम अपनी आँखों से देख नहीं सकते। हमारे चारों ओर हर समय अनगिनत अदृश्य तरंगे घूम रही हैं। ये तरंगे न दिखाई देती हैं, न छुई जा सकती हैं, फिर भी वे हमारे जीवन के हर छोटे बड़े कार्य को प्रभावित करती रहती हैं। विज्ञान ने यह सिद्ध कर दिया है कि प्रकृति केवल वही नहीं है जो हमारी आँखों को दिखाई देती है। इस संसार में अनेक ऐसी शक्तियाँ मौजूद हैं जो अदृश्य होते हुए भी अत्यंत प्रभावशाली हैं। अदृश्य तरंगे भी उन्हीं में से एक हैं। ये तरंगे कभी हमारी आवाज को हजारों किलोमीटर दूर पहुंचा देती हैं, कभी डॉक्टरों को हमारे शरीर के अंदर झांकने में सहायता करती हैं, और कभी अंतरिक्ष में मौजूद ग्रहों और तारों की जानकारी पृथ्वी तक पहुंचाती हैं। यदि हम कल्पना करें कि एक दिन के लिए भी ये अदृश्य तरंगे समाप्त हो जाएं, तो आधुनिक संसार लगभग ठहर जाएगा। मोबाइल फोन बंद हो जाएंगे, इंटरनेट काम नहीं करेगा, टीवी और रेडियो शांत हो जाएंगे तथा उपग्रह से संपर्क टूट जाएगा। इसलिए यह कहना बिल्कुल उचित होगा कि अदृश्य तरंगे आधुनिक जीवन की धड़कन बन चुकी हैं। तरंग क्या होती है? विज्ञान की भाषा में तरंग ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने का माध्यम है। जब किसी वस्तु में कंपन उत्पन्न होता है, तब तरंगे पैदा होती हैं। यदि किसी शांत तालाब में एक छोटा पत्थर फेंका जाए, तो

पानी में गोल गोल लहरें बनने लगती हैं। ये लहरें धीरे धीरे दूर तक फैलती जाती हैं। यही तरंगों का सबसे सरल उदाहरण है। उसी प्रकार जब हम बोलते हैं तब हमारे गले के भीतर कंपन उत्पन्न होता है और ध्वनि तरंगें हवा में फैल जाती हैं। तरंगों की कुछ मुख्य विशेषताएं होती हैं आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य, आयाम, गति। आवृत्ति 1 सेकंड में होने वाले कंपन की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। इसे हर्ट्ज में मापा जाता है। तरंग दैर्ध्य 2 लगातार तरंगों के शिखरों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तरंगों के प्रकार तरंगें मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं। यांत्रिक तरंगें, ये तरंगें चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए ध्वनि तरंगें हवा के माध्यम से चलती हैं। यदि हवा न हो तो ध्वनि सुनाई नहीं देगी। विद्युत चुंबकीय तरंगें, इन तरंगों को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये निर्वात में भी यात्रा कर सकती हैं। रेडियो तरंगें, प्रकाश, माइक्रोवेव और एक्सरे इसी प्रकार की तरंगें हैं। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, हमारे चारों ओर मौजूद अधिकांश अदृश्य तरंगें विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। वैज्ञानिकों ने इन सभी तरंगों को एक क्रम में व्यवस्थित किया है जिसे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। यदि हम इसे कल्पना में समझें तो यह ऐसा लगता है मानो तरंगों की एक लंबी सीढ़ी हो। इस सीढ़ी के एक छोर पर रेडियो तरंगें होती हैं जिनकी ऊर्जा कम होती है, जबकि दूसरे छोर पर गामा किरणें होती हैं जिनकी ऊर्जा अत्यधिक शक्तिशाली होती है। इनके बीच माइक्रोवेव, अवरक्त किरणें, दृश्य प्रकाश, परावैगनी किरणें और एक्सरे जैसी तरंगें आती हैं। हमारी आंखें इस पूरी सीढ़ी का केवल एक छोटा सा भाग देख पाती हैं जिसे दृश्य प्रकाश कहते हैं। बाकी सभी तरंगें अदृश्य रहती हैं। रेडियो तरंगें, दुनिया को जोड़ने वाली शक्ति। रेडियो तरंगें आधुनिक संचार का आधार हैं। आज मोबाइल फोन, रेडियो, टीवी और इंटरनेट जैसी सुविधाएं इन्हीं तरंगों के कारण संभव हो पाई हैं। जब हम किसी व्यक्ति को मोबाइल से कॉल करते हैं तो हमारी आवाज़ विद्युत संकेतों में बदल जाती है। ये संकेत रेडियो तरंगों के रूप में हवा में फैलते हुए मोबाइल टावर तक पहुंचते हैं। फिर वहां से वही संकेत दूसरे व्यक्ति के मोबाइल तक भेज दिए जाते हैं। पूरी प्रक्रिया इतनी तेज होती है कि हमें लगता है कि जैसे सामने वाला व्यक्ति हमारे बिल्कुल पास बैठा हो। यदि किसी गांव के ऊपर ऊंचा मोबाइल टावर खड़ा दिखाई दे तो कल्पना कीजिए कि उसके चारों ओर अदृश्य संदेश लगातार घूम रहे हैं। हर सेकेंड लाखों लोगों की आवाजें और इंटरनेट का डाटा हवा में यात्रा कर रहा होता है। दृश्य प्रकाश, रंगों से भरी दुनिया। दृश्य प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों का वह भाग है जिसे हमारी आंखें देख सकती हैं। यही प्रकाश हमें संसार के रंगों से परिचित कराता है। जब सूर्योदय होता है और आकाश लालिमा से भर जाता है, जब वर्षा के बाद इंद्रधनुष दिखाई देता है या जब रात में रंग बिरंगी रोशनियां चमकती हैं, तब वास्तव में हम प्रकाश की तरंगों की सुंदरता देख रहे होते हैं। सूर्य का सफेद प्रकाश वास्तव में 7 रंगों से मिलकर बना होता है। वर्षा की बूंदें इन रंगों को अलग अलग कर देती हैं जिससे इंद्रधनुष दिखाई देता है। एक्सरे, शरीर के भीतर देखने वाली किरणें।

एक्सरे चिकित्सा विज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक है, जिसकी खोज विलहेम कॉनराड रांटगन ने की थी। जब डॉक्टर किसी टूटी हुई हड्डी की जांच करते हैं, तब एक्सरे का उपयोग किया जाता है। एक्सरे शरीर के मुलायम भागों से गुजर जाती है, लेकिन हड्डियां इन्हें रोक देती हैं। इसी कारण हड्डियों की तस्वीर

0: कारण हड्डियों की तस्वीर साफ दिखाई देती है। आज अस्पतालों के अलावा हवाई अड्डों पर सामान की जांच भी एक्सरे मशीनों द्वारा की जाती है। गामा किरणें, अत्यधिक ऊर्जा वाली तरंगें। गामा किरणें सबसे अधिक शक्तिशाली विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं। इनकी ऊर्जा बहुत अधिक होती है। इनका उपयोग कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के उपचार में किया जाता है। डॉक्टर गामा किरणों की सहायता से रोगग्रस्त कोशिकाओं को नष्ट करने का प्रयास करते हैं। हालांकि ये किरणें अत्यधिक शक्तिशाली होती हैं, इसलिए इनका उपयोग अत्यंत सावधानी से किया जाता है। ध्वनि तरंगे, सुनाई देने वाली अदृश्य शक्ति। ध्वनि भी एक प्रकार की तरंग है। हम इसे सुन सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते। जब मंदिर की घंटी बजती है, पक्षी चहचहाते हैं या कोई व्यक्ति गाना गाता है, तब ध्वनि तरंगे हवा में फैल रही होती हैं। कुछ ध्वनि तरंगे ऐसी होती हैं जिन्हें मनुष्य सुन नहीं सकता। इन्हें अल्ट्रासाउंड कहते हैं। डॉक्टर गर्भस्थ शिशु की जांच के लिए अल्ट्रासाउंड तकनीक का उपयोग करते हैं। चमगादड़ भी अल्ट्रासाउंड तरंगों की सहायता से अंधेरे में रास्ता खोज लेते हैं। वे ध्वनि निकालते हैं और लौटकर आने वाली तरंगों से आसपास की वस्तुओं का अनुमान लगा लेते हैं। वाईफाई और इंटरनेट की अदृश्य दुनिया। आज इंटरनेट हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इंटरनेट भी अदृश्य रेडियो तरंगों पर आधारित है। जब हम मोबाइल में वीडियो देखते हैं, ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं या किसी संदेश को भेजते हैं, तब डेटा अदृश्य तरंगों के रूप में हवा में यात्रा करता है। यदि किसी कमरे में वाईफाई राउटर रखा हो तो देखने में वह एक साधारण उपकरण लगता है, लेकिन वास्तव में वह हर दिशा में अदृश्य संकेत भेज रहा होता है जो हमारे मोबाइल और कंप्यूटर तक पहुंचते हैं। प्रकृति में अदृश्य तरंगों का उपयोग। प्रकृति में भी अनेक जीव इन तरंगों का उपयोग करते हैं। चमगादड़ अल्ट्रासाउंड की सहायता से उड़ते समय रास्ता खोजते हैं। सांप कुछ जीवों के शरीर से निकलने वाली उष्मा को पहचान सकते हैं। मधुमक्खियां ऐसे रंग भी देख सकती हैं जिन्हें मनुष्य नहीं देख सकता। इससे स्पष्ट होता है कि प्रकृति में तरंगों का संसार अत्यंत विशाल और रहस्यमय है। क्या ये तरंगे हानिकारक हैं? आज के समय में लोग अक्सर पूछते हैं कि क्या मोबाइल और वाईफाई की तरंगे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं? वैज्ञानिकों के अनुसार सामान्य उपयोग में ये तरंगे अधिक नुकसान नहीं पहुंचाती, फिर भी किसी भी तकनीक का अत्यधिक उपयोग हानिकारक हो सकता है, इसलिए सावधानी रखना आवश्यक है। मोबाइल का सीमित उपयोग करना चाहिए। सोते समय मोबाइल सिर के पास नहीं रखना चाहिए। लंबे समय तक लगातार स्क्रीन का उपयोग नहीं करना चाहिए। विज्ञान हमें संतुलित उपयोग की शिक्षा देता है। निष्कर्ष। हमारे चारों ओर फैली अदृश्य तरंगे प्रकृति और विज्ञान का अद्भुत चमत्कार हैं। वे दिखाई नहीं देती, फिर भी हमारा पूरा जीवन इन्हीं पर आधारित है। आधुनिक संचार, चिकित्सा, इंटरनेट, अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीकी विकास इन तरंगों के बिना संभव नहीं है। अदृश्य तरंगे हमें यह भी सिखाती हैं कि संसार में केवल वही सत्य नहीं होता जो आंखों से दिखाई दे। विज्ञान ने हमें उन रहस्यों को समझने की शक्ति दी है जो कभी मानव कल्पना से परे थे। आज आवश्यकता है कि हम विज्ञान को केवल पढ़ें ही नहीं बल्कि उसे समझें और उसके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएं, क्योंकि विज्ञान ही वह माध्यम है जो अदृश्य को दृश्य और असंभव को संभव बनाता है। अंत में यही कहा जा सकता है, अदृश्य तरंगे आधुनिक जीवन की मौन शक्ति हैं। वे दिखाई नहीं देती लेकिन पूरी दुनिया को एक दूसरे से जोड़कर रखती हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे नीरज कुमार शुक्ला की वार्ता हमारे आसपास की अदृश्य तरंगे।

0: प्रस्तुतकर्ता अशोक कुमार। और अब लीजिए सुनिए अरविंद कुमार सिंह से चंदन कुमार सिंह की भेंट वार्ता। विषय है, क्या होते हैं सेमीकंडक्टर। प्रस्तुतकर्ता अशोक कुमार।
1: श्रोताओं नमस्कार। आकाशवाणी वाराणसी से मैं चंदन सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। श्रोताओं, अगर हम बात करें तो सुबह के अलार्म घड़ी से लेकर रात को सोने के पहले मोबाइल की स्क्रीन को जो हम स्क्रॉल करते हैं, या फिर हम किचन में हो या फिर हम ऑफिस में हो, हम चारों तरफ से मशीनों और गैजेट से घिरे हुए हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके हाथ में रखा हुआ पतला सा स्मार्टफोन या दीवार पर टंगा हुआ स्मार्ट टीवी या सड़कों पर दौड़ती तेज रफ्तार गाड़ियां, इन सब को चला कौन रहा है? या इसके पीछे जो आज हम बात कर रहे हैं कि ये गाड़ियां और ये गैजेट्स और ये सभी मशीनें इंटेलिजेंट हो गई हैं, ये कैसे हुई हैं? तो आप कहेंगे शायद बैटरी, या फिर आप कहेंगे बिजली, लेकिन विज्ञान की दुनिया इसे कहती है सेमीकंडक्टर। तो क्या है सेमीकंडक्टर और क्या कुछ है इसमें, इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं अरविंद कुमार सिंह जी। आप हमारे जनपद के प्रतिष्ठित उदय प्रताप इंटर कॉलेज में भौतिकी विज्ञान के प्रवक्ता हैं। हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद चंदन जी।
1: सबसे पहले हमारे श्रोताओं को आप बताएं कि जो हम सेमीकंडक्टर जिसे कहते हैं, जो कि आज के जो कंप्यूटर्स हैं उसमें उनका प्रयोग होता है, और कंप्यूटर्स किसी भी चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से चलाता है और एक इंटेलिजेंट तरीके से चलाता है, तो जो सेमीकंडक्टर्स हैं वो आखिर होते क्या हैं? हमारे श्रोताओं को बताएं आप आम बोलचाल की भाषा में कि सेमीकंडक्टर जो है वो क्या है।
2: बहुत अच्छा प्रश्न है आपका चंदन जी।
1: जी,
2: इसे बहुत आसान भाषा में यदि हम कहें
1: जी,
2: तो सेमीकंडक्टर एक स्मार्ट ट्रैफिक पुलिस या रिमोट कंट्रोल की तरह कार्य करता है।
1: जी,
2: जैसे ट्रैफिक पुलिस यह तय करती है कि किस गाड़ी को कब रुकना है, किस गाड़ी को कब आगे बढ़ना है,
1: जी
2: ठीक वैसे ही सेमीकंडक्टर यह तय करता है कि बिजली को कब बहना है, कितना बहना है और कब रुक जाना है।
1: जी,
2: यह पूरी तरह से बिजली को रोकता भी नहीं है और न ही बिना रोक टोक के उसको बहने देता है। यह बिजली की रफ्तार को कंट्रोल करने वाला एक मैजिक बटन है। हम कह सकते हैं कि सेमीकंडक्टर बिहेव्स लाइक ए ट्रैफिक पुलिस फॉर द इलेक्ट्रिसिटी।
1: जी, जैसा कि आपने बताया कि सेमीकंडक्टर इसका नाम है, और एक आम विद्यार्थी ये पढ़ता है कि एक कंडक्टर होता है जो कि बिजली हो या हीट को बड़े आराम से जो है वो अपने से पार वो करवा देता है, जिसको हम लोग सुचालक कहते हैं। ऐसा एक इंसुलेटर होता है कि जो बिजली और जो हीट है उसको अपने से पार नहीं जाने देता है। और यहाँ पे जो ये इंसुलेटर आ गए, यहाँ पे जो सेमीकंडक्टर आ गया है जो इनके बीच का रास्ता निकालता है, तो आखिर ये कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में ये कैसे रास्ता निकालता है, इसकी खासियत क्या है, इसके बारे में बताएं।
2: आपने बिल्कुल सही याद दिलाया चंदन जी।
1: जी,
2: ताबा कंडक्टर ऐसा है जो बिजली को कहता है आओ खुल कर बहो, कोई रोक टोक नहीं है।
1: जी,
2: ऑन द अदर हैंड लकड़ी इंसुलेटर है, कुचालक है, जो बहुत सख्त है, बिजली के लिए बोलती है नो एंट्री, बिजली को एकदम से बहने नहीं देती है।
1: जी,
2: लेकिन हमारा सेमीकंडक्टर इन दोनों के बीच का रास्ता निकालता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह गिरगिट की तरह अपना रंग बदल सकता है। समटाइम्स यह चालक की तरह एक्ट करता है एंड सम अदर टाइम्स यह कुचालक की तरह कार्य करता है। सामान्य हालत में हमारा सेमीकंडक्टर लकड़ी की तरह, कुचालक की तरह व्यवहार करता है।
1: जी,
2: जैसे ही इसको थोड़ा गर्म कर देते हैं या इसमें थोड़ा करंट दे देते हैं, यह सुचालक ताबे की तरह कार्य करने लगता है और बिजली को बहने देता है। सेमीकंडक्टर को हम अपनी मर्जी से हाँ या ना कहना सिखा सकते हैं।
1: जैसा कि आपने बताया कि जो विज्ञान की एक खूबसूरती है कि सेमीकंडक्टर जैसे कुछ तत्व ऐसे होते हैं, उनको जैसा माहौल दिया जाए।

0: है उस स्थिति में वो अपना काम दिखाते हैं। कभी वो एक अच्छे कंडक्टर की तरह काम करते हैं जिसको सुचालक कहते हैं, कभी कभी वो अच्छे इंसुलेटर की तरह काम करते हैं। और इसी प्रवृत्ति को विज्ञान अपने प्रयोग में लाता है और बहुत अच्छे अच्छे उत्पाद उनसे बनाता है। तो मेरा अगला सवाल भी इसी से ही संबंधित है कि जैसे कि शुरुआत में हमने बताया था कि हम अपने आसपास मशीनों से घिरे हुए हैं, गैजेट से घिरे हुए हैं। हम आज के दिन में जो है हम इंटेलिजेंस की बात करते हैं, जो कि कहीं ना कहीं ये सेमीकंडक्टर से बने हुए जो चीजें हैं उनसे जो है वो चलती है। तो हमारे श्रोताओं को आप बता दें कि हमारे घर में किन-किन उपकरणों में ये सेमीकंडक्टर बैठा हुआ है, और क्या इसके बिना जो स्मार्टफोन है या टीवी है, जो अभी हम लोग टीवी की बात कर रहे हैं, उनकी परिकल्पना जो है वो की जा सकती है?
1: बहुत सही सवाल आपका है चंदन जी।
0: जी
1: आज के दौर में अगर मैं कहूँ कि सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक
0: जी
1: आप हर वक्त सेमीकंडक्टर से घिरे रहते हैं, तो यह बिल्कुल गलत नहीं होगा। आपके हाथ में मौजूद स्मार्टफोन, आपके घर का स्मार्ट टीवी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, एसी, माइक्रोवेव ओवन, यहाँ तक कि जो LED बल्ब आपके कमरे में जल रहा है
0: जी
1: और जिस रिमोट से आप टीवी स्टार्ट करते हैं, टीवी चैनल्स बदलते हैं, उन सब के अंदर यह सेमीकंडक्टर छिपा बैठा है। इसके बिना आज के स्मार्टफोन या टीवी की कल्पना करना बिल्कुल नामुमकिन है। अगर सेमीकंडक्टर हटा दिया जाए तो आपका लाखों का स्मार्टफोन सिर्फ कांच और प्लास्टिक का एक बेजान डिब्बा बनकर रह जाएगा। लाइफ विदाउट सेमीकंडक्टर इज वेरी वेरी टफ,
0: अभी जो स्थिति बन गई
1: अभी
0: है,
1: जो स्थिति बन गई,
0: क्योंकि ज्यादातर जो हमारे आसपास जो गैजेट्स हैं या मशीन हैं
1: सब में
0: उसमें
1: सेमीकंडक्टर।
0: सेमीकंडक्टर से संबंधित जो चीजें हैं वो लगाई गई हैं। अच्छा, सेमीकंडक्टर जो आज के दिन में हमारे आसपास जितनी भी मशीनें हैं उसमें इनका प्रयोग जो है बहुत ज्यादा होने लग गया है। और हम जब इन मशीनों की बात करते हैं, जैसे कंप्यूटर हो गया, हम बात करते हैं कि उसमें चिप लगा हुआ है, या हम माइक्रोचिप की बात करते हैं। और ये माइक्रोचिप और चिप ये आम जनमानस की आजकल की भाषा हो गई है, तो जिसकी वजह से जो है गाड़ियां भी महंगी हो रही हैं और जिसकी वजह से जो है मोबाइल भी महंगे हो रहे हैं। तो ये चिप और सेमीकंडक्टर का आपस में क्या संबंध है, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं।
1: बहुत बढ़िया सवाल सर।
0: जी
1: अक्सर लोग इसमें भ्रमित हो जाते हैं,
0: जी
1: तो इसको हम लोग सीधे उदाहरण से समझ सकते हैं कि जैसे गोल्ड है हमारा, सोना है, वो मटेरियल है, और रिंग या अंगूठी जिसे हम कहते हैं वह उसका एक प्रोडक्ट है।
0: फाइनल प्रोडक्ट है। जी
1: दूसरा उदाहरण, लकड़ी एक मटेरियल है और फर्नीचर उससे बना हुआ प्रोडक्ट है। ठीक उसी प्रकार जो है सेमीकंडक्टर एक मटेरियल है और चिप या माइक्रोचिप उससे बना हुआ प्रोडक्ट। सेमीकंडक्टर से एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक पुर्जा बनता है, उसी को हम लोग चिप कहते हैं। गाड़ियों और मोबाइलों में यही चिप उनका दिमाग होती है, इसलिए इसकी कमी से गाड़ियों की कीमतें बढ़ जाती हैं।
0: इनके लगने से गाड़ियों की कीमतें बढ़ती हैं।
1: बढ़ते हैं।
0: जी अच्छा, अगर हम बात करें कि सेमीकंडक्टर के आने के बाद हमारे आसपास जो गैजेट्स हैं, हमारे आसपास जो मशीनें हैं, उनका जो है स्वरूप बदला है। अगर हम पुराने चित्रों को देखें, जब से कंप्यूटर का विकास होना स्टार्ट हुआ, तो कंप्यूटर जो है वो एक एक कमरों के बराबर हुआ करता था। जिसके जो विभिन्न उपकरण कंप्यूटर के थे वो कमरों में कई जगह जो है लगाए जाते थे। आगे चल करके उनमें जब सेमीकंडक्टर का प्रयोग होना स्टार्ट हुआ तो उनका आकार छोटा होता चला गया। जो पहले के जमाने के बड़े बड़े कंप्यूटर थे, जो रेडियो थे, आज वो हमारे जेब में आ गए हैं। हमारे श्रोताओं को आप यहाँ पे ये समझाएं कि इसने इतने बड़े बड़े जो उपकरण हैं उसको छोटा कैसे कर दिया।
1: चंदन जी, पहले के ज़माने में 1940 से 1950 वाले दशक में
0: जी
1: कंप्यूटर्स और रेडियो में वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल होता था,
0: वैक्यूम ट्यूब्स का। जी
1: जो कांच के बल्ब जैसे बड़े होते थे,
0: जी
1: शॉर्ट लिव्ड होते थे, बिजली का ज़्यादा कंजम्पशन होता था, कास्ट भी ज़्यादा आती थी। इसलिए एक कंप्यूटर को रखने के लिए एक कमरे के बराबर बड़े स्पेस की जरूरत पड़ती थी। सेमीकंडक्टर

0: के आ जाने के बाद उन बड़े बड़े बल्ब की जगह छोटे से ट्रांजिस्टर ने ले ली। समय के साथ वैज्ञानिकों ने इन ट्रांजिस्टर को इतना छोटा कर दिया कि आज एक सुई की नोक पर करोड़ों ट्रांजिस्टर समा सकते हैं। जब कल पुर्जे ही लाखों गुना छोटे हो गए, पूरा का पूरा कंप्यूटर सिमट कर हमारे हाथ की हथेली में स्मार्ट फोन बनकर आ गया। कल पुर्जे छोटा हो जाने से कास्ट कम हो गई, बिजली का कंजम्पशन कम हो गया, लॉन्ग लिव्ड सिस्टम बन गया और काम भी सुपर फास्ट होने लगा। सेमीकंडक्टर की वजह से चीजें काफी स्मार्ट हो गई।
1: निसंदेह ये विज्ञान का चमत्कार ही है कि एक सेमीकंडक्टर ने एक बड़े से उपकरण को बहुत से छोटे स्तर पे ला करके आपके वो हाथ पे ले आया। जो चीज़ एक कमरे के बराबर हुई हुआ करती थी वो आज के दिन में आपके हाथ पर बैठी हुई है, कई बार फोन पे है। और हम चिप की बात करते हैं तो हमारा एक छोटा सा जो मेमोरी डिवाइस है जिसमें हम लोग बात करते हैं कि 128 GB की मेमोरी है, वो एक बस उंगली के नोक पे आ जाती है वो। तो ये विज्ञान का अद्भुत चमत्कार ही है कि हम एक इतने बड़े डिवाइस को हम एक छोटे से में ला सकते हैं। तो अगर हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, हम अगर बात करें तो भारत सरकार ने, हमारी जो सरकार है वो मेड इन इंडिया को लेकर के बहुत ज़्यादा बात करती है कि जितने भी उपकरण हैं, जितनी भी चीज़ें हैं और जो भी चीज़ों की आवश्यकता लोगों को है वो भारत में ही बने। तो जब हम सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो सरकार भी इस पे बहुत जोर दे रही है कि जो सेमीकंडक्टर जो चिप्स हैं वो हमारे देश में ही बने। तो आज के वर्तमान परिदृश्य को देखें हम, जहाँ पे युद्ध भी हो रहा है और कई बारी चीजें जो है वो ब्लॉक कर दी जा रही हैं, तो एक देश के रूप में हमारे लिए ये कितना आवश्यक है सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर हो, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं।
0: बहुत अच्छा चंदन जी।
1: जी
0: मेड इन इंडिया चिप्स भारत के भविष्य, हमारी अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे जरूरी है।
1: जी
0: आज के दौर में जिसके पास चिप की ताकत है वही दुनिया पर राज कर रहा है। इसे डिजिटल युग का तेल या ईंधन कहा जा सकता है। सोचिए, अगर किसी वैश्विक संकट या युद्ध की वजह से बाहर के देशों से चिप आना बंद हो जाए तो हमारे देश में कारों का बनना, मोबाइल का बिकना, यहाँ तक कि हमारे देश की सुरक्षा करने वाली मिसाइल्स, रडार और मिलिट्री उपकरण भी ठप पड़ सकते हैं।
1: जी
0: इसलिए भारत को किसी दूसरे देश के भरोसे न रहना पड़े, हमारी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रहे और देश के नौजवानों को यहीं पर लाखों नौकरियां मिलें। इसलिए मेड इन इंडिया चिप का बनना हमारे आत्मनिर्भर होने के लिए बेहद जरूरी है।
1: जैसा कि आपने बताया कि जो चिप है वो आज के समय का जो है उसको हम लोग ईंधन कहते हैं, या आज के समय का वो तेल है। और हम अगर हम बात करें चीन की, तो जब से उसने चिप के सेक्टर में आकर के अपना काम स्टार्ट किया और उसके बाद फिर जो चीन जैसे देश ने जब इस टेक्नोलॉजी पे उन्होंने काम करना स्टार्ट किया, तो आज चिप बनाने के मामले में पूरे दुनिया पे वो राज कर रही है और अपनी अर्थव्यवस्था को भी उसने मजबूत किया है। इसी से संदर्भित जो है मेरा अगला सवाल ये है, निसंदेह ही सेमीकंडक्टर से जो बनने वाले चिप्स जो है वो आज के दिन में बहुत मायने रखते हैं और आने वाले समय में भी इनका उतना ही योगदान रहेगा वैश्विक परिदृश्य में। तो जो छात्र जो हमारी वार्ता को आज को जो सुन रहे हैं, अगर इस विषय में और इसके विज्ञान में रुचि रखते हैं तो वे सेमीकंडक्टर या नैनो टेक्नोलॉजी की बात करें, इस क्षेत्र में अपना करियर अगर बनाना चाहते हैं तो वो कैसे बना सकते हैं, क्या पढ़ाई कर सकते हैं, इसके बारे में भी हमारे श्रोताओं को आप बता दें।
0: बहुत बढ़िया सवाल चंदन जी।
1: जी
0: जो भी छात्र आज मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आने वाले 50 सालों का सबसे शानदार और डिमांड वाला क्षेत्र है सेमीकंडक्टर। इसमें कैरियर बनाने के लिए एक स्पष्ट रास्ता है। सबसे पहले हम लोग स्कूली शिक्षा की बात करते हैं। 11वीं और 12वीं में विज्ञान विषय, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स को अच्छे से पढ़ें।
1: जी
0: देन आफ्टर उच्च शिक्षा में पहुंचने पर आप बीटेक या बीई कर सकते हैं। इसके लिए सबसे बेहतरीन ब्रांचेज हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर इंजीनियरिंग इन मटेरियल साइंस।
1: जी
0: और आगे बढ़ते हैं स्पेशलाइजेशन में, आगे चलकर

0: आप VLSI डिजाइन, चिप डिजाइनिंग या नैनो टेक्नोलॉजी में एमटेक या फिर PhD कर सकते हैं। आजकल भारत सरकार की कोशिशों से कई NITs, कई IITs और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में सेमीकंडक्टर के विशेष कोर्सेज शुरू हो चुके हैं। यदि आपको गैजेट्स, कोडिंग और रिसर्च में मज़ा आता है, आपका इंटरेस्ट है, तो निसंदेह यह फील्ड आपके सुनहरे भविष्य की गारंटी है।
1: निसंदेह ही एक छोटा सा चिप जो देखने में तो बहुत छोटा है, लेकिन उसकी दुनिया बहुत ही वृहद है और अपने आप में ये बहुत संभावनाएं रखता है और इसमें करियर की भी काफी संभावनाएं हैं। अरविंद कुमार सिंह जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, सेमीकंडक्टर्स और चिप्स और नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में इतनी सारी जानकारियां हमारे श्रोताओं के साथ आपने साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद चंदन जी।
2: अभी आप सुन रहे थे अरविंद कुमार सिंह से चंदन कुमार सिंह की भेंट वार्ता। विषय था, क्या होते हैं सेमीकंडक्टर।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक उदय प्रताप इंटर कॉलेज भोजूबीर वाराणसी, वाराणसी की अति प्राचीनतम शिक्षण संस्थान उदय प्रताप इंटर कॉलेज भोजूबीर वाराणसी।
4: क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य की तलाश में हैं? आइए जुड़िए उदय प्रताप इंटर कॉलेज भोजूबीर वाराणसी से, जहां शिक्षा के साथ संस्कार भी दिए जाते हैं। अनुभवी शिक्षक, उत्कृष्ट शैक्षणिक वातावरण, आधुनिक शिक्षण पद्धति और विद्यार्थियों के लिए सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान। यहां से निकले छात्र आज विभिन्न क्षेत्रों में सफलता की मिसाल हैं। उदय प्रताप इंटर कॉलेज भोजूबीर वाराणसी।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विज्ञान पत्रिका। ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में प्रस्तुत है उस्ताद गुलाम मुस्तफा खां का गायन। सबसे पहले आइए सुने इनके स्वर में राग हंस ध्वनि। आपके साथ तबला संगतकार हैं शरीफ अहमद खान और सारंगी पर हैं लियाकत अली खां।

ಬಗರೆ ನೀರೆ ಸರೆ ನೀರೆ.

Bunny, that again,

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं उस्ताद गुलाम मुस्तफा खां का गायन। अभी आप सुन रहे थे राग हंस ध्वनि। अब आइए सुने राग दादरा मिश्र पहाड़ी। तबला संगतकार शरीफ अहमद खां और सारंगी पर हैं लियाकत अली खां।

गुलाम मुस्तफा खां का गायन। ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
1: भारत सरकार की शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम श्री अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान श्री शाह ने तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और 28 अगस्त तक चलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की रक्षा अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। ये परिसर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल परिसर का हिस्सा है। रक्षा मंत्री ने भारत की तकनीकी उत्कृष्टता, रणनीतिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय सुरक्षा में DRDO की मिसाइल प्रणाली तथा सामरिक समूह प्रणाली के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। श्री सिंह ने कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण साकार करने के लिए अनुसंधान और विकास के कई उपाय किए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रेलवे भर्ती बोर्ड प्रक्रिया पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। श्री वैष्णव ने पारदर्शी, सटीक और प्रौद्योगिकी आधारित व्यवस्था पर जोर दिया। श्री वैष्णव ने विभागीय परीक्षाओं को कंप्यूटर आधारित टेस्ट में बदलने की प्रगति की भी समीक्षा की। रेल मंत्रालय ने बताया कि भारतीय रेलवे ने वित्त वर्ष 2025-26 में 6 प्रमुख श्रेणियों में 47,000 से अधिक पदों की भर्ती प्रक्रिया पूरी कर 43,000 से अधिक उम्मीदवारों की भर्ती की है। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में यह जानकारी दी। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। उन्होंने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। कैबिनेट सचिव डॉ TV सोमनाथन ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। इस बीच NTA ने 21 जून को होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमेरिकी दूतावास के उप प्रमुख जैसन मीक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमेरिकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों

मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन AIRF पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। इस वक्त स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब संपन्न होती है हमारी आज की ये सभा। कल प्रातः 5:53 पर अपने कल के कार्यक्रमों के साथ हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।